90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 31वीं तिथि, तदनुसार 22 जुलाई सन 2026। सुबह के 7 बज चुके हैं, अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है। नमस्कार श्रोताओं, आज का दिन आप सभी के लिए शुभ और मंगलमय हो, ऐसी हम कामना करते हैं।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुबह की सभा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ, आपके रेडियो मित्र पूर्वा खले। कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार। कार्यक्रमों का सिलसिला आरंभ हो उसके पहले हम आपको बताए देते हैं कि आज दोपहर 12 बजे तक आप हमारे कौन कौन से कार्यक्रम रेडियो आजाद हिंद से सुनने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे जीवन सौरभ। 7:13 से सुनिएगा अक्षय निधि का प्रसारण। इसमें आप सुनेंगे ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ। सात बजकर 20 मिनट से आनंद लीजिएगा भक्ति संगीत का मेरे साथ यानी आपके अपनी पूर्वा के साथ। सुबह 8 बजे का वक्त होता है हमारे कार्यक्रम वतन का राग का। श्रोताओ, आज राजा मर्दन सिंह की पुण्यतिथि है तो उन्हीं पर आधारित होगा हमारा आज का वतन का राग। सुनना ना भूलिएगा सुबह 8 बजे। सुबह 8:30 बजे सुनेगा हमारा कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से। आज इस कार्यक्रम में गिन्नौरगढ़ भोपाल के गोंड राज्यवंश की चर्चा की है डॉक्टर पूजा सक्सेना ने। सुबह 9 बजे का वक्त होगा हमारे कार्यक्रम टेक गुरु का। आज का विषय है डिजिटल सिक्योरिटी फॉर सीनियर सिटीजन। विषय विशेषज्ञ हैं संस्कृति खरे। सुबह 9:30 बजे सुनिएगा हमारा कार्यक्रम भारत विभूति। आज भारत विभूति में होंगे अमन के सिपाही। सुबह 10 बजे नगर की साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी लेकर आएगी हमारी पत्रिका परिक्रमा। और 10:30 बजे आप सुनेंगे काव्य गुंजन। आज काव्य गुंजन में आप रश्मि रथी का भाग 7 सुनेंगे। दिन में 11 बजे सुनिएगा हमारा कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक। आज इस कार्यक्रम में हमने जिन वैज्ञानिक को शामिल किया है उनका नाम है श्री राम शंकर अभयंकर, जिनकी जयंती भी है। दिन में 11:30 बजे आप सुनेंगे हमारा रेडियो रूपक युग प्रवर्तक विवेकानंद। श्रोताओं, हमारा प्रसारण रात्रि 10 बजे तक यूं ही जारी रहेगा। अभी आपने दोपहर 12 बजे तक के हमारे कार्यक्रमों का विवरण सुना। मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए। आइए सुनते हैं जीवन सौरभ।

0: एक बार बारिश न होने के कारण एक किसान बहुत परेशान था। बहुत सोचने के बाद उसने तय किया कि अब उसे अपने खेत में ही एक कुआं खोद लेना चाहिए। ये विचार आते ही उसने अगले दिन से ही खेत के एक कोने में कुआं खोदना शुरू कर दिया। दिन भर कड़ी मेहनत की। शाम को उसने सोचा कि शायद मैंने गलत जगह गड्ढा खोद लिया, कल दूसरी जगह गड्ढा खोदूं तो शायद पानी निकल आए। अगले दिन किसान ने दूसरी जगह गड्ढा खोदना शुरू किया। शाम तक किसान ने दूसरा गड्ढा भी खोद लिया, लेकिन पानी नहीं निकला। उसने सोचा कि मैंने शायद आज फिर गलती कर दी, मुझे किसी और जगह गड्ढा खोदना चाहिए था। इसी तरह किसान रोज अलग अलग जगहों पर गड्ढे खोदता रहा। एक दिन उसके खेत के पास से एक संत निकल रहे थे। खेत में बहुत सारे गड्ढों को देखकर उन्होंने किसान से पूछा, भाई ये सब क्या है? किसान ने संत से कहा, गुरुदेव इस बरस बारिश नहीं हुई, बहुत चिंता है मन में, सारी फसल नष्ट हो जाएगी। मैं खेत में कुआं खोद रहा हूँ, लेकिन मुश्किल ये है कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि खेत में कहाँ जल्दी पानी निकल आएगा, इसीलिए मैंने ये गड्ढे खोदे हैं। संत मुस्कुराए और कहा, अगर तुम किसी एक ही जगह धैर्य के साथ गड्ढा खोदते तो अब तक पानी निकल आता। हर दिन तुमने नई जगह पर गड्ढा खोदा ये सोचकर कि शायद यहाँ से पानी जल्दी निकल आए। मेहनत तुमने की है, लेकिन धीरज के साथ एक जगह पर नहीं की, इसीलिए अब तक कुआं नहीं बन सका। अगले ही दिन किसान ने एक ही गड्ढे को गहरा करना शुरू किया और कुछ ही दिनों में उस गड्ढे से पानी निकल आया। सफलता उन्हें ही मिलती है जो धीरज के साथ लगातार एकाग्र होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। जीवन सौरभ
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 170 से वाचन। ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रा वरुण, देवता हैं इंद्र, छंद है वृहति, अनुष्टुप और त्रिष्टुप।
1: न नूनमस्ति नो श्वः कस्तद्वेद इदद्भुतम् अन्यस्य चित्तमभि संचरेण्य मुताधीतम् विनश्यति। इंद्र का कथन जो आज नहीं वो कल भी नहीं प्राप्त होगा, जो हुआ ही नहीं है उसे कैसे जाना जा सकता है। दूसरे का चित्त चलायमान है, अतः वह संकल्प करेगा तो भी बदल सकता है। किम न इंद्र जिघांससि भ्रातरो मरुतस्तव ते भी कल्पस्व साधुया मा नह समरेण वधीहि। अगस्त्य ऋषि कहते हैं कि हे इंद्रदेव, मुझ निरपराधी का वध आप क्यों करना चाहते हैं? मरुदगण आपके भाई हैं, आप उनके साथ यज्ञ के श्रेष्ठ भाग को प्राप्त करें। हे इंद्रदेव, हमें युद्ध क्षेत्र में हिंसित न करें। किम नो भ्रातरगस्त्य सखा सन्नति मन्यसे विद्मा हिते यथा मनोस्मभ्य मिन्ना दित्ससि। हे भ्रातृस्वरूप अगस्त्य, आप हमारे मित्र होकर हमारा अपमान क्यों करते हैं? आपका मन जिस भावना से ग्रस्त है उसे हम भली प्रकार जानते हैं। आप हमारा भाग हमें नहीं देना चाहते हैं। अरम कृणवन्तु वेदिम समग्नि मिन्धताम पुरः तत्रामृतस्य चेतनम यज्ञम ते तनवा वहै। याज्ञिक जन यज्ञ वेदिका को भली प्रकार सुसज्जित करे, उसमें सबसे पहले अग्नि को प्रज्वलित करें। वहां पर हम आपके निमित्त अमरत्व को जागृत करने वाली यज्ञीय भावनाओं को विस्तारित करें। त्वमीशि से वसुपते वसूनाम त्वम मित्राणाम मित्रपते धेष्ठः इंद्रत्वम मरुद्भिः सम वदस्वाध प्राशान ऋतुथा हवींषि। हे धनाधिपति इंद्रदेव, आप संपूर्ण धनों को अपने स्वामित्व में रखते हैं। हे मित्र रक्षक, आप मित्रों के विशेष धारण करने योग्य आश्रय हैं। हे इंद्रदेव, आप मरुदगणों के साथ सदव्यवहार करें और उनके साथ ऋतुओं के अनुसार हमारे द्वारा प्रदत्त आहुतियों का सेवन करें।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 170 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम पुत्रपाठी।

90.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। अब ये समय है भक्ति संगीत का। भक्ति संगीत लेकर उपस्थित हूं श्रोताओं, मैं आपके बीच आपकी रेडियो मित्र पूर्वा खले। आइए कार्यक्रम को आरंभ करें इस प्रार्थना के साथ। असतो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माम अमृतम गमय। हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें, और हमारे कर्म ऐसे हों कि मृत्यु से हम अमरता को प्राप्त करें।

अपने ईश्वर में आस्था रखना और उससे प्रार्थना करना, दोनों ही बातें अदृश्य हैं, लेकिन दोनों में ही इतनी शक्ति है कि ये दोनों असंभव को भी संभव बना सकते हैं।

श्रोताओ, हम सब जानते हैं कि परमात्मा को पाने के अनेक रास्ते हैं, बस सोच हमारी ये होना चाहिए कि धीरज धरकर सच्चे मन से उसे सुमिरन

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत। आज मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो मित्र पूर्वा कले। श्रोताओं, इस जीवन की सांसें हम सभी के लिए निश्चित गिनती की हैं। सुबह होती है और शाम में ढल जाती है, रात आती है तो साथ में लाती है एक नई सुबह। समय कैसे पंख लगाकर उड़ता चला जाता है हम जान ही नहीं पाते, और जीवन जीवन यूं ही बीतता जाता है। तो कुछ समय परोपकार और आध्यात्म के लिए भी निकालें, ताकि जीवन बीतने पर पछतावा ना हो।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण और ये कार्यक्रम है भक्ति संगीत का। श्रोताओं, कभी इस बारे में सोचेगा कि इस जीवन में हम कर्मों से कभी भाग नहीं सकते। हर समय हर वक्त हम किसी न किसी कर्म से बंधे ही रहते हैं, तो क्यों ना फिर इन कर्मों को हम प्रभु को ही समर्पित करते चले। इससे दो बातें अच्छी होंगी, एक तो ये कि हम ईश्वर को कभी भूलेंगे नहीं, और दूसरी ये कि मन में प्रभु का भाव होने के कारण गलत कर्मों की ओर हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाएगा।

आइए सुबह की इस बेला में अपने हृदय में अपने इष्ट का स्वागत करें और मन की शांति और सुकून का आभास करें और आनंद लें। कहते हैं ये संसार तो झूठा है, एक सच्चा नाम तो बस उस परमपिता परमात्मा का ही है जो हमें, चाहे हम कैसी भी परिस्थिति में हों, हमेशा हमें अपनाने और हमारी बात सुनने को तैयार रहते हैं।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ और आनंद ले रहे हैं भक्ति संगीत का। आज का ये कार्यक्रम आइए इस प्रार्थना के साथ समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यानी कि सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी कोई कष्ट न देखें, सभी को अच्छा देखने को मिले और हे प्रभु किसी को भी कोई दुख न हो। इस प्रार्थना के साथ ही दीजिए अनुमति भक्ति संगीत यही समाप्त करने की। पूर्वाखले को नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। देश का चैनल देश के लिए, सुनते रहिए।
1: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: वायदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग। ये

0: नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

सन 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम और स्वराज का आह्वान करता रानी लक्ष्मीबाई का एक पत्र, जिसमें वो कहती हैं, सुराज भव चाहिजे, योई सलाह पर डटो राने हैं, कैसे कि भारत अपुन को देश है, विदेशियों की गुलामी में रहबो अच्छो नहीं है, उनसे लड़बो अच्छो है। ये पत्र उन्होंने कालपी से बानपुर के राजा मर्दन सिंह को लिखा था, जो 1857 के महासमर में रानी लक्ष्मीबाई के विश्वसनीय सहयोगी थे। वतन का राग कार्यक्रम में आज चर्चा उन्हीं राजा मर्दन सिंह की। राजा मर्दन सिंह का जन्म सन 1799 में हुआ था। उनके पिता मोद प्रहलाद चंदेरी रियासत के राजा थे। उनकी माताजी का नाम राजकुमार था। मोद प्रहलाद के तीन पुत्र थे, मर्दन सिंह, राव गज सिंह और कुंवर रणजीत सिंह। चंदेरी राज्य में उस समय ललितपुर, बानपुर और ताल बेहट के किले थे। मर्दन सिंह बचपन से ही अत्यंत वीर और स्वाभिमानी थे। राजा मोद प्रहलाद आमोद प्रमोद में व्यस्त रहा करते थे। इसके साथ ही कुछ घटनाएं ऐसी हुईं कि उनके शत्रु बढ़ने लगे। इन असंतुष्ट लोगों ने ग्वालियर के सिंधिया के सेनानायक कर्नल जॉन बैप्टिस्ट को चंदेरी पर आक्रमण करने के लिए उकसाया। इस तरह सन 1811-12 में सिंधिया का कब्जा चंदेरी राज्य पर हो गया। राजा मोद प्रहलाद को भागना पड़ा, लेकिन मर्दन सिंह को इस घटना से बहुत आघात पहुंचा। उन्होंने अपने पिता से कहा कि भागने से काम नहीं चलेगा, हमें संघर्ष करके अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त करना होगा। इसके लिए मर्दन सिंह ने अपने समर्थक जुटाए। ओरछा का राजा महेंद्र विक्रमजीत सिंह अपने पड़ोस में सिंधिया का वर्चस्व नहीं चाहता था, इसलिए उसने भी मर्दन सिंह को समर्थन दिया। मर्दन सिंह ने ओरछा राजा की सहायता लेकर सिंधिया के राज्य में अशांति फैला दी। तंग आकर जॉन बैप्टिस्ट ने राजा मोद प्रहलाद से समझौते का मन बनाया। चंदेरी राज्य की तत्कालीन आय लगभग 5,30,000 रुपए थी। समझौता हुआ कि इस आय का एक तिहाई भाग राजा मोद प्रहलाद को दिया जाएगा और दो तिहाई भाग सिंधिया के पास रहेगा। चंदेरी राज्य के तीन किलों में से बानपुर का किला बंटवारे में राजा मोद प्रहलाद के हिस्से आया। इस तरह सन 1830 में राजा मोद प्रहलाद ने बानपुर को अपने राज्य की राजधानी बनाया। इस घटना से मर्दन सिंह की योग्यता साबित हो चुकी थी। सन 1842 तक मोद प्रहलाद ने बानपुर पर शासन किया और सन 1842 में उनकी मृत्यु के बाद राजा मर्दन सिंह बानपुर के राजा बने। उस समय सिंधिया ने उनके पास संदेश भेजा कि राज्यारोहण से पहले उन्हें कर्नल जॉन बैप्टिस्ट से अनुमति लेनी चाहिए। इस पर राजा मर्दन सिंह ने अपने पूर्वज राजा राम शाह का हवाला देते हुए जवाब भेजा कि राजा राम के पवित्र राज सिंहासन पर बैठने के लिए जनता ही स्वयं अभिषेक करती है, किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। राजा मर्दन सिंह के इस वक्तव्य ने भारत भूमि के प्रति उनके प्रेम को जता दिया था।

मर्दन सिंह बानपुर के राजा बन चुके थे, लेकिन वो चंदेरी वापस चाहते थे। इसके लिए वो लगातार प्रयास कर रहे थे। संयोग से ऐसी ही स्थिति शाहगढ़ रियासत के राजा बखतबली की भी थी। वो भी अपना गढ़ाकोटा इलाका वापस चाहते थे। उन दिनों उस क्षेत्र में डाकुओं का आतंक था, जिसे राजा मर्दन सिंह और राजा बखतबली समाप्त करना चाहते थे। डाकुओं को पकड़ने के अभियान में ही दोनों की भेंट हुई और दोनों एक दूसरे के सहयोगी बन गए। दोनों का एक ही लक्ष्य था कि किसी भी तरह अंग्रेजों को बुंदेलखंड से खदेड़ दिया जाए, ताकि चंदेरी पर राजा मर्दन सिंह का और गढ़ाकोटा पर राजा बखतबली का अधिकार हो सके। राजा बखतबली के पास 10 तोपें और 2000 सैनिक थे, जबकि राजा मर्दन सिंह के पास 5 तोपें और 1500 सैनिक थे। इस तरह दोनों के मिलने पर 15 तोपों और 3500 सैनिकों की शक्ति एकत्र हो गई। इससे दोनों राजाओं का हौसला बहुत अधिक बढ़ गया। चंदेरी विजय के लिए दोनों सेनाओं का संयुक्त अभियान अब आगे बढ़ा। उन्होंने न केवल चंदेरी पर विजय प्राप्त की, बल्कि ताल बेहट पर भी कब्जा कर लिया। राजा मर्दन सिंह को अपना चंदेरी इलाका मिल चुका था, लेकिन अभी इसके लिए अंग्रेजों से संघर्ष शेष था। उधर गढ़ाकोटा इलाका भी अंग्रेजों के नियंत्रण में था। इन परिस्थितियों में दोनों ये समझ चुके थे कि अंग्रेजों को बुंदेलखंड से भगाने के लिए देसी राजाओं, जागीरदारों आदि का सहयोग आवश्यक है। संगठित होकर ही अंग्रेजों से लोहा लिया जा सकता है। इस तरह दोनों ने सबको संगठित करने का प्रयास आरंभ किया। इसी बीच झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। राजा मर्दन सिंह शोक संवेदना प्रकट करने झांसी पहुंचे। यहां नाना साहेब, तात्या टोपे, राजा बखतबली आदि भी आए हुए थे। यहीं से सबने मिलकर अंग्रेजी राज के विरुद्ध व्यूह रचना तैयार की, क्योंकि ये सभी अंग्रेजी राज को समाप्त कर भारत का गौरव बहाल करना चाहते थे। इस तरह 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की पूर्व पीठिका तैयार हो चुकी थी। कानपुर में नाना साहेब, दिल्ली में बहादुर शाह जफर, अवध में बेगम हजरत महल और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई इसकी सूत्रधार बनी। राजा मर्दन सिंह से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का पत्राचार जारी था। राजा मर्दन सिंह राजा बखतबली के साथ मिलकर सागर में 1857 की क्रांति की व्यूह रचना तैयार कर चुके थे। अनेक जागीरदार, उवारीदार और सागर स्थित देसी पलटन के सिपाही उनके साथ थे। 10 मई 1857 को मेरठ से इस क्रांति का आरंभ हो गया और महीने भर के अंदर क्रांति की ये ज्वाला बुंदेलखंड के द्वार झांसी तक पहुंच गई। 12 जून को ये क्रांति ज्वाला ललितपुर में फैल गई। क्रांति की इस लहर का सागर तक पहुंचना तय हो चुका था और इस समाचार से सागर के अंग्रेज अधिकारी अत्यंत भयभीत हो गए। राजा मर्दन सिंह, राजा बखतबली और सागर स्थित 42वीं देसी पलटन के सैनिक बिल्कुल तैयार थे और उचित समय देखकर 1 जुलाई 1857 को सुबह 42वीं देसी पलटन के सीनियर सूबेदार रमजान ने सागर स्थित मस्जिद के द्वार पर रखे नगाड़े पर चोट करके बुलंद आवाज में सागर में 1857 की क्रांति का शंखनाद कर दिया।

1857 का महासमर प्रबल रूप लेता जा रहा था। अंग्रेजों को बाहर खदेड़ने का ये एक महाअभियान था। राजा मर्दन सिंह ने अंग्रेजों को भगाकर 9 जुलाई को खुरई पर अधिकार कर लिया। दूसरी तरफ इसी दिन राजा बखत बली ने बिनायका पर अधिकार कर लिया। 14 जुलाई को राजा मर्दन सिंह ने नरियावली पर आक्रमण किया और उसे अपने अधिकार में ले लिया। इस तरह क्रांति की लौ प्रचंड ज्वाला बन चुकी थी। राजा मर्दन सिंह अत्यंत सूझबूझ वाले पराक्रमी राजा थे। भारत में अंग्रेजी राज के इतिहास में अंग्रेजों को कभी इतना दबना नहीं पड़ा जितना वो सागर क्षेत्र में दबे। कुछ समय पहले बानपुर राजा मर्दन सिंह ने ललितपुर के डिप्टी कमिश्नर एसी गार्डन को एक ऐसे पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए भी मजबूर कर दिया था जिसमें लिखा था कि वो स्वेच्छा से ललितपुर जिले का प्रबंध राजा मर्दन सिंह को सौंप रहा है। कुल मिलाकर राजा मर्दन सिंह ने राजा बखत बली के साथ मिलकर 1857 की क्रांति को एक विकराल रूप दे दिया। अंग्रेज अत्यंत परेशान थे। राजा मर्दन सिंह की गतिविधियां रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। अंततः अंग्रेजों ने राजा मर्दन सिंह को पकड़वाने पर 8,000 रुपए और राजा बखत बली को पकड़वाने पर 10,000 रुपए इनाम की घोषणा की। और उधर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से अंग्रेजों का जबरदस्त संघर्ष जारी था। कुल मिलाकर अंग्रेजों को चारों ओर से प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था। इन परिस्थितियों में बुंदेलखंड में क्रांति के दमन का कार्य सर ह्यूरोज को सौंपा गया। ह्यूरोज ने राहतगढ़ पर नियंत्रण करके राजा मर्दन सिंह सहित सागर के अनेक क्रांतिकारियों पर अंकुश लगाया। ह्यूरोज जानता था कि राजा मर्दन सिंह और राजा बखत बली रानी लक्ष्मीबाई के संपर्क में हैं और वो हर हाल में रानी की सहायता करेंगे ही। इसीलिए उसने मेजर ओर को इन दोनों राजाओं के पीछे लगा रखा था। ह्यूरोज ने शाहगढ़ और बानपुर पर कब्जा करके अब झांसी की ओर बढ़ने की योजना बनाई। वो जानता था कि इस मार्ग में ये दोनों राजा अवरोध बनेंगे। उसने बहुत चालाकी से काम लिया। उसने तय किया कि वो नरहट घाटी छोड़कर मदनपुर घाटी से ही झांसी जाएगा और नरहट घाटी में एक छोटी सेना भेजकर राजा मर्दन सिंह को धोखे में रखेगा। राजा मर्दन सिंह को नरहट घाटी में ही उलझाकर उसने वास्तविक आक्रमण मदनपुर घाटी से किया। ह्यूरोज की सेना से राजा बखत बली ने जमकर संघर्ष किया। बखत बली को राजा मर्दन सिंह की प्रतीक्षा थी, लेकिन राजा मर्दन सिंह नरहट घाटी में उलझे रहे और राजा बखत बली पराजित हो गए। राजा मर्दन सिंह को जब ये सूचना मिली तो उन्होंने रानी को इस विश्वासघात की सूचना भिजवाई। जब रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर की ओर कूच किया तब उन्होंने राजा मर्दन सिंह को पत्र लिखकर कहा कि आप भी शाहगढ़ राजा बखत बली के साथ अंग्रेजों को खदेड़ते हुए ग्वालियर पहुंचिए, वहीं भेंट होगी। लेकिन स्थितियां बहुत बिगड़ चुकी थीं। ह्यूरोज की सेना चारों ओर बिखरी हुई थी। राजा मर्दन सिंह और राजा बखत बली ने दतिया नरेश से दतिया होकर ग्वालियर जाने की अनुमति मांगी और प्रस्थान भी किया, लेकिन रास्ते में ही उन्हें समाचार मिला कि 17 जून 1858 को अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए रानी लक्ष्मीबाई ने अपना जीवन बलिदान कर दिया है। ये सूचना पाकर दोनों राजा अत्यंत दुखी हुए। इसके बाद अंग्रेजों ने राजा मर्दन सिंह और राजा बखत बली को बंदी बनाकर लाहौर भेज दिया। यहां से राजा मर्दन सिंह को मथुरा जेल लाया गया। राजा मर्दन सिंह ने 21 साल तक जेल में कठोर यातनाएं सहीं, लेकिन वो झुके नहीं और न ही अंग्रेजों का कोई प्रलोभन उन्होंने स्वीकार किया। अंग्रेजों की क्रूरता सहते हुए 22 जुलाई सन 1879 को उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसे अमर बलिदानी को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम वतन का राग, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए, सुनते रहिए।
1: नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से।

0: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा, और एक बार फिर आज हम अपने कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से में गोंड राजवंश की बात करेंगे। लेकिन आज की हमारी ये कड़ी बहुत खास होने वाली है, क्योंकि हमने गोंड राजवंश की बात शुरू की थी गढ़ा मंडला से, उसके बाद हमने बात की देवगढ़ की, चंद्रपुर की, खेरेला की, और अपने पिछले एपिसोड में मकड़ाई की। इन सारी जगहों के बारे में, इन सारे राजवंशों के बारे में हमें जानकारी दी डॉक्टर पूजा सक्सेना ने, प्रसिद्ध पुरातत्वविद। पूजा जी एक बार फिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, हम उनका स्वागत करते हैं आप सभी की ओर से।
1: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: पूजा जी, आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, किस राजवंश की बात करेंगे, किस गोंड राजवंश की?
1: आज हम गिन्नौरगढ़ भोपाल के गोंड राजवंश की बात करेंगे।
0: आज की कड़ी खास क्यों है, ये भी श्रोताओं को हमारे बता दीजिए।
1: हमने बहुत विस्तृत रूप से गोंड राजवंश के बारे में जाना और देखा कि कई सारे राजवंशों ने मध्य भारत पर शासन किया
0: जी।
1: और वो भी उस समय जब बहुत विपरीत परिस्थितियां थी। दिल्ली पर मुगलों का शासन था और लगातार संघर्ष जारी था। मुगल कोशिश कर रहे थे कि वह नर्मदा पार करके दक्कन में प्रवेश कर जाएं, क्योंकि दक्कन में उस समय जहाज के सारे जो खास पत्तन थे वो वहीं थे
0: जी।
1: तो यदि इस मध्य भारत से निकलने वाले व्यापारिक मार्ग पर जिसका भी अधिकार होगा वही राजस्व वसूलेगा।
0: बिल्कुल।
1: तो दिल्ली से लगातार मध्य भारत पर अटैक हो ही रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो जनजातियाँ थीं, जो कभी प्रत्यक्ष रूप में आकर शासन नहीं कर रही थीं, वो भी उस समय सामने आई और इस क्षेत्र को शासन किया और उसको बचाया
0: जी।
1: बाहरी आक्रांताओं से
0: जी जी।
1: तो बहुत सारे राजवंश तो हम देख ही चुके हैं
0: जी।
1: और इन राजवंशों की कड़ी में आखिरी कड़ी है गिन्नौरगढ़ भोपाल के गोंड राजवंश की। आपने नाम तो सुना ही होगा, रानी कमलापति।
0: बिल्कुल।
1: तो आज हम रानी कमलापति और उनके राजवंश के बारे में जानेंगे।
0: तो श्रोताओं, कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से में पिछले कई एपिसोड से हमारी जो श्रृंखला चल रही थी गोंड राजवंश के ऊपर, वो आज यहाँ पर समाप्त होने जा रही है, और जो समापन हो रहा है वो गिन्नौरगढ़ और भोपाल के गोंड राजवंश की जानकारी के साथ हो रहा है। तो पूजा जी, शुरू करते हैं, बस हमारे श्रोता बहुत बेकरार हैं आपको सुनने के लिए।
1: बिल्कुल, हमने ये इतिहास गढ़ा के गोंड मंडला से शुरू किया था, और जैसा कि हम जानते हैं कि नरई के युद्ध में रानी दुर्गावती ने प्राणोत्सर्ग किया और सर्वोच्च बलिदान दिया इस भूमि की रक्षा के लिए, और उसके परिणाम स्वरूप गढ़ा के गोंड मंडला राज्य को 10 गढ़ मुगल शासक अकबर को देने पड़े। लेकिन इस बात पर भी हमने चर्चा की है कि जल्दी ही अकबर ने भी ये 10 गढ़ जो थे वापस गोंडों को लौटा दिए। उसका कारण ये था कि ये बड़ा वनों से आच्छादित क्षेत्र है, खूब पशु हैं
0: जी।
1: और जनजातियों का इस क्षेत्र पर बहुत ही सुदृढ़ होल्ड रहा
0: जी,
1: है
0: जी।
1: तो अकबर के बस में नहीं था कि वो इस क्षेत्र को शासित कर पाता
0: जी। बिल्कुल,
1: ऐसे लिखित साक्ष्य हैं
0: जी।
1: तो अकबर ने जब ये 10 गढ़ लौटाए तो उन्होंने गढ़ा मंडला को ये गढ़ नहीं लौटाए, उन्होंने बल्कि जो स्थानीय गोंड प्रमुख थे
0: जी।
1: उनको ये गढ़ लौटा दिए।
0: अच्छा।
1: उसमें से जो गिन्नौरगढ़, भोपाल, बाड़ी, ये जो आसपास का क्षेत्र है, जो आजकल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और उसके आसपास का क्षेत्र है, वहाँ के जो 4-5 गढ़ थे वो उन्होंने स्थानीय प्रमुखों को लौटाए।
0: अच्छा।
1: तो उसमें से जो सर्व प्रमुख गढ़ था वो था गिन्नौरगढ़ का किला। ये किला भोपाल से दक्षिण दिशा में लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है और जिला सीहोर में आता है।
0: अच्छा।
1: तो ये किला जो था ये व्यापारिक मार्ग पर था, भोपाल से या विदिशा से आप नर्मदापुरम की तरफ जा रहे हैं
0: जी जी,
1: नर्मदा क्रॉस करने के लिए, तो बड़ा ही एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट बनता था गिन्नौरगढ़
0: जी।
1: तो वहां पर एक प्राचीन किला हुआ करता था परमारों का, क्योंकि इस किले में आज भी परमारों, प्रतिहारों के, मंदिरों के बहुत से अवशेष हैं।
0: अच्छा।
1: तो ये कोई पुराना किला रहा होगा। बाद में फिर उसी किले पर, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो स्थानीय सेनानायक होते थे या किलेदार हुआ करते थे वो स्थानीय गोंड हुआ करते थे, तो जब परमारों का शासन समाप्त हुआ तो उन्हीं गोंडों ने फिर वहां पर शासन स्थापित किया। तो गिन्नौरगढ़ पर भी कोई गोंड रहे होंगे, हालांकि शुरू का इतिहास स्पष्ट नहीं है, मिलता नहीं है लिखित इतिहास। तो ये जो किला था बड़ी सामरिक पोजीशन पर था, हमको 1720 के आसपास का इतिहास मिलना शुरू होता है। तो एक नाम आता है निजाम शाह।
0: अच्छा।
1: तो गिन्नौरगढ़ का शासक था निजाम शाह। उस समय निजाम जैसे जो नाम थे वो टाइटल के रूप में दिए
0: बिल्कुल
1: जाए
0: बिल्कुल
1: जाते थे,
0: बिल्कुल जी
1: तो संभवतः वो उनका टाइटल रहा होगा। और जैसा अपन ने पहले भी चर्चा की थी कि शाही सरनेम हुआ करता था
0: जी,
1: निजाम शाही, वो बाद में लिखते लिखते शाह हो गया।
0: अच्छा,
1: तो निजाम शाह का इतिहास हमें मिलता है
0: जी।
1: और इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें तो हमें दिखाई देता है कि उनकी जो अदावत थी वो अपने ही रिश्ते के भाई से थी, और उनके भाई का नाम था आलम शाह। तो आलम शाह को चैनपुर बाड़ी में भी एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था जसवंत सिंह।
0: अच्छा।
1: तो जसवंत सिंह ने किसी बात पर भड़काया निजाम शाह के खिलाफ।
0: अच्छा।
1: और आलम शाह इतना भड़क गया कि उसने निजाम शाह की धोखे से हत्या कर दी। तो जब निजाम शाह की मृत्यु हो गई उसके बाद उनकी जो रानी थी, रानी कमलापति, वो थी और उनका एक अल्पवयस्क बेटा था नवल शाह।
0: अच्छा।
1: तो वो दोनों थे। तो अब जो है शासन का भार आ गया नवल शाह पर, लेकिन नवल शाह क्योंकि बालिग नहीं थे तो शासन संभाला रानी कमलापति ने।
0: अच्छा।
1: अब दो केंद्र बने गिन्नौरगढ़ के,
0: जी।
1: एक तो है गिन्नौरगढ़ का किला
0: जी,
1: और दूसरा भोपाल में उनका ही एक छोटा सा किला हुआ करता था जिसे आज रानी कमलापति का महल या पुराना किला या किला कोहना के नाम से भी जानते हैं।
0: जी जी जी
1: तो यहाँ दोनों केंद्र स्थापित हुए। तो रानी को ज्यादा ठीक लगा कि वो भोपाल से शासन करें, उन्होंने अपना केंद्र स्थानांतरित करके भोपाल का
0: भोपाल
1: जो
0: कर लिया
1: किला था उनका वो कर लिया।
0: जी।
1: तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 1720 के आसपास तक रानी कमलापति ने अपना शासन संचालित करना आरंभ कर दिया।
0: पूजा जी, जैसे कि आपने बताया कि रानी कमलापति ने अपने शासन करने के लिए भोपाल को चुना जो कि गिन्नौरगढ़ से जब आज 60 किलोमीटर दूर है, तो तब तो परिस्थितियां और काफी दुर्गम रही होंगी। तो किस तरीके से, क्योंकि बड़ा किला तो गिन्नौरगढ़ का था, तो वहां किस तरह से शासन किया और गिन्नौरगढ़ के किले की क्या क्या खासियतें हैं ये हम आपसे जानना चाहेंगे।
1: गिन्नौरगढ़ का किला जैसे मैंने कहा कि व्यापारिक मार्ग पर था
0: जी,
1: और बड़ी सामरिक स्थिति रही होगी उसकी
0: जी,
1: तो ये भी एक बड़ी ऊंची पहाड़ी पर है और आजकल तो ये जो क्षेत्र है रातापानी अभयारण्य कहलाता है
0: जी,
1: और देलावाड़ी चेक पोस्ट बनती है। तो आज तो जाना भी बड़ा दुर्गम है वहां तक पहुंचना क्योंकि रिजर्व फॉरेस्ट है तो पशुओं की संख्या भी बहुत अधिक है।
0: हाँ।
1: तो उस समय भी दुर्गम रहा होगा, किले तो दुर्गम स्थानों पर ही बनाए
0: हाँ,
1: जाते थे। तो ये जैसा हम पहले भी कहते आए हैं कि गोंडों का एक तरीका था किले निर्माण का, तो यहाँ पर भी बहुत ऊंची पहाड़ी है एक, और आप दूर से ऐसे देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि किले की ऊंची ऊंची दीवारें आप चारों तरफ से देख रहे हैं, जबकि वो दीवारें नहीं है, किले की जो पहाड़ी है
0: जी,
1: उसका कुछ टेक्चर ऐसा है, ये बालुकाश्म सेडिमेंटरी रॉक्स हैं
0: जी,
1: कुछ इस तरीके का टेक्चर है कि दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि बड़ी ऊंची दीवारें बनी हुई है।
0: अच्छा।
1: जबकि वो आपको पहाड़ी का सरफेस दिखाई देता
0: ओ।
1: है, लेकिन किले की पहाड़ी पर दो प्राकृतिक तालाब भी हैं
0: जी, जैसे तो कि ज्यादातर गोंड राजवंशों के किले में होता है।
1: जी हाँ, पानी की आवश्यकता तो होगी
0: जी,
1: तो यहाँ दो तालाब हैं। तो किले का जो मुख्य प्रवेश द्वार है उत्तर दिशा में है और हमने जैसे पहले भी बात की है कि तीन ओर से पहाड़ी जो है वो खड़ी हो, ऐसी ढलान वाली पहाड़ी देखी जाती थी
0: जी।
1: तो इसमें भी ऐसा ही है जिससे शत्रुओं का एकदम से आगमन ना हो पाए
0: जी।
1: और इस पहाड़ी के चारों ओर खाई भी रही होगी, ऐसे भी प्रमाण हैं। और जहां उत्तर की ओर मुख्य द्वार है उस तरफ तो खाई की गहराई ज्यादा है, चौड़ाई भी ज्यादा है
0: जी।
1: अब तो पानी नहीं है लेकिन उस समय पानी रहा करता होगा और एक पर्टिकुलर पॉइंट से जो है वो ब्रिज डालते होंगे जिसको क्रॉस करके फिर आप उस पहाड़ी के उस पार जा सकते हैं
0: जी, जी।
1: तो इस तरीके से इसका संयोजन है सुरक्षा की दृष्टि से और चारों तरफ बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं। एक पहाड़ी का नाम तो है अशरफी पहाड़ी।
0: अच्छा।
1: हाँ, और अशरफी पहाड़ी की एक कहानी भी है। लोग कहते हैं कि जब गिन्नौरगढ़ का किला था उस समय कुछ निर्माण कार्य हो रहा था
0: जी,
1: तो मिट्टी की जरूरत थी, तो लोग कहते हैं कि राजा ने कहलवाया कि जो भी एक टोकरी मिट्टी लाएगा उसके बदले में एक अशरफी मिलेगी।
0: अच्छा।
1: तो लोग लाके उस जो मुख्य पहाड़ी है उसके पास में मिट्टी इकट्ठी करने लगे तो उनको बदले में एक टोकरी के एक अशरफी मिलती और यहाँ तो पूरा अंबारी लग गया
0: जी,
1: मिट्टी
0: जी।
1: का तो वो कहते हैं कि अशरफी पहाड़ी ऐसे नाम पड़ा।
0: अच्छा।
1: तो किला है, किले में ऊपर कई सारे महल हैं और एक हमाम है।
0: अच्छा।
1: तो महल बहुत खूबसूरत है, और आपने अगर भोपाल में देखा होगा, मध्य प्रदेश टूरिज्म का एक होटल है, उसका जो एंट्रेंस गेट बनाया है वो इसी स्थापत्य से, जो किले में महल है, गोंड महल है, उसका जो एंट्रेंस है उससे प्रभावित होकर बनाया है।
0: अच्छा।
1: तो हाँ, पर ये जो महल है इसमें कई सारे कमरे हैं, बहुत खूबसूरत ब्रैकेट्स हैं, काफी टूट भी गया है
0: जी।
1: लेकिन इस महल का जो हमाम का भाग है वो अभी भी बचा हुआ है।
0: अच्छा।
1: और ये हमाम कैसा है, स्टीम बाथ है, यानी कि भट्टी से तलघर में
0: जी, जी,
1: पानी को गर्म करते हैं टंकी के,
0: जी,
1: और फिर पूरे कमरे में वाष्प फैल जाती है, स्टीम फैल जाती
0: जी,
1: है
0: जी।
1: तो उसका अपनी एक टेक्निक है इस हमाम पर, फिर आगे कभी हम लोग बात करेंगे। लेकिन ये हमाम बड़ा ही खूबसूरत है, खासकर जो इसकी छत है, अंदरूनी छत जो है उस पर बहुत सुंदर स्टको वर्क किया हुआ है, चूने से बड़ा सुंदर काम है। फिर उसके ऊपर पेंटिंग भी है लाल पीले नीले रंग से, तो बड़ी खूबसूरत लगता है ये जो हमाम है। कुछ समय पहले तक तो कहते हैं कि क्योंकि ये पूरा वन क्षेत्र है तो यहाँ पर टाइगर भी रहा करता था आके, फिर अभी आजकल तो नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर काफी सुरक्षा के साथ में वन विभाग जो है वो गिन्नौरगढ़ के किले तक जाने देता है।
0: जी जी।
1: तो ऐसा ये गिन्नौरगढ़ का किला है और दूर दूर तक बड़ा स्पष्ट नजर आता है, तो शत्रुओं पर जो नजर रखी जा सकती है वो यहाँ से का बड़ा अच्छा प्रबंध इन्होंने किया हुआ है।
0: निश्चित रूप से बहुत बिल्कुल वन आच्छादित पूरा क्षेत्र है, और सलकनपुर जाते समय ये जगह
1: जी जी
0: पड़ती
1: जी
0: है, बिल्कुल सलकनपुर से बहुत बिल्कुल थोड़ी से पहले।
1: हाँ, और इसी मार्ग पर आगे जाएं तो पान गुड़ारिया है।
0: अच्छा।
1: हाँ, क्योंकि हम पहले से ही ये बात कह रहे हैं कि व्यापारिक मार्ग बड़े महत्वपूर्ण हुआ करते थे, तो सम्राट अशोक जो कि गोंड काल से तो लगभग 1700-1800 साल पहले हुए
0: जी,
1: हैं,
0: जी।
1: वो भी इस मार्ग से गुजरे होंगे, क्योंकि आज जहां आपने सलकनपुर बोला, गिन्नौरगढ़ बोला, उसके पास में ही एक साइट है पान गुड़ारिया, वहां पर दो शिलालेख हैं अशोक के, एक जब वो राजा बने उससे पहले का और एक जब वो राजा बन गए उसके बाद का, तो इतना महत्वपूर्ण ये क्षेत्र रहा होगा
0: जी। और पूजा जी, जो भोपाल में रानी कमलापति का महल कहलाता है वो उस समय किस तरह का था?
1: हाँ, ये तो बहुत ही सुंदर महल है
0: जी,
1: महल सुंदर है और रानी भी बड़ी सुंदर थी। तो ये जो महल है वो भोपाल तालाब के आसपास ही बनाया गया था, और हम जैसे पहले से कहते आ रहे हैं कि जो गोंड किले हैं वो पहाड़ी के ऊपर समतल स्थान पर नहीं होते, बल्कि जो पहाड़ी की ढलान होती है उसका उपयोग करते हुए बनाते हैं
0: जी।
1: तो यहाँ क्या हुआ भोपाल में कि पहाड़ी तो थी नहीं किला बनाने के लिए, जो स्थान उन्होंने चुना, तो स्थान कौन सा चुना, जहां पर परमार काल का एक बांध था। ये बांध राजा भोज के द्वारा बनाया गया था कोलास नदी के पानी को नियंत्रित करने के लिए, जिसके कारण भोपाल का बड़ा तालाब बना
0: जी, बिल्कुल।
1: तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर इसी बांध का उपयोग किया, तो बांध की भी जो ढलान है उसी पर ही महल बना लिया, तो नीचे बांध है
0: जी, जी।
1: और उसी को नींव की तरह उपयोग करते हुए कई मंजिला महल बनाया। अभी किले की दो मंजिलें हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं और तीन मंजिलें थोड़ा सा छुपी हुई सी दिखाई देती हैं, और भोपालियों की आप माने तो अभी तो सात मंजिलें और डूबी हुई हैं।
0: अच्छा।
1: हाँ, जिस तरफ छोटा तालाब है वहाँ भोपाली मानते हैं कि सात मंजिलें और डूबी हुई हैं, यानी कि अभी पांच मंजिल तो हमको दिख रही है, सात मंजिल और डूबी हुई है, और ये संभव भी हो सकता है, कह नहीं सकते। एक मंजिल तो डूबी हुई है, जब मैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए रानी कमलापति के महल का डॉक्यूमेंटेशन कार्य कर रही थी तब मैं नाव से उस तरफ गई थी।
0: अच्छा।
1: और मैंने देखा कि हाँ, एक मंजिल तो डूबी हुई दिख रही है,
0: दिख रही है।
1: अब सात मंजिल है कि नहीं ये तो नहीं मालूम। हाँ, ये जरूर है कि जब रानी कमलापति रही होंगी उस समय ये शायद बगिया रही होगी, जहाँ आज छोटा तालाब है।
0: अच्छा।
1: बांध के दूसरी तरफ
0: जी जी।
1: तो क्योंकि खसरा में अगर देखिए तो आज भी ये गिन्नौरी बगिया कहलाता है
0: जी जी जी।
1: तो हो सकता है, क्योंकि ये जो तालाब है छोटा तालाब ये बाद में बना
0: जी।
1: तो इस स्थान पर बगिया रही होगी, इसलिए हो संभव है कि कुछ मंजिलें और नीचे होंगी।
0: अच्छा।
1: और एक और चीज ध्यान देने वाली बात है कि जो मुख्य किला है उसका नाम है गिन्नौरगढ़
0: जी,
1: गिन्नी
0: जी,
1: है ना
0: जी,
1: गिन्नी यानी पैसा,
0: बिल्कुल।
1: तो गिन्नौरगढ़। हाँ। और ये जो क्षेत्र कहलाता है जहाँ रानी कमलापति का महल है, इसको कहते हैं गिन्नौरी बगिया या गिन्नौरी तलैया
0: जी, बिल्कुल।
1: तो वो गिन्नौरी गिन्नौरी हमको बहुत सारी चीजें इस तरीके की दिख रही हैं।
0: तो पूजा जी, ये जो गिन्नौरगढ़ गिन्नौरी ये महज इत्तेफाक था, या कोई इसके पीछे कोई कारण भी था?
1: ऐसा स्पष्ट ज्ञात तो नहीं है कि किसके पीछे क्या कारण था कि इस तरीके के नाम आ रहे हैं, गिन्नौर, गिन्नौरी
0: जी
1: और इधर अशरफी,
0: जी
1: इस
0: जी
1: टाइप के
0: जी
1: नाम है, उस समय कुछ प्रचलन में रहा होगा। पर ये जो रानी कमलापति का महल है
0: जी,
1: ये आज राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है
0: अच्छा,
1: और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसको संरक्षित करता है। आज तो किले का बहुत छोटा सा हिस्सा ही बाकी है, जैसा कि मैंने बताया कि बांध है
0: जी,
1: और बांध के ऊपर गोंड महल है जिसकी 5 मंजिलें आज भी हैं।
0: जी जी
1: लेकिन ये किला बहुत बड़ा था। अगर हम आज भोपाल के बड़े तालाब और छोटे तालाब के किनारे को ध्यान से देखें
0: जी,
1: तो हमको कई सारे बुर्ज दिखाई देते हैं।
0: जी,
1: एक बुर्ज पर तो आपने शायद देखा भी होगा राजा भोज की प्रतिमा खड़ी
0: बिल्कुल,
1: है,
0: बिल्कुल।
1: वो भी गोंड किले का ही एक भाग है।
0: अच्छा,
1: गोंड किले की ही एक बुर्ज है। तो इस तरीके की कई बुर्ज थी और दीवारें भी थी। आपने ये भी जरूर देखा होगा कि जब बड़े तालाब में पानी कुछ कम होता है
0: जी,
1: तो एक दीवार भी तालाब के अंदर जाती हुई
0: जी जी
1: स्पष्ट
0: नजर आती है
1: दिखाई
0: जी
1: देती
0: जी
1: है। तो ये भी क्या है कि जो गोंड किला था उसकी दीवार है। तो कई सारे बुर्ज और दीवारें छोटे तालाब और बड़े तालाब को घेरते हुए ये पूरा गोंड किला बनाते थे।
0: जी जी
1: और जो बड़े तालाब का बहुत सारा हिस्सा है वो किले के अंदर आता था।
0: अच्छा
1: जी हाँ, तो ये सुरक्षा प्रदान करता था रानी कमलापति के महल को।
0: और ये कितना खूबसूरत रहा होगा कि किले के अंदर ही इतना समंदर सा तालाब उनके यहाँ पर रहा होगा।
1: जी हाँ, और अगर आप महल के अंदर देखें तो वहां पर भी जल व्यवस्था बड़ी अच्छी है।
0: अच्छा,
1: हमने डॉक्यूमेंटेशन के दौरान देखा कि दीवारों के अंदर टेराकोटा पाइपलाइन है।
0: अच्छा,
1: और जो रानी कमलापति का महल है उसके ठीक पास में एक भवन है जिसका नाम है पंचक्की।
0: अच्छा
1: हाँ, अगर आप भोपालियों से कभी पूछेंगे तो कहेंगे कि यहाँ पर गेहूं पीसने की चक्की हुआ करती थी। तो असल में पुराने जमाने में चक्की जब चलती थी तो उसमें गेहूं भी पिस जाता था और पानी को लिफ्ट करने का भी वो काम आता था। तो हम देख रहे हैं कि 17वीं-18वीं शताब्दी में यहाँ लिफ्ट करने के लिए एक पूरी पंचक्की लगी हुई थी और छत के ऊपर टैंक है,
0: वहां तक पानी
1: महल
0: पहुंचा
1: के,
0: रही
1: हाँ
0: थी
1: जी हाँ, महल के छत
0: उसके
1: पर टैंक है और उस टैंक तक पानी पहुंचाने के लिए पंचक्की लगी होगी। और फिर दीवारों से में जो पाइपलाइंस थी
0: जी जी
1: उनके जरिए जो है यहाँ पर पानी पहुंचाया जाता
0: उपयोग
1: होगा। और कमलापति के महल में फव्वारा भी है,
0: अच्छा
1: तो ये बड़ा खूबसूरत दिखाई देता होगा, फव्वारा चलता होगा। और मैंने तो यहाँ तक देखा है कि रानी कमलापति के महल का एक हिस्सा है जो बिल्कुल छोटे तालाब के किनारे पर है,
0: जी
1: वहां पर तो उस कक्ष के छत पर इस तरीके का इंतजाम है कि कमरे के बाहर कुछ इस तरीके का नजारा कृत्रिम रूप से तैयार किया गया था कि छत से बारिश का पानी गिर रहा है, इस तरीके का एक दृश्य आर्टिफिशियली उत्पन्न किया जाता था। उसके लिए कई सारी पाइपलाइंस डाली गई हैं, टैंक डाले गए हैं, तो बड़ा ही सुंदर दिखाई देता होगा।
0: तो गोंड, देखिए राजवंशों की बात हो रही है, आज हम अपनी अंतिम कड़ी तक आ पहुंचे हैं और आज हम बात कर रहे हैं गिन्नौरगढ़ की और भोपाल की रानी कमलापति की। पूजा जी, क्योंकि समय की भी कमी है, आपसे अब ये जानना चाहेंगे कि रानी कमलापति का शासनकाल बहुत ज्यादा लंबा तो रहा नहीं है और फिर ये कहा जाता है कि उन्होंने छोटे तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी थी, तो क्या ये बात सच है और ऐसा उन्होंने किया क्यों?
1: जी हाँ, रानी कमलापति ने भोपाल राज्य की अस्मिता के लिए आत्मोत्सर्ग किया था। हम देखते हैं कि सन 1707 में मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु हो गई।
0: हाँ,
1: और जैसे ही उनकी मृत्यु हुई तो उनके जितने भी सिपहसालार सेनापति थे उन सबको लगा कि अब ये मुगल शासन बहुत समय तक रहेगा नहीं,
0: रहेगा नहीं।
1: और सुदृढ़ तो बिल्कुल नहीं रहेगा
0: जी।
1: तो उनमें से अनेक लोगों ने यह प्रयास किया कि वो कहीं और जाके अपने शासन स्थापित कर लें
0: जी।
1: तो उसमें ही एक नाम आता है सरदार दोस्त मोहम्मद का।
0: अच्छा,
1: ये जो सरदार दोस्त मोहम्मद था ये अफगानिस्तान से आया था, तिराह नाम की एक जगह है।
0: अच्छा,
1: वहां से तो ये यहाँ पर रोजगार ढूंढता हुआ पंजाब पहुंचा, लेकिन क्योंकि इसकी प्रवृत्ति बहुत अच्छी नहीं थी
0: जी।
1: तो जब ये पंजाब पहुंचा तो अपने बहनों ही क्या रहता था, बहन क्या
0: जी,
1: क्योंकि बहुत गुस्सैल था, किसी बात पर उसका झगड़ा हुआ और जिसने उसे प्रश्रय दिया था उसी की हत्या करके वहां से भाग गया।
0: ओह,
1: और भागकर फिर पहुंचा दिल्ली।
0: अच्छा,
1: और दिल्ली तक पहुंचते हुए भी उसने अनेक ऐसी हरकतें की और फिर आखिरकार जुगाड़ लगाकर वो औरंगजेब की सेना में भर्ती हो गया।
0: अच्छा,
1: और एक युद्ध के सिलसिले में उसको मालवा आने को मिला
0: जी जी।
1: तो जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो दोस्त मोहम्मद को लगा कि मालवा जाना ज्यादा ठीक है, वहां वह कुछ अपने लिए कर सकता है
0: जी।
1: तो वो मालवा की तरफ आया, पर

0: और जब मृत्यु की खबर आई तो दोस्त मोहम्मद तो इस ताक में था ही कि वो कैसे मंगलगढ़ को धोखा देता है, कैसे उनकी संपत्ति लूटता है
1: जी।
0: और फिर उसने वहां पर भी सारी विपरीत स्थितियां खड़ी की, रानी की भी मृत्यु हो गई और उसने फिर वहां मंगलगढ़ का सारा खजाना लूट लिया और उस खजाने को लूट कर वो भोपाल की तरफ आया।
1: अच्छा,
0: तो यहाँ भोपाल में एक जगह का नाम है सरसिया, जिसको आजकल बैरसिया बोलते हैं।
1: बैरसिया का पहले नाम सरसिया था।
0: हाँ जी हाँ, तो उसने सरसिया को लीज पर लिया क्योंकि जो पैसे वहां से लूटे थे
1: जी जी जी।
0: उन पैसों से उसने सरसिया को लीज पर ले लिया
1: जी।
0: तो एक जगह उसके पास हो गई जहाँ पर उसने लूट का सामान भी रखा
1: जी।
0: और उसके बाद फिर वो ढूंढने लगा कि अब मैं क्या करूं
1: जी।
0: तो भोपाल के पास एक जगह है जगदीशपुर
1: जी जी,
0: वहां पर देवड़ा राजपूतों का शासन था।
1: अच्छा,
0: तो उसने उनको भी कुछ धोखा देकर और राजा की हत्या कर दी और जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया
1: जी।
0: और बाद में इसी जगदीशपुर का नाम बदलकर उसने इस्लाम नगर किया और अभी कुछ ही समय पूर्व वापस इसका नाम जगदीशपुर कर दिया गया। तो इस तरीके से वो भोपाल के आसपास उसने अपनी सत्ता स्थापित कर ली
1: जी।
0: अब उसकी नजर जो थी वो भोपाल के गोंड राज्य पर थी
1: जी।
0: तो वो कई प्रयास करता रहा पर सफलता हाथ नहीं लग रही थी। आखिरकार उसने पूरी एक अच्छी सेना इकट्ठी की
1: जी।
0: और गिन्नौरगढ़ के राज्य पर हमला बोल दिया
1: जी।
0: तो उस समय नवल शाह जो थे उनकी आयु बहुत कम थी
1: जी।
0: पर वह युद्ध के लिए आगे गए।
1: अच्छा,
0: और कहते हैं कि नवल शाह और दोस्त मोहम्मद के बीच में जो आजकल भोपाल में बैरागढ़ कहलाता है
1: जी जी,
0: है ना, वहाँ बैरागढ़ के पास, सॉरी, जो आजकल भोपाल में लाल घाटी कहलाता है
1: जी,
0: वहां पर युद्ध हुआ।
1: अच्छा,
0: और जैसा कि तय था कि अगर नवल शाह युद्ध में विजय नहीं प्राप्त करते हैं तो फिर वहाँ उनकी सेना धुआं करेगी और यहाँ कुछ किलोमीटर की दूरी पर रानी कमलापति का जो महल है वहां पर यह सूचना मिल जाएगी
1: जी।
0: तो ऐसा ही हुआ, नवल शाह बड़ी वीरता के साथ दोस्त मोहम्मद से लड़े
1: जी।
0: और आखिरकार युद्ध में वह विजय प्राप्त नहीं कर सके और वहाँ लाल घाटी में धुआं किया गया
1: जी।
0: और यहाँ पर जब रानी को ये सूचना मिली कि अब दोस्त मोहम्मद गोंड महल में प्रवेश कर जाएगा
1: जी।
0: और भोपाल की अस्मिता को चोट पहुंचेगी तो रानी कमलापति ने निर्णय लिया कि वे प्राणोत्सर्ग करके अपने राज्य की अस्मिता की रक्षा करेंगी। और जैसा कि हम सुनते हैं कि उन्होंने अपने महल के पूर्वी ओर जो छोटा तालाब है वहां पर जल समाधि ले ली
1: जी।
0: और आज भी उनकी स्मृति में उस क्षेत्र को बड़े सम्मान के साथ देखा जाता है
1: जी। आज उस क्षेत्र में रानी कमलापति की वहाँ प्रतिमा भी लगाई गई है, स्थापित की गई।
0: जी हाँ, रानी कमलापति ने भोपाल राज्य के लिए जो सर्वोच्च बलिदान दिया उसके प्रति हम सब नतमस्तक हैं
1: जी।
0: और उन्हीं को सम्मान देते हुए हमने अपने नए रेलवे स्टेशन का नाम भी रानी कमलापति के नाम पर रखा है।
1: के नाम पर रखा है जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हम सभी नतमस्तक हैं, चाहे वो वीरांगना रानी दुर्गावती हों या रानी कमलापति। गोंड राजवंश का बहुत बड़ा योगदान रहा है मध्य भारत की तरक्की में, मध्य प्रदेश की तरक्की में, हमारे प्रदेश की तरक्की में। और कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से में ये जानकारी हमें दी है पूजा जी ने, पूजा सक्सेना जी ने, प्रसिद्ध पुरातत्वविद। आप सभी श्रोताओं की ओर से एक बार फिर से हम बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं पूजा जी को। आज गोंड राजवंश श्रृंखला की ये हमारी अंतिम कड़ी थी। अगली बार आपको किसी और विषय के बारे में जानकारी देंगे इसी कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम हमारा जारी रहेगा, लेकिन आज इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की परिकल्पना और निर्देशन का श्रेय जाता है सुश्री अदिति गौड़ को। ध्वनि अंकन और ध्वनि संपादन किया अमित कुंदानी ने। तो अब अपने रेडियो मित्र संदीप शर्मा को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल, देश के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए। अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।
1: अठारह की हूँ, कोई बच्ची नहीं, नई हूँ पर कच्ची नहीं।
2: मानो या ना मानो तुम, कुछ बड़ा करने की है बारी यही, भविष्य देश का लिखने की तैयारी।

0: अगर आपको दो हफ्तों से ज्यादा खांसी है तो इसे हल्के में ना लें। ये टीबी भी हो सकता है। तुरंत डॉक्टर से मिलें और बलगम की जांच कराएं। टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर आपको टीबी हो गया है तो बिना भूले पूरा कोर्स करें।
1: कोई भी टीबी मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए हमने नई रणनीति पर काम किया। हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। हम टीबी की रोकथाम के लिए 6 महीने के कोर्स की जगह केवल 3 महीने का ट्रीटमेंट भी शुरू कर रहे हैं। अब नई व्यवस्था में मरीज को हफ्ते में केवल 1 बार दवा लेनी होगी। भारत अब वर्ष 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेसिटी एनहेंसमेंट किया है। हम ट्रेस, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है हमारा ये संकल्प जरूर सिद्ध होगा। यस वी कैन एंड टीबी। टीबी हारेगा, भारत जीतेगा।
0: दो हफ्तों से ज्यादा खांसी हो सकती है टीबी की बीमारी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। आइए सुनते हैं कार्यक्रम टेक गुरु।
2: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। अब समय हो गया है तकनीकी की जानकारी से परिपूर्ण कार्यक्रम टेक गुरु का। तकनीक हमारे जीवन का मुख्य आधार बन गई है। इसका सही तरीके से किया गया प्रयोग हमारे जीवन को सुखद बना सकता है। चाहे मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, नेट हो, तकनीक से हम सभी जुड़े हुए हैं और हमारे इस कार्यक्रम में आपको बहुत सी रोचक बातों से भी अवगत कराया जाता रहा है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे वृद्ध जनों के लिए डिजिटल सुरक्षा की। वर्तमान में साइबर सिक्योरिटी की बारीकियों से तो युवा कहीं हद तक परिचित है, पर हमारे बुजुर्ग या कहें वरिष्ठ नागरिक जिन्हें साइबर सिक्योरिटी की ज्यादा जानकारी न होने के कारण उनके साथ बहुत से फ्रॉड हो जाते हैं। तो श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे वृद्ध जनों के लिए डिजिटल सुरक्षा की। आज हमारे बीच टेक गुरु यानी तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रदेश प्रमुख हेल्पेज इंडिया सुश्री संस्कृति खरे जी। संस्कृति जी, रेडियो आजाद हिंद की ओर से आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत करते हैं।
3: नमस्कार।
2: संस्कृति जी, वर्तमान में वृद्ध जनों के लिए डिजिटल सुरक्षा क्या है और ये महत्वपूर्ण क्यों है? इसमें बुजुर्गों के साथ फ्रॉड किस प्रकार से किया जाता है?
3: ये जानकारी बहुत आवश्यक है वरिष्ठ नागरिकों के लिए, क्योंकि हमने जिस प्रकार से कोविड में देखा कि वरिष्ठ नागरिक एक ऐसा व्यक्ति थे जो हर परिवार से और अपने समाज से कट चुके थे, क्योंकि उनके पास आने जाने वाला कोई नहीं था। वहाँ पर एक ही माध्यम था जो लोगों को जोड़े हुए था, वो था टेक्नोलॉजी। और जो वीडियो कॉलिंग कर पाते थे या फिर अपने स्मार्टफोन से अगर बात कर पाते थे, सिर्फ वही अपने परिवार से संपर्क में थे। तो वहाँ से हमने इस चीज़ की शुरुआत करी कि क्या हम वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐसे कोई चीज़ ला सकते हैं जो उनको परिवार के ज़्यादा करीब ला सकता है। तो उस समय हेल्पेज इंडिया ने सोचा कि हम वरिष्ठ नागरिकों की किस प्रकार से हमारे पास कंप्लेंट आती, किस प्रकार से वो हमसे जानकारी की आवश्यकता होती उनको, उस प्रकार से हम अलग अलग कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो हमने कोशिश करी कि हम उनकी सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे वरिष्ठ नागरिक हैं जो आजकल स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं और कोविड के बाद से पेमेंट से लेकर बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई, वीडियो कॉलिंग भी है और बहुत फ्रीक्वेंटली करने लगे हैं। उसको एक्सेस कैसे करना है मोबाइल को, उनको वो नहीं समझ में आता था। फिर उसको एक्सेस करने पे कई बार उनकी गलतियां होती थी, उन गलतियों को कैसे सुधार पाएं। फिर उसको वीडियो कॉलिंग भी करना है या उनको फेसबुक पे अकाउंट बनाना है, उनको वो नहीं पता था। और छोटी छोटी सी जानकारी कि अगर उन्होंने कोई अकाउंट खोल लिया या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना है तो वो करने के लिए पासवर्ड उनको कैसे सिक्योर करना है, सारी चीज़ें हम उनको सिखाना। तो हमने डिजिटल लिटरेसी उनको सिखाना शुरू करा। उसके बाद में हमें आवश्यकता ये पड़ी कि लोगों ने जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पॉपुलेशन, पहले वरिष्ठ नागरिकों की पॉपुलेशन सिर्फ 6.5% हुआ करती थी, 2011 की बात करें तो पॉपुलेशन 8.5% हो गई टोटल पॉपुलेशन की, और अगर हम 2022 से 24 की बात करें तो अभी उनकी पॉपुलेशन 10.5% हो चुकी है एल्डरली की। तो जिस प्रकार से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उनके लिए सुरक्षा के लिए हमें दूसरे विकल्प ढूंढने पड़ रहे हैं। हमारे पास जिस प्रकार से कंप्लेंट आई, पहले एक दो बार लोगों ने हमसे शेयर किया, वरिष्ठ नागरिकों ने, कि हमारे पास अकाउंट है और उनकी मोस्टली सेविंग एक ही अकाउंट में होती है वरिष्ठ नागरिकों की, और बड़े सॉफ्ट टारगेट होते हैं क्योंकि बहुत ही वो अपने भोलेपन से बता देते हैं कि ये हमारा अकाउंट है, इसमें पासवर्ड है, बच्चों से कई बार हेल्प ली, कैसे हम इसको करें, आप हमारा एटीएम से पैसे निकाल के दे, तो छोटी छोटी चीज़ें वो हेल्प के लिए, उस वजह से उनके साथ में फ्रॉड होना शुरू हुआ। तो जब ये कंप्लेंट हमारे पास में आना शुरू हुई तो हमें लगा कि नहीं, यहाँ पर उनको थोड़ा सतर्क करने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से हम वरिष्ठ नागरिकों को इन सब चीज़ों से बचा सकें। तो बहुत सारे ऐसे हमारे पास उदाहरण आने लगे कि जिनको देख करके हमने फिर बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उनको हमने रिक्वेस्ट करी कि क्यों ना आप हमें ऐसे प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट करें जिसमें हम वरिष्ठ नागरिकों को डिजिटल लिटरेसी से एक सुरक्षित कर सकें। तो हमने एक सुरक्षित के नाम से एक प्रोजेक्ट हमें गूगल ने सपोर्ट किया, और उस सुरक्षित प्रोजेक्ट में हमने साइबर सिक्योरिटी से लेकर के डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम स्टार्ट करा वरिष्ठ नागरिकों के लिए। तो ये कार्यक्रम हमने स्टार्ट करा है और इसमें हम बहुत सारे आयामों को कवर कर रहे हैं। जिस जिस प्रकार से हमारे पास कंप्लेंट आती है वैसे वैसे हम उसको उनके पास एग्जांपल्स और अलग अलग तरह की चीजें हम
2: जी बताते हैं। आपने बताया कि आप हेल्पेज इंडिया से जुड़ी हुई हैं और प्रदेश प्रमुख भी हैं, आपके साथ जो बुजुर्ग या कहें जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको आप साइबर सिक्योरिटी या वृद्ध जनों के लिए जो डिजिटल सुरक्षा है उसकी जानकारी आप किस तरह से उनको परिचित कराती हैं, किस तरह से उनको जानकारी देती हैं?
3: सबसे पहले तो हमने उनके लिए गाइड बुक बनाई है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से बनाई है, जिसमें हम लोग उनको किस प्रकार से हर एक एक छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप, एक तो उनके साथ में कि पासवर्ड कैसे बनाना, क्योंकि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है लोग पासवर्ड बना लेते हैं और पासवर्ड एक पासवर्ड वो हर जगह यूज करते हैं और हर जगह पासवर्ड जब यूज होता है तो उनको अगर एक ने अगर एक जगह का पासवर्ड उनका क्रैक कर लिया तो सभी जगह से उनका पासवर्ड क्रैक हो जाता है। तो उनको पहले तो पासवर्ड किस प्रकार से बनाना वो हमने, कहने के लिए बहुत छोटी बात है लेकिन वो बहुत गहरी चीज है जो हम भी शायद आजकल इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, लेकिन हम वरिष्ठ नागरिकों को जरूर एडवाइस देते हैं कि वो करें इम्प्लीमेंट। तो एग्जाम्पल की हम जैसे उनको एक सेंटेंस बताते हैं कि जैसे हरी हैज टू डॉग्स नेम्ड टॉम एंड जेरी, तो उसमें आपके न्यूमेरिकल्स भी आ जाती हैं, एच कैपिटल आता है, हैज का एच स्मॉल आता है, टू में न्यूमेरिकल भी आ जाता है, डी में कैपिटल डी आ जाता है, नेम में एन स्मॉल है, देन टी कैपिटल और एंड का सिंबल वाला एंड आ जाता है। तो उस तरह से उनको हम सेंटेंस के थ्रू सिखाते हैं ताकि उनको याद रहे और वो भूले नहीं, क्योंकि ये चीजें हम लोग भी कई बार पासवर्ड रख के भूल जाते हैं अगर हमने बहुत दिन यूज नहीं करा तो ये कॉमन चीज है जो भूल जाते हैं, उसको हम किस प्रकार से याद रखें उस तरह से भी उनको सिखाते हैं। दूसरा जो हमारे पास वॉइस कॉल आता है मोबाइल पर, वॉइस कॉल आने के बाद में उसको क्लोनिंग की जाती है और आपकी वॉइस रिकॉर्ड करके फिर आपको उसके लिए फिर थ्रेफ्ट किया जाता है। कुछ आते हैं वीडियो कॉलिंग के थ्रू आते हैं कि वीडियो कॉलिंग आपको कर रहे हैं व्यक्ति और आपका फिर वीडियो बना रहे हैं, देन आपको फिर ब्लैकमेल कर रहे हैं
2: जी।
3: तीसरे एक तरह का जो हमारे पास इसमें जो केसेस आते हैं वो है वीडियो कॉल सेक्सटॉर्शन के नाम से आता है, जिसमें वो एल्डरली के साथ में आजकल जो कॉमन होने लगे जो पहले कभी नहीं होता था कि उनको फीमेल कॉल कर रही है और फिर उसका वीडियो बना के फिर वो ब्लैकमेलिंग करती है
2: जी, जी, जी।
3: और उसके अलावा हमारे पास में आपने भी देखा होगा कि अगर हमारा एमपीबी से कॉल आ गया कि एमपीबी से आपका आज ये बिल पे करें इस पे और नहीं तो आपका इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाएगी, और ये बहुत कॉमन हो गया, तुरंत वो फ्रॉड जो करते वो कॉल करते हैं जबकि एमपीबी से कॉल नहीं आता है। एक और ऑप्शन है कि बच्चे को उन्होंने बोला आपका बेटा इस समय कहाँ पर है, तो वो बताएंगे हमारा बेटा कहीं बाहर गया है, तो वो बोलेंगे नहीं आपका बेटा हमारे पास बैठा हुआ है और उसने कहीं ड्रग्स में फंस चुका है और आप हमें इतना पैसे ट्रांसफर करें तो हम उसको किसी को नहीं बताएंगे, रिलीज कर देंगे, वो हम गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स बोल रहे हैं। कहीं से भी वो अपनी एक डिग्निटी बताते हैं और उस तरह से बात करते हैं, पेरेंट्स डर जाते हैं कि हमें बचाना उसको कैसे भी करके और वो कर देते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे हमारे पास में केसेस आते हैं, अब उसको हम कैसे प्रिवेंट करेंगे ये हमारा एक दूसरा।
2: जो आपकी पुस्तक है उसमें और भी चीजें जो बताई गई होंगी उसके बारे में आप बताइए ना कि
3: इसमें हमने एक तो किस प्रकार से आपको किस तरह की लिंक को क्लिक करना है कि जैसे HTTPS होता है HTTP होता है, तो HTTP अगर है सिर्फ तो उसको आपको क्लिक नहीं करना क्योंकि वो सिक्योर नहीं होती है, जब तक HTTPS नहीं होगा तब तक आप उसको क्लिक नहीं करें, वो सिक्योर साइट नहीं होती है
2: जी।
3: दूसरा इसमें कई चीज़ें हैं कि हम लोग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का है, तीसरा हमने इसमें मेंशन किया हुआ कि आपको किस प्रकार से डिजिटली एक्सेस करना है कि मोबाइल के ऑपरेशंस कैसे करना है
2: जी जी।
3: चौथा हमने इसमें डाला हुआ है कि क्या क्या ऑप्शंस है, अगर आप कभी फंस जाते तो आप किसको हेल्प के लिए अप्रोच करेंगे, वो हमने इसमें डाला हुआ है। इस प्रकार से हमने 5-6 पहलू को इसमें डाला हुआ है, और यदि आप कोई ऑनलाइन स्कैम में फंस रहे हैं तो उसको आप कैसे सिक्योर करेंगे। हमने जो सिक्योर पासवर्ड की बात करी थी कि सिक्योर पासवर्ड होना चाहिए इसमें, फिर बैंकिंग में अगर ऑनलाइन यदि आप करें तो किस प्रकार से आपको ऑनलाइन बैंकिंग करना है, बिल्स आपको कैसे पे करना है वो हमने इस नोटबुक में कवर किया हुआ है, फिर प्रोटेक्शन कैसे करना है अपने पासवर्ड का, फिर आप स्कैम यदि हो रहा है तो उसको आप कैसे सिक्योर करेंगे, व्हाट्सअप आप कैसे यूज करें जिसमें आप सेफली रहें और आपके साथ कोई थ्रेफ्ट ना हो, और कैब बुकिंग यदि करना है तो कैब बुकिंग में भी कई बार
2: फ्रॉड
3: हो जाता है फ्रॉड, तो वो आप कैसे सिक्योर करें, तो हमने मेजरली ये चीजें कवर करी है इसमें।
2: वृद्ध जनों के साथ हुए फ्रॉड के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर है क्या जिस पर वे तत्काल बात कर अपनी समस्या बता सके?
3: ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने एक हेल्पलाइन स्टार्ट करी है और जिसका नंबर है 1930
2: जी।
3: जब भी कभी भी किसी के साथ यदि फ्रॉड हो जाता है तो तत्काल जो गोल्डन आवर्स हम कहते हैं कि तुरंत आपको किसी को इन्फॉर्मेशन देना है तो वो इस नंबर पर है। इस नंबर पर जब भी आप कॉल करें उसके पहले जिस प्रकार का आपके पास फ्रॉड हुआ है उसकी पूरी जानकारी पहले आप एक पेपर में लिख लें। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आपके अकाउंट से पैसा निकल गया
2: जी,
3: तो उसका अकाउंट नंबर, कितना अमाउंट गया है, किस डेट को गया है, किस बैंक से गया है, कि बस कोई लिंक अगर आया था जिस पे आपने क्लिक करा उसके बाद गया है, या किसी पर्सन पे आपको लगता है कि किसी पर्सन ने भेजा था, तो आप उससे संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वो आप पूरी पहले एक पेपर पे लिख ले, फिर उनको कॉल करें, क्योंकि आपसे वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आप वो जानकारी लेने के बाद में तुरंत आप उनको कॉल करें, तो वो फिर पूरा कोशिश करते हैं उसको ट्रैकिंग करने के लिए। और साइबर क्राइम का जो गवर्नमेंट का साइट है उसका cybercrime.gov.in वेबसाइट है, इसको आप क्लिक करके बहुत सी आप जानकारी, गवर्नमेंट ने जो स्टार्ट करी हेल्पलाइन, इसकी जानकारी आप ले सकते हैं।
2: संस्कृति जी, आपके साथ में या आपके साथ जो वृद्ध जन है उनके साथ ऐसी कोई घटना घटी हो, फ्रॉड हो गया, तो उसके बारे में हमारे श्रोताओं को जरूर बताइए।
3: जैसा कि मैंने बताया कि फ्रॉड कई तरह के होते हैं, तो जैसे हमारा वीडियो कॉल सेक्सटॉर्शन के नाम से एक फ्रॉड होता है। तो एक वरिष्ठ नागरिक ने, जब ये हम डिजिटल लिटरेसी वर्कशॉप करते हैं, तो कई लोग अपनी अलग अलग केसेस सुनाते हैं कि मेरे साथ ये हो गया। पैसे निकलना तो एक बहुत कॉमन चीज है, जो कम से कम हर वर्कशॉप में कम से कम 4-5 एल्डरली हमें बताते हैं उनके साथ हो चुका है। ये वर्कशॉप होने के बाद में किसी एल्डरली के पास में, जबकि सब कुछ प्रिवेंशन सब कुछ बताया था, फिर भी कम से कम 15-20 दिन बाद एक एल्डरली का कॉल आता है। उन्होंने बताया कि किसी फीमेल ने उनको वीडियो कॉल किया, कुछ 2-3 मिनट बात करी और उसने कॉल रख दिया। उसके बाद में उसने उनका पिक विक लेकर, स्क्रीनशॉट लेकर के उन्हीं के वीडियो बना करके उनको भेजा गया। और वो एल्डरली इतना डर चुके थे कि वो फैमिली को बता नहीं पा रहे थे कि उन्होंने एक नॉर्मल टॉकिंग करा था, लेकिन उसको उन्होंने मोल्ड करके AI के थ्रू बहुत जी, उसको एनिमेटेड कर दिया था। मतलब उनका ये स्थिति हो गई थी, वो सुसाइड करने के मूड में आ गए थे। फिर उन्होंने हमारे यहाँ जो डिजिटल ट्रेनिंग देते हैं राकेश, उनको कॉल किया कि ऐसा सा हुआ है मेरे साथ में, क्या कोई बचाव है इसमें? तो उन्होंने बोला कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही परिवार से आपको छुपाने की जरूरत है, क्योंकि ये चीजें, बाहर का व्यक्ति यदि आपको परेशान कर रहा है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी में जाएं, वहां पर कंप्लेंट करें, रिटर्न में कंप्लेंट दें, और उसके बाद में फिर आपको सहायता दी जाएगी। तो तब जाके वो थोड़ा सा उनको एश्योरेंस मिला कि नहीं, हम कुछ हेल्प ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट की हेल्पलाइन से भी उन्होंने हेल्प ली, प्लस जाकर के उन्होंने पुलिस कंप्लेंट उसने साइबर सिक्योरिटी में करी। तो ये चीजें भी ऐसी है, तो जो एल्डरली सोचते उनके साथ ये चीजें नहीं होंगी, या यंग जनरेशन सोचती उनके साथ में होगा, लेकिन होता है ये चीजें। इसी प्रकार से हमारे पास में कुछ एल्डरली के केसेस आए थे, जिसमें वो वॉइस को लेकर के था, उनका बेटे की वॉइस में किसी एल्डरली को कॉल कर रहे हैं, पापा मुझे अभी अर्जेंट में, मतलब मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया, अब मैं अपने दोस्त के फोन से लगा रहा हूँ, आप मुझे इतना इतना अमाउंट पे कर दो, मेरे अकाउंट में अभी नहीं है। अब पिताजी हैं, उन्होंने तुरंत उसको भेज दिया अकाउंट, पता पड़ा बेटे ने कॉल ही नहीं किया था, क्योंकि बेटे की वॉइस रिकॉर्ड करके उन्होंने खुद कॉल किया था। तो जो पैसा हमारा, हमारी गलती से चला जाता है, उसको वापस लेना बहुत मुश्किल होता है। तो हमारा यही एम है डिजिटल सेफ्टी से, कि हम किस प्रकार से उनको प्रिवेंट कर पाए, पहले ही हम गलती करने के पहले उनको रोक पाए, ताकि वो इस स्टेज पे जा ही नहीं पाए।
2: जैसे बुजुर्ग जो है आम साइबर सिक्योरिटी के खतरों से खुद को वो कैसे बचा सकते हैं,
3: उसके लिए कुछ डोंट एंड डूज हैं कि क्या करना चाहिए उनको, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे हम बच्चों से बोलते हैं कि ये मत करो, चलोगे गिर जाओगे, लेकिन ये चीज ऐसी जिसको आप इमेजिन नहीं करते हो। आज आपके पास में कोई थ्रेफ्ट सामने आया, आपने उसको प्रिवेंशन कर लिया, कल को कोई नई चीज आ जाएगी, तो उसके लिए हम मानसिक रूप से तैयार नहीं होते हैं। और क्योंकि वरिष्ठ नागरिक, तो AI एक ऐसी चीज है जो बहुत टेक्नोलॉजी वास्ट होती जा रही, दिन पे दिन नई नई चीजें आती जा रही है। तो हमारी अगर एज ग्रुप की बात करें, मिडिल एज ग्रुप, यंग एज ग्रुप की, हर चीज हम लोग भी नहीं समझ पाते हैं, जबकि हम डेली उस चीज को यूज करें, हम डेली लैपटॉप पे बैठते हैं, काम करते हैं, हम मोबाइल पे एक्सेस करते हैं, लेकिन कुछ सिस्टम ऐसे हो जो हम भी नहीं समझ पाते। तो उसको इजी बनाने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने कुछ चीजें, उनको एडवाइस जो है वो होना चाहिए, जैसे कि सबसे पहले उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पे हम बात करेंगे। तो जैसे साइट्स हैं, जैसे हमने कोई भी साइट यदि वो सर्च भी कर रहे हैं, कई बार किसी को लर्निंग की आदत होती है कि अब एल्डरली है तो लैपटॉप बैठ कर कुछ सीखना चाह रहे हैं, इंटरनेशनल कोई चीज पढ़ रहे हैं, तो URL जब भी क्लिक करें तो वो सेफ है या नहीं है उस साइट को देख करके करें, जिसमें HTTPS हो तो ही देख करके वो उस पर क्लिक करें। दूसरा, यदि कोई आपको कॉल करके, मिस कॉल करके छोड़ रहा है या बार बार आ रहे हैं, तो वो आप कॉल बैक ना करें। अगर अर्जेंट होगा तो आपको दोबारा कॉल बैक करेगा, और उसको अगर अननोन पर्सन है तो आप विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में फोन काट दें, जब तक वो अगर अपनी आइडेंटिटी प्रॉपर नहीं बता रहा है। तीसरा एक ये होता है चीजें, कि जब व्यक्ति आपको वीडियो कॉल करता है, वीडियो कॉल यदि अननोन नंबर से आ रहा है तो आपको कॉल उठाना ही नहीं है उसको। तो वीडियो कॉल जब आते हैं और हम उसको बिल्कुल देख करके करते हैं तो वो चीजें आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि हम उस चीज को वीडियो कॉल है उसको नहीं उठाएं। अगर हमारे कोई परिचित भी कर रहे होंगे तो फिर हम टेक्स्ट करें पहले कि हाँ मैं हूँ या कुछ है उसके बाद, और यदि आपको देख भी रहा कि अननोन पर्सन तो तुरंत उसको, गलती से आपने अटेंड भी कर लिया तो तुरंत उसको काट दें। दूसरा एक ऑप्शन है कि ओटीपी होता है। ओटीपी यदि आपके पास में आ रहा है तो ओटीपी आप पहले देख लें सिक्योर है नहीं है। यदि आपको किसी बैंक का यदि आप ट्रांजैक्शन करें तो आप बैंक में कंफर्म भी कर सकते हैं फोन करके कि हमने ये ट्रांजैक्शन करने के लिए किया था, क्या आपके ये भी सिस्टम है या नहीं है, आपको श्योर है तो ही करें, नहीं है तो आप पूछ सकते हैं। हर जगह हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं और दे विल रिस्पॉन्ड। कुछ होता है कि जैसे वेरिफिकेशन के लिए कॉल आता है तो वेरिफिकेशन के लिए कॉल के लिए आप वो बोलेंगे हम इस बैंक से बोल रहे हैं, हम आपका डाटा वेरीफाई करना है, तो आप पहले उस बैंक को कॉल करेंगे क्या आपने किसी व्यक्ति को वेरिफिकेशन के लिए कॉलिंग पे लगाया हुआ है। हम वेरिफिकेशन सिर्फ गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को ही देना चाहेंगे, हम किसी भी अननोन पर्सन को वेरिफिकेशन नहीं दे सकते। तो एल्डरली मना कर सकते हैं साहब कि हम वेरिफिकेशन नहीं दे सकते हैं। और लिटरेसी की बात, कोई भी पेपर्स है तो यूजुअली कई बार आते हैं कि किसी ने कुछ अप्लाई कर दिया है कि आपके बच्चे ने लोन के लिए अप्लाई किया और वो आपके पास आगे साइन करवाने कि बच्चे ने लोन के लिए अप्लाई किया हुआ साइन करना, तो आपको किसी को एंटरटेन ही नहीं करना है। कोई भी अननोन पर्सन एंटरटेन किसी और के नाम से आपको कॉल कर रहे तो आपको बोलना नहीं, पहले हम खुद आप खुद उससे उसी के नंबर पे बात करें उसके बाद ही उसको एंटरटेन करें, किसी और के नंबर से आप एंटरटेन ना करें। और बाकी मेन हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट जो ओटीपी शेयर कर देते हैं कि जैसे हमसे नहीं हो पा रहा तो हमने किसी और को बोला, तो आप किसी मतलब किसी भी चाहे फैमिली मेंबर हो चाहे आपके पड़ोसी हो चाहे इनमेट्स हो चाहे आपको कोई भी, उसको ओटीपी कभी शेयर ना करें। अधिकतर ये गलती करते हैं कि उनसे ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रहा तो बोलते अच्छा बेटा मैं ओटीपी भेज रहा हूँ तुम कर दो, क्योंकि उनको वो प्रोसेस करने में तकलीफ हो रही है, तो हम वो प्रोसेस को सीख लें बजाय कि उसको हम शेयर करने के।
2: संस्कृति जी, जैसा कि बहुत से मोबाइल्स में हमारे पास में भी मैसेजेस आते हैं, आज ये कंपनी इतने इतने फलाने का इतना इतना रिचार्ज आपको उपलब्ध करा रही है, तो ये जो मैसेजेस होते हैं ये किस कारण से होते हैं, या सही होते हैं या फ्रॉड होते हैं?
3: ये जो हम बात कर रहे हैं कि किसी की तरफ से अगर मैसेज आ रहा है तो कोई भी कंपनी हो सकता है, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, किसी का भी है, तो बेटर है कि आप पहले अपने ही जिस कंपनी का है उसको आप कॉल करें और उनसे वेरीफाई करें बजाय कि उस पर भरोसा करने के। और हर चीज आपको वेबसाइट पर जो है वो करेक्ट लिंक करेक्ट फोन नंबर्स मिल जाते हैं, उनके थ्रू आप उसको एक्सेस करें।
2: नहीं, जैसे कि बुजुर्गों के पास में भी मोबाइल है, आजकल सब एंड्रॉइड फोन चला रहे हैं, या छोटे मोबाइल भी है, कीपैड मोबाइल्स भी है, उनके अंदर भी जैसे बहुत सारे लिंक आ जाते हैं कि आप इसको दबाइए, इसको प्रेस करने से आपके खाते में इतने इतने लाख रुपए पहुंच जाएंगे।
3: बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि सबसे इनसिक्योर चीज यही लिंक होती है। किसी भी प्रकार के लिंक पे हमें क्लिक करना ही नहीं है, और यदि हमने क्लिक कर दिया तो हो सकता है उसके तुरंत बाद ही आपके अकाउंट से पूरा पैसा चला जाए। और एक और चीज इसमें होती है कि जब हम लिंक कोई भेजता है तो अगर वो सिक्योर जगह से नहीं आई है तो हमको वैसे भी उसको एंटरटेन नहीं करना है, और यदि सिक्योर आती है तो भी नहीं होता। कई बार एक एग्जाम्पल ऐसा भी हुआ कि गवर्नमेंट के साइड हमने देखी, वहीं से एक नंबर लिया और कॉल किया, लेकिन वो व्यक्ति फ्रॉड निकला, उसने हमें लिंक भेज के और पैसा निकाल लिया हमारे अकाउंट से और हमें पता नहीं पड़ा, क्योंकि वो हमने नंबर जो लिया था गवर्नमेंट की साइट से लिया था। तो हम पहले ये भी वेरीफाई करें कि क्या ये उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट का नंबर है या नहीं है। तो आजकल मोबाइल नंबर के चेंज हो जाते हैं, पहले सिर्फ लैंडलाइन नंबर होते थे तो हमें भरोसा होता था कि ये लैंडलाइन नंबर पर्टिकुलर ऑफिसर्स का ही है या गवर्नमेंट के जितने नंबर है उस पर दिया हुआ है। आजकल मोबाइल नंबर होने से एक इनसिक्योरिटी बढ़ गई है, तो हमें किसी भी चीज को लिंक पे क्लिक करना ही नहीं है।
2: मान लीजिए अगर किसी ने उसके ऊपर क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद में उसके साथ जो फ्रॉड होता है उसके लिए क्या किया जा सकता है?
3: उसके लिए सबसे पहले तो जिस बैंक का अकाउंट है वहां पे इन्फॉर्मेशन देनी होती है, अकाउंट को ब्लॉक करवाना पड़ता है, और दूसरा जो हमने बताया कि साइबर सिक्योरिटी के जो हेल्पलाइन नंबर है वहां पर वो कॉल करें ताकि वो अपने लेवल पे उसको कुछ एक्शन ले पाए। अगर कैसे हो भी गया किसी के साथ तो तुरंत ही 1930 पर कॉल करें और वो जो गोल्डन आवर आपका जो रहता है एक घंटे उसके अंतर्गत वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद वो कोशिश करते हैं कि आपको हेल्प दे पाए, क्योंकि पैसा निकल जाने के बाद में हमारी गलती से थोड़ा मुश्किल होता है वापस आना।
2: अच्छा, संस्कृति जी, हम अपने मोबाइल कंप्यूटर को किस प्रकार से सुरक्षित रख सकते हैं?
3: उसके लिए कुछ तरीका आप अपना सकते हैं, खास करके हमारे वरिष्ठ नागरिकों को हम ये सलाह देते हैं कि आप हमेशा एक तरह का लॉक ना रखें अपने मोबाइल पर। कभी आप पिन नंबर डालें उसमें पासवर्ड का, कभी आप फिंगरप्रिंट रखें, कई बार आप फेस रिकॉग्निशन के हिसाब से आप उसको डाल के रखें, या उसका पैटर्न वाला लॉक करें। तो समय समय से उसको चेंज करते रहें, सो दैट आप सिक्योर रहेंगे। और दूसरी चीजें जो अक्सर वरिष्ठ नागरिक नहीं करते हैं वो है कि सॉफ्टवेयर को इंस्टॉलेशन, कि अपडेट्स जो आते हैं मोबाइल पे वो हम लोग नहीं करते हैं, तो उसकी भी उनको सलाह देते हैं कि आप लोग समय समय पर जो अपना मोबाइल जिस कंपनी का उसके अपडेट्स आते हैं वो आप उसको अपडेट कर दें, ताकि आप सिक्योरिटी से बच सकते हैं।
2: जी जी जी। यदि किसी को डिजिटल लिटरेसी ट्रेनिंग वर्कशॉप करानी है तो वो आपसे कैसे संपर्क कर सकता है?
3: डिजिटल लिटरेसी वर्कशॉप जो हम करवाते हैं उसमें हम अधिकतर जो हमारा भी फोकस रहता है सीनियर सिटीजन एसोसिएशंस, कि जितने भी सीनियर सिटीजन एसोसिएशन है उनको हम संपर्क करते हैं, और हम एक बैच जो रखते हैं 35 से 40 लोगों का, ताकि अच्छे से हम एक एक सीनियर सिटीजन तक पहुंच सके और उनको हम प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी कराते हैं। तो ये हमारा सेशन करीबन 1.5 से 2 घंटे का रहता है, जिसमें हम 1 से 1.25 घंटे का सेशन रहता है, और उसके बाद में क्वेश्चन आंसर होते हैं। एक एक व्यक्ति हमसे कई चीजें पूछता है कि ये मोबाइल पे मेरे इसमें ये सिक्योरिटी नहीं दिखा रहा, आपने बताया करना था, हम कैसे करें? तो हम अपने वॉलंटियर्स भी साथ में रखते हैं, ताकि कुछ उनको गाइड करते जाए। तो ये वर्कशॉप जो हम करते हैं 2 घंटे का, इसमें उनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी देते जाते हैं साथ साथ में। और ये सब एक बार यदि हो जाता है, दूसरी बार हो सकता है कि आधे लोग ऐसे जो प्रैक्टिकल कर पा रहे हैं, बाकी लोग नहीं कर पा रहे, उनको लगा हमने समझ लिया, लेकिन जब ये घर पे जाके कोशिश करते हैं तो नहीं कर पाए। उसके लिए हम इनसे बोलते हैं आप दोबारा भी हमें संपर्क कर सकते हैं, हम दूसरी बार भी आप लोगों के लिए रख सकते हैं, या हम जिस जगह दूसरी वर्कशॉप कर रहे हैं तो उनको इनवाइट कर लेते हैं जिनको रिक्वेस्ट हमारे पास में आई है कि हमें कुछ चीजें और समझनी है। एग्जाम्पल जैसे हमने सीनियर सिटीजन एसोसिएशन है, उनको हमने ये डिजिटल लिटरेसी वर्कशॉप करा, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वालों के संपर्क में एसोसिएशन वालों के कम से कम हमारे पास में 20 और ट्रेनिंग के रिक्वेस्ट आए, कि हर एरिया वाइज अलग अलग होते हैं एसोसिएशंस बने होते हैं।
2: जी जी जी।
3: तो लगता है कि हमारे पास तो इतने सारे लोग रजिस्टर्ड हैं और हर व्यक्ति चाहता है इसकी ट्रेनिंग लेना, तो हम हर व्यक्ति को समय और एक निश्चित स्थान अपना फिक्स कर लेते हैं और उनकी सुविधा के अनुसार हम लोग करते हैं, वरिष्ठ नागरिक जब सुविधाजनक रहे और वो हमसे संपर्क करें। दूसरा इसमें हम ये करते हैं कि हम इनके साथ में एक फीडबैक सेशन भी रखते हैं, कि जब ट्रेनिंग खत्म होता है तो उनको एक फीडबैक फॉर्म हम फिल करवाते हैं, उसमें उन्होंने जो सीखा है वो क्या समझ में आया उनको, और क्या वो नई चीज और सीखना चाह रहे हैं जो हमने नहीं एड ऑन करी थी, या उनको लगता है कुछ एग्जाम्पल है जिनको लगता है ये हमारे संपर्क में आया ऐसा केस और आपने नहीं इसके बारे में बताया, तो वो भी हम उसको एड ऑन कर लेते हैं। उनका हम 1 मिनट का 1.5 मिनट का वीडियो बनाते हैं कि उनका फीडबैक कैसा रहा, बहुत उनको अच्छा लगा। तो अधिकतर सब सीनियर सिटीजन बोलते हैं बहुत आउटस्टैंडिंग हमें फीडबैक हमें मिलता है, और वो चाहते हैं कि ऐसी वर्कशॉप लगातार हम करें।
2: करते हैं।
3: और संपर्क करने के लिए हमसे यदि आप लोग संपर्क करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हेल्पेज इंडिया के वेबसाइट पे जब मध्य प्रदेश डालेंगे तो आपको मध्य प्रदेश का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा, वहां आप संपर्क कर सकते हैं। फिर भी यदि आप एक नंबर लिखना चाहें तो आप एक नंबर लिख सकते हैं जो मध्य प्रदेश के ही राज्य प्रमुख का नंबर है 9973-01230। ये नंबर पर आप संपर्क करके और हमें कॉल कर सकते हैं। फीडबैक जब हम लोग लेते हैं तो उसके बाद में जब लोग चले जाते हैं अपने घर में, तो हो सकता है 10 दिन बाद किसी के साथ में कुछ कॉल हुआ। तो जैसे एक एग्जांपल हम देना चाहेंगे, जिसमें हमने एक वीडियो कॉलिंग वाला एग्जांपल भी दिया था कि उनके साथ में वीडियो कॉलिंग हुआ पर वो अपने आप को डर के और सुसाइड करना चाह रहे थे, तो उनको प्रिवेंट हमने किया, नहीं तो वो व्यक्ति परिवार से समाज से और लोगों से डर के सुसाइड कर रहे थे, क्योंकि उनको ये सोचा नहीं था कि इस प्रकार से इस उम्र में उनके साथ में इस तरह की गलत घटना हो जाएगी कि महिला आपको वीडियो कॉल कर रही है, फिर आपके लिए उल्टे सीधे वीडियोस आपके बना के भेज रही है, और वो बोल रही मैं आप मुझे मेरे अकाउंट में पैसा डालो नहीं तो मैं क्या आपके संपर्क के लोगों को भेज दूंगी वीडियो, अगर वायरल हो जाएगा तो वो किसी मतलब उनको लगता मैं समाज के सामने अपना मुंह दिखाने लायक नहीं बचूंगा। तो उस व्यक्ति के अंदर इतनी ज्यादा गिल्ट फीलिंग आ गई थी कि वो सुसाइड करने को जा रहे थे, तब उन्होंने हमें संपर्क किया कि मैंने आपकी ट्रेनिंग की थी, आप लोग हमें गाइड करो। फिर उनको हमने गाइड किया था आप पहले साइबर सिक्योरिटी में कंप्लेन करें, डरने की जरूरत नहीं है, वो गलती आपने नहीं करी है, कोई और व्यक्ति आपको फंसा रहा है तो उसके लिए आप ना डरें, और उस तरह से हमने उनको प्रिवेंट किया था। ऐसे ही हमसे एक लिंक जैसे भेज देते हैं लोग, किसी ने लिंक भेजी तो वहां से उन्होंने हमारे एम्प्लॉय को फोन किया कि ये वाली लिंक मेरे पास में आई है, क्या इसको क्लिक करके मैं भेजूं, और वो उनके काम की थी लिंक
2: जी।
3: तो हमारे व्यक्ति ने उनको साफ मना कि नहीं, ये आप पहले जिस डिपार्टमेंट का है, जिस जगह का, बैंक का बोल रहे हैं, पहले आप उस बैंक में संपर्क करें, उनसे बात करें, श्योर हो जाएं कि क्या आपके अधिकारी ने हमें भेजा है। तो उन्होंने बोला था नहीं, ये किसी थर्ड पर्सन ने भेजा था, बैंक से नहीं आया था। तो ये इस तरह से हम उनको प्रिवेंट करते हैं। तो लोग क्वेरी के लिए हमें रेगुलरली फोन करते जाते हैं आफ्टर वर्कशॉप।
2: संस्कृति जी, ये जो डिजिटल लिटरेसी ट्रेनिंग वर्कशॉप है, ये कितने दिनों की होती है?
3: ये सिर्फ 2 घंटे की होती है, 1 दिन में 2 घंटे की। यदि कई बार 3 घंटे भी चल जाती है, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन आंसर। कई बार एल्डरली बोलते नहीं, हम तो आप तो हमें 1 घंटा और बैठो, लेकिन हमें सारी क्वेरीज सॉल्व करके जाओ। हमारा जो सिखाने का समय होता है वो मैक्सिमम 1.5 घंटे होता है। 1.5 घंटे के बाद में आप जितना समय क्वेरी और समझने में उसको प्रैक्टिकल में दे पाए।
2: इसमें क्या सेशंस होते हैं?
3: 3 घंटे मैक्सिमम आप लेके चले सेशन, और 1 दिन में हम 3 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, पर क्लैश नहीं होना चाहिए वो।
2: संस्कृति जी, क्या ट्रेनिंग होने के बाद में यदि किसी को आवश्यकता होती है तो आप किस तरह से उनकी सहायता करते हैं?
3: ट्रेनिंग के बाद में 2 तरह के हमारे पास में रिक्वेस्ट आती है। एक तो प्रिवेंशन के लिए आती है कि हमने, जैसे हमारे परिचित है, इनके साथ में हो गया, अब आप इनको बताओ कैसे करना है, जिन्होंने ट्रेनिंग अटेंड नहीं की है तो वो हेल्प चाहते हैं। पहला तो हम सजेशन देते हैं कि अब हमारी अपकमिंग ट्रेनिंग इस जगह पर होने वाली है, तो आप यहाँ पर आके उसको अटेंड कर लें। और दूसरा, अगर इंस्टेंट हेल्प की जरूरत होती है, जैसे कि कुछ फ्रॉड हो गया, उनको तुरंत हेल्प की जरूरत है, तो हम तुरंत उसको फोन कॉल के थ्रू हम इन्फॉर्म करते हैं, जो उनको डिटेल होता है वो भेजते हैं, और हम उनको हमारे लेवल की हेल्प होती है वो कर पाते हैं। क्योंकि कुछ चीज ऐसी है जो पैसा जाने के बाद हम भी कुछ नहीं कर पाते, बैंक भी कुछ नहीं कर सकता, बट हम उनको गाइडेंस दे पाते हैं सही कि आपको कब किससे संपर्क करना है ताकि आप उसको प्रिवेंशन कर सके। दूसरा, लोग हमें फीडबैक देते हैं कि आप कुछ हमें नई चीजें और हैं जो एड ऑन कर, जैसे किसी के साथ कोई नया एग्जांपल हो गया कि एक हमसे सीनियर सिटीजन ने कर रहा था कि हमारे बच्चे हैं और बच्चे आजकल मोबाइल पे गेम्स खेलते हैं, तो उन्होंने मेरा मोबाइल लेकर के गेम्स खेल रहे थे। अब गेम्स खेलते खेलते वो ऐसे साइट उन्होंने क्लिक कर दी जिससे उनका पैसा निकल गया। उनको पता नहीं, क्योंकि उनको नहीं पता था कि बच्चे क्या कर देंगे, और ये उनकी गलती नहीं थी, लेकिन छोटे बच्चों को हम मोबाइल अक्सर दे देते हैं, तो वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चों को मोबाइल ना दें, क्योंकि हमारे मोबाइल में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसको क्लिक करने से हम गलत ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं बच्चे, तो वो उसके लिए हमें संपर्क किया जाता है। और तीसरा होता है कि वो हमें चाहते हैं कि आपने एक ट्रेनिंग कर दी, हमारे कई साथी ऐसे जिनको ट्रेनिंग करना है, तो उनके लिए आप हमें दोबारा ट्रेनिंग सेशन करें, उस तरह के रिक्वेस्ट आते हैं। तो ये 3-4 तरह की मदद हम लोग कर पाते हैं।
2: संस्कृति जी, आप हमारे श्रोताओं को क्या मैसेज देना चाहेंगी?
3: मैं अंत में एक ही मैसेज देना चाहूंगी कि हम सभी लोगों पे भरोसा करते हैं, तो सब पे ना भरोसा करके सिर्फ परिवार वालों पे भरोसा करें। कोई भी चीज आपको सीखनी हो, खास करके मोबाइल ट्रांजैक्शन को लेकर के, बैंकिंग को लेकर के, तो सिर्फ अपने ही व्यक्तियों को पासवर्ड शेयर करें या किसी से भी शेयर ना करें। ऑनलाइन अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती, 4 बार पूछ लें करने के पहले, क्योंकि वो एक क्लिक पे आपका कुछ भी हो सकता है, नुकसान हो सकता है। और अननोन व्यक्ति का फोन उठाए नहीं, वीडियो कॉल ना उठाए आप लोग, और अननोन किसी भी साइट पे क्लिक ना करें, और जब भी आपको आवश्यकता हो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।
2: बहुत बहुत धन्यवाद संस्कृति जी।
3: धन्यवाद।
2: श्रोताओं, हमारे साथ टेक गुरु के रूप में जुड़ी हुई थी प्रदेश प्रमुख हेल्पेज इंडिया सुश्री संस्कृति खरे जी। और साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसा कि संस्कृति जी ने जो हेल्पलाइन नंबर हमें बताए हैं उन्हें हम दोहरा रहे हैं। अगर आपके साथ ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी हो जाती है तो उसकी रिपोर्ट करने के लिए 1930 पर कॉल करें। किस पर करें? 1930 पर। और साथ ही cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और इसके साथ ही हेल्पेज इंडिया से वरिष्ठ जनों को डिजिटल लिटरेसी ट्रेनिंग देने के लिए 9977301230 पर संपर्क कर सकते हैं। तो श्रोताओं, हमारा टेक गुरु कार्यक्रम यही समाप्त होता है। हमें दीजिए इजाजत। इस कार्यक्रम की परिकल्पना अदिति गौड़। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम टेक गुरु 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए, सुनते रहिए। अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।
1: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: ये दुनिया 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर। मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
3: ये मेरा इंडिया।
2: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
4: नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। आइए सुनते हैं कार्यक्रम भारत विभूति।
1: श्रोताओं 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत विभूति।
2: भारत विभूति कार्यक्रम में आज सुनिए अमन के सिपाहियों की दास्तान। लेकिन पहले स्वीकार कीजिए मनीषा
3: और दानिश का
2: नमस्कार।
3: भारत की सांस्कृतिक परंपरा और यहाँ के समाज के ताने बाने को समझने के लिए हमें वर्षों पुरानी रस्मों और जीवन को समझना होगा।
2: भारत की भौगोलिक संरचना ऐसी है कि इसमें कई तरह की सुख संपदा भरी पड़ी है। हजारों साल पहले सोने की चिड़िया के नाम से मशहूर हमारा देश विदेशी आक्रांताओं की पहली पसंद था।
3: यही कारण है कि शक, यवन, हूण, मंगोल आदि विदेशी आक्रमणकारी अपनी खाली झोली भरने के लिए भारत की ओर कूच करते थे। रेगिस्तान के बंजर इलाकों या साल भर बर्फ से ढके उत्तरी क्षेत्र के दूरदांत सिपाही हमारे देश में लूट कर अपना जीवन यापन करते थे।
2: इनका रास्ता था हिमालय की घाटियों और दर्रों को पार कर पंजाब सिंध में प्रवेश, या पश्चिमी भारत के रेगिस्तानों के रास्ते भारत का पश्चिमी समुद्र क्षेत्र भी भारत पहुंचने का एक विकल्प था, विशेषकर समुद्री दस्युओं के लिए।
3: इसी समुद्री रास्ते से पुर्तगाली, डच, फ्रेंच और अंग्रेज भी भारत आए और यहाँ से व्यापार के बहाने जमीन, जंगल और खदानों पर कब्जा करने लगे। भारत की प्राकृतिक संपदा का दोहन कर अपना घर भरने लगे।
2: पर इन सब के बावजूद ये तमाम नस्ल के लोग धीरे धीरे भारत में घुलने मिलने लगे। यहाँ की सांस्कृतिक परंपराएं, संगीत, पुरातत्व, स्थापत्य कला इनके लिए विस्मय का कारण और खोज का कारण बनी।
3: इसके ठीक विपरीत पूर्व के देश और सभ्यताएं भारत की सांस्कृतिक प्रतिछाया सी बन गईं। संस्कृत और बौद्ध ग्रंथों ने उनके जीवन को भारतीयता से रंग दिया। वे भारत से धन संपदा नहीं, बौद्धिक संपदा आयात कर रहे थे, उसे आत्मसात कर रहे थे।
2: रामायण की विपुल रंजक छवियों को उन्होंने अपने जीवन में उतारा और उसके मानवीय मूल्यों को आत्मसात किया। बौद्ध धर्म का अनुशासन, साधना और तप उनके राष्ट्रीय मूल्य बन गए और वे कृतज्ञ भाव से भारत की ओर देखने लगे।

0: मुगलों के आक्रमण के साथ फारसी संस्कृति भी आई। दरबारों का कामकाज, शाही फरमान सब फारसी भाषा और लिपि में दर्ज होने लगे। फारस याने आज का ईरान भी संगीत की समृद्ध परंपरा से भरा हुआ है।
1: श्रोताओं, संगीत के सात सुरों की सरगम उनके यहाँ भी उतनी ही मान्य है जितनी हमारे यहाँ। उनके संगीत में ओम तोम की लगावट और तराना की दिर्तुम दिर्दिर्तुम की तेज लय में डूबना सीधा खुदा की इबादत में डूबने जैसा है।
0: भारत के संगीत भजन, ध्रुपद, पद गायन से प्रभावित हो सूफी संतों ने अपने को उसमें एकाकार कर दिया।
1: ये धुएं की बलखाती वलयों के साथ स्वरों का उत्तेजक लय प्रधान संगीत उस्तादों और संतों का प्राण आधार बन गया। साधारण आम जन भी इससे जुड़ने लगा। दिन भर की थकान को सूफी संतों की वाणी ने अल्हाद और खुशियों से भर दिया।
0: भाईचारे का संदेश जन जन तक फैलाने वाले सूफी संतों में हजरत दाता गंज बख्श, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, शाह आलम, हजरत बहाउद्दीन जकारिया और शाह शम्स मशहूर हैं।
1: इन संतों ने अपनी सरल भाषा में दिल को छू लेने वाली कविताएं लिखी, उनकी धुने बनाई और जन जन में इसे लोकप्रिय बनाया। गांव गांव की चौपालें इन तरानों से गूंजने लगी।
0: बाबा फरीद ने लिखा, हे फरीद, धूल मिट्टी की निंदा न कर, धूल के समान कोई नहीं। जब हम जीवित होते हैं तो ये पैरों के नीचे होती है और जब हम मरते हैं तो ये हमारे ऊपर होती है।
1: जोते मारण मुखियां उना न मारो गुम, अपने घर जाइए पैर तिना दे चुम। यानी हम सहनशील हों, जो तुम्हें मुक्का मारता है उसे मुक्का मत मारो, उसे क्षमा कर उसके पैरों को चूम लो।
0: मुल्तानी काफी में बाबा फरीद के दोहे गांव गांव गाए जाते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी उनके चार शब्द और 112 श्लोक शामिल किए गए हैं, जो गुरु अर्जुन देव जी ने खोज निकाले थे।
1: सूफी कवि वारिस शाह ने अपने हीर के माध्यम से प्रेम और करुणा का संसार रचा। वहीं बुल्ले शाह ने मानव मात्र को एक होने का संदेश दिया। चल बुलिया चल उठे चलिए, जिथे सारे अन्हे, ना कोई साड़ी जात पछाने, ना कोई सानू मन्ने।
0: संत बुल्ले शाह एक ऐसे संसार की कल्पना करते हैं, आंखों से भेदभाव ना दिखाई पड़े, इंसानियत और बराबरी सबसे बड़ी पूंजी है। ऐसी जगह चलकर रहो जहां ना कोई जाति पहचाने, ना कोई उसको माने।
1: लगभग 11वीं शताब्दी से लेकर आज तक उत्तर भारत के अनेक सूफी संतों ने प्रेम की वाणी का संचार किया, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख और सिंध के बाशिंदों के बीच आदर पूर्वक स्वीकार की गई।
0: 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारत के पूर्वी हिस्से यानी अविभाजित बंगाल में रहस्यमय सूफीवाद विकसित हो रहा था, जो बाउल गान के नाम से प्रसिद्ध है।
1: ये एक ब्राह्मणवाद, शैववाद और बौद्ध सहजिया संप्रदाय के सहयोग से एक मिश्रित संप्रदाय विकसित हुआ, जो नाथ संप्रदाय कहलाया। इस्लाम और वैष्णव संप्रदाय में परिवर्तन के बावजूद पुराने संस्कारों को छोड़ना संभव नहीं था, सो उन्होंने धर्म पालन जारी रखा। हिंदू गुरु या मुस्लिम पीर के कोई भी शिष्य इसमें हो सकते हैं।
0: बाउल का समानार्थी शब्द है व्याकुल, यानी अपने इष्ट के प्रेम में व्याकुल, तंद्रा में रहना। यह सूफी के हाल के जैसा ही है। बाउलों के दो वर्ग हैं, सन्यासी बाउल जो पारिवारिक जीवन त्याग, भिक्षा पर निर्भर रहते हैं। दूसरे हैं पारिवारिक बाउल, जो गांव बाहर अपना अखाड़ा बना परिवार के साथ रहते हैं।
1: श्रोताओं, बाउल संगीत दिव्य प्रेम का गुणगान करता है। इकतारा इनका वाद्य यंत्र है। सभी धर्मों में मनुष्य धर्म सबसे बड़ा है और बाउल संगीत इसी की व्याख्या करता है।
0: लालन फकीर 1774 में जन्मे सबसे बड़े सूफी बाउल माने जाते हैं। ये आशु कवि थे इनकी रचनाएं 19वीं सदी के प्रारंभ तक मुखाग्र रूप से एक से दूसरे गायक तक पहुंचती रहीं। पूर्व और पश्चिमी बंगाल की सांगीतिक संस्कृति पर बाउल गीतों का बहुत प्रभाव है।
1: गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर लालन शाह को अपना गुरु जैसा मानते थे। उनकी अनेक रचनाएं बाउल संगीत और उसके रहस्यमय दर्शन से प्रेरित हैं।
0: लालन शाह बंगला संस्कृति के सबसे बड़े संवाहक कवि हैं। उनके 5000 के लगभग गीत चलन में हैं, पर शोधकर्ता मानते हैं कि इनमें लगभग 1000 लालन शाह रचित ही हैं। लालन क्रांतिकारी सूफी कवि हैं।
1: वो कहते हैं कि सब लोग कहते हैं कि लालन कौन जाति के हैं। लालन पूछता है कि जाति का क्या रूप होता है, इन आंखों ने देखा तो नहीं, कोई माला कोई तस्वीर, तो जात अलग हो जाती है, अंत समय कौन सा चिन्ह रह जाता है।
0: एक गीत में लालन कहते हैं कि मनुष्य जीवन दोबारा नहीं मिलेगा, जो करना है शीघ्र करो, अरे अबोध मन तू अपने ही लोगों को नहीं पहचानता, अरे दोबारा मनुष्य जन्म नहीं होगा। बाउल सूफी संप्रदाय केवल मानव धर्म को मानता है, जाति पाति की अवधारणा से दूर वे अपने मन के भीतर छिपे मोनेर मानुष की खोज करते हैं। इन गीतों में देह तत्व परम आत्मा से मिलन और बिचोह का संदेश तो है ही, साथ ही सर्वधर्म संभाव का आग्रह भी स्पष्ट है।

0: श्रोताओं, लालन शाह के अनुगामी हजारों बाउल गायक शिष्य हैं, जो आज भी पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में घर घर अमन और समता का संदेश अपने संगीत के माध्यम से फैला रहे हैं। विदेशों में भी ये फकीर आमंत्रित किए जाते हैं और अभिजात कलाकारों ने भी इसे नए परिवेश और नई संगीत योजना के साथ अपनाया है।
1: आइए श्रोताओं, सुदूर दक्षिण में केरल प्रांत की बात करें। दक्षिण भारत की चारों प्रमुख भाषाओं में अनेक संतों ने भक्ति रचनाएं लिखी। तमिल में 12 अलवार संतों ने वैष्णव धर्म पर 5वीं से 9वीं शताब्दी के बीच महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। संस्कृत रामायण के लोक भाषाओं में अनुवाद हुए।
0: केरल में आदि शंकराचार्य ने अनेक सुंदर काव्य रचनाएं संस्कृत में रची, जो मंदिरों में संगीत रूप में गाई जाने लगी। संत त्यागराज, श्यामा शास्त्री और मुथु स्वामी दीक्षितर ने कर्नाटक संगीत पर आधारित अनेक भक्ति रचनाएं तैयार की, जो आज भी पूरे कर्नाटक संगीत का आधार संगीत मानी जाती हैं।
1: 20 अगस्त 1856 को केरल के चैंपा झंथी में एक ऐसे महापुरुष ने जन्म लिया जो बाद में चलकर एक बड़े दार्शनिक, आध्यात्मिक नेता और समाज सुधारक के रूप में प्रसिद्ध हुए।
0: उनका नाम है नारायण गुरु। उन्होंने केरल के जाति प्रधान समाज में व्याप्त अन्यायों के विरुद्ध आवाज उठाई, एक सुधार आंदोलन आरंभ किया जिसका सूत्र था सभी मनुष्यों के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर।
1: संस्कृत और वेदांत के अध्ययन के बाद उन्होंने योग और ध्यान साधना की। 1904 में शिवगिरी में उन्होंने एक स्कूल खोला जहां जाति धर्म आदि के परे निशुल्क शिक्षण देना शुरू किया। जातिगत भेदभाव के खिलाफ उन्होंने समाज सुधार का बीड़ा उठाया।
0: अपनी केरल यात्रा में गांधी जी भी उनसे मिले थे और उनके ज्ञान और विचारों से प्रभावित हुए। नारायण गुरु ने केरल और तमिलनाडु में 45 मंदिरों की स्थापना की।
1: इन अनोखे मंदिरों में कोई प्रतिमा नहीं, इनमें सत्य, नैतिकता, करुणा, प्रेम शब्दों से उत्कीर्ण एक शिलापत्र, एक शाकाहारी शिव, एक दर्पण और एक इटालियन मूर्ति शामिल थी।
0: श्रोताओं, सर्वहारा वर्ग के उत्थान के लिए उन्होंने कृषि मजदूरों को संगठित किया, नारियल कारखानों के गरीब मजदूरों को उचित पारिश्रमिक की पैरवी की और समाज को संगठित किया।
1: नारायण गुरु ने अनेक ग्रंथों की रचना की जिनमें उन्होंने वेदांत की सरल व्याख्या की। नैयर नदी के किनारे उन्होंने अरु विप्पुरम में विशाल मंदिर बनवाया जिसमें बिना जातिगत भेदभाव के कोई भी पूजा कर सकता है। स्वर्ण समाज ने उसका विरोध किया तो नारायण गुरु ने कहा, ईश्वर ना तो पुजारी है ना किसान, वह सब में है। उन्होंने मनुष्य को स्वाभिमान से जीना सिखाया। बगैर जातिगत भेदभाव के यही उनका गुरु मंत्र था।
0: आज हजारों सूफी गीत, बाउल गीत और नारायण गुरु की रचनाएं उपलब्ध हैं, पर ये केवल पढ़ने की नहीं, देश के जन जन में बसी प्राणवायु है, उसका जीवन संगीत है। भारत इसी में जीता है, इसी में सांस लेता है।
1: अमन के सिपाहियों की ये दास्तां अब संपन्न हुई। इसे आपके लिए लिखा था ईला शंकर गोहा ने। मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम और लेखन
2: ईला शंकर गोहा।
0: श्रोताओं, इसी के साथ भारत विभूति कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अनुमति दीजिए मनीषा
1: और दानिश को।
0: नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भारत विभूति 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।
2: मैं हूँ हरि प्रसाद चौरसिया, आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पे, देश का चैनल देश के लिए।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। खुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है। खुलकर

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8,
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
1: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

0: देवे।
1: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज
0: ससुराल गेंदा फूल
1: और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

नगर के साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी लेकर हाजिर हूँ साथियों, मैं आपके बीच आपकी रेडियो मित्र पूर्वा खले। तो आज परिक्रमा में हम आपको कहाँ लेकर चल रहे हैं? चलिए आज सबसे पहले हम चल रहे हैं रविन्द्र भवन के हंस ध्वनि सभागार। श्रोता, रविन्द्र भवन के हंस ध्वनि सभागार में मंगलवार को यानी कल डॉक्टर हेडगेवार के त्याग और बलिदान पर आधारित महानाट्य युग प्रवर्तक डॉक्टर हेडगेवार का मंचन किया गया। सवा दो घंटे के नाटक में मंच पर 1922 में संघ का विचार आने से लेकर 1940 तक, जब डॉक्टर हेडगेवार की मृत्यु हुई, तब तक का सफर दिखाया गया है। 43 कलाकारों की नागपुर से आई नाट्य समूह के निर्माता पद्माकर पलामपत धानोरकर ने कई किताबों के अध्ययन के बाद संवादों और नाट्य रूप में इस नाटक को आकार दिया। लेखक हैं डॉक्टर अजय प्रधान। इस नाटक में 28 साल से लेकर 67 साल तक के कलाकारों ने मंच पर 27 किरदार निभाए। इस नाटक में डॉक्टर हेडगेवार को अदालत में अपना पहला केस खुद लड़ते हुए सुभाष चंद्र बोस से उनके मुलाकात, अपने विचारों के लिए सुदृढ़ता से लड़ाई और वीर सावरकर से मिलने के किस्से दिखाए गए। तो श्रोताओं, चलिए अब चलते हैं रविंद्र भवन से भारत भवन की ओर। श्रोताओं, भारत भवन में रूपाभ में वाटर कलर पेंटिंग एग्जीबिशन, जिसमें 8 कलाकारों की वाटर कलर से की गई पेंटिंग्स को एग्जीबिट किया गया है। वाटर कलर एक ऐसा माध्यम है जिसमें रंगों को निखारने के लिए सबसे ज्यादा धैर्य और संतुलन की आवश्यकता होती है। यही खूबसूरती मंगलवार को भारत भवन में रूपाभ वाटर कलर पेंटिंग एग्जीबिशन में देखने को मिली। एग्जीबिशन में 8 कलाकारों की पेंटिंग्स लगाई गई है। इन कलाकारों में से एक विजय गहरवार कहते हैं कि वाटर कलर पेंटिंग से वे विरासत को और देश के आर्किटेक्चर को उकेरने की कोशिश करते हैं। उनके एग्जीबिशन में भोपाल का ताजमहल, जगदीशपुर किला, गौहर महल जैसी इमारतों की पेंटिंग्स प्रदर्शित की गई हैं। वहीं आर्टिस्ट दिनेश दुबे ने बताया कि उनकी पेंटिंग्स प्रकृति से प्रेरित इमेजिनेशन की रचना है। इसमें सुबह और शाम बर्फ के पिघलने के दौरान बदलते रंगों और प्राकृतिक सौंदर्य को उकेरा गया है। तो श्रोताओं, यदि आप भी वाटर कलर पेंटिंग एग्जीबिशन में जाना चाहते हैं तो अवश्य पधारिए भारत भवन।

श्रोताओं, भोपाल रंगकर्म का शहर उस वक्त से है जब सन 1982 में यहाँ भारत भवन की शुरुआत हुई, रंगमंडल बना। रंगकर्म की इस धरती पर हाल ही में एक नए रंगमंडल ने अपनी जगह बनाई है। यह है देश का पहला संस्कृत रंगमंडल। हाल ही में गठित इस रंगमंडल में देश भर से संस्कृत नाटकों में काम करने के लिए 14 थिएटर आर्टिस्ट को ऑन बोर्ड किया गया है। इस रंगमंडल की संयोजक नाट्य शास्त्र की विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता गुंदेचा हैं। इस संस्कृत मंडल की पहली संस्कृत नाट्य प्रस्तुति की तैयारियां इन दिनों चल रही हैं। 21 दिनों की कार्यशाला में नाटक नागानंद को तैयार किया जा रहा है। ये नाटक राजा हर्षवर्धन ने लिखा था। ये नाटक आम लोगों की समझ में आ सके, इसके लिए इसमें संस्कृत के साथ हिंदी का भी इस्तेमाल किया गया है। पहली प्रस्तुति 27 जुलाई को दर्शकों के बीच पहुंच जाएगी। रंगमंडल की संयोजक डॉक्टर संगीता गुंदेचा ने कहा कि संस्कृत नाटकों का संसार बहुत बड़ा है, मगर आम जनता के सामने कुछ गिने चुने नाटक ही आ पाते हैं। संस्कृत नाटकों का प्रभाव बहुत बड़ा है, फोक थिएटर में इसकी झलक देखने को मिलती है। रामलीला, भांड बाथेर, माच सभी में संस्कृत नाटकों का तत्व देखने को मिलता है। ये रंगमंडल इन्हीं तत्वों को फिर से निकाल कर नए नाटकों की रचना करेगा। तो श्रोताओं, प्रतीक्षा रहेगी 27 जुलाई तक इस नाटक की, जिसका नाम है नागानंद। आइए श्रोताओं, अब हम आपको बता दें कि आज शाम 7 बजे आप चेतना थिएटर नीलबड़ में चर्चित उर्दू लेखक सादत हसन मंटो की चर्चित कहानी टोबा टेक्सिंग पर आधारित नाटक का मंचन देख सकते हैं। इस नाटक में भारत पाकिस्तान विभाजन की पीड़ा को दिखाया गया है। वहीं आप तो जानते ही हैं कि भारत भवन में वाटर कलर पेंटिंग एग्जीबिशन में 8 कलाकारों की जो पेंटिंग्स प्रदर्शित की गई हैं, उन्हें भी आज आप देख सकते हैं। वहीं श्रोताओं, 25 जुलाई को गंधर्व कल्चर एंड इवेंट्स द्वारा अक्षदा सोशल वेलफेयर सोसाइटी के सहयोग से मानसून मौसकी मोहब्बत थीम पर कराओ के म्यूजिकल नाइट का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम अध्ययन भवन में शाम 7 बजे से होगा।

तो श्रोताओं, ये थी आज की परिक्रमा। और अब चलते चलते मौसम की जानकारी। जैसा कि अब हम सारे भोपालवासी जानते हैं कि पिछले एक दिन से रूठा हुआ मानसून भोपाल में वापस आ चुका है। करीब 11 दिन के लंबे इंतजार के बाद भोपाल ने झमाझम बारिश का फिर से अनुभव किया। एक लंबे समय के बाद हुई अच्छी बारिश से उमस से बहुत राहत मिली और पूरे दिन मौसम सुहाना बना रहा। बारिश के कारण दिन का तापमान 4.3 डिग्री गिरकर 26.5 डिग्री पर पहुंच गया। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से एक साथ नमी मिलने से प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय हो गया है। दोनों ट्रफ लाइनों के असर से पर्याप्त नमी पहुंची, जिससे पूरे प्रदेश में ही बारिश की गतिविधियां तेज हो गईं। और अगले 24 घंटों में भी हल्की और मध्यम बारिश का भोपाल में अनुमान लगाया गया है। तो श्रोताओं, ये तो थी मौसम की जानकारी। तो इस रिमझिम पड़ती बरसात में गर्मा गर्म पकौड़ों और चाय के आनंद के साथ रखिए अपना भी ध्यान और अपनों का भी ध्यान। रहिए स्वस्थ और मस्त, और दीजिए अब अनुमति परिक्रमा से आपकी अपनी पूर्वा को। नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ। देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।

नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओ, आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ। आज का दिन है हमारे देश के लिए एक खास दिन, बेहद ही खास दिन। श्रोताओ, हर साल 22 जुलाई को यानी आज के दिन हम भारतवासियों के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक और बेहद ही गौरवशाली दिन है। आज ही के दिन सन 1947 में हमारी संविधान सभा ने तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अंगीकार किया था। श्रोताओं, इसीलिए आज का ये बेहद ही खास दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय ध्वज दिवस के रूप में। हमारा तिरंगा, हमारी पहचान, तीन रंगों वाला तिरंगा, केसरिया, हरा और सफेद। तो जानते हैं कि रंगों का संदेश हमें क्या कहता है। ध्वज का शीर्ष केसरिया रंग साहस और त्याग का प्रतीक है, तो वहीं मध्य का सफेद रंग सत्य और शांति का, और जो नीचे हरा रंग है वो हमारे विश्वास और हमारी समृद्धि को दर्शाता है। तो आज के राष्ट्रीय ध्वज की दिवस की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बीच में अशोक चक्र बना है नीले रंग से, उसमें है 24 तीलियां। नीले रंग का ये अशोक चक्र न्याय, धर्म और देश की 24 घंटे यानी निरंतर प्रगति का संदेश देता है।

श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज को निर्मित किए जाने की भी कुछ अपनी परंपराएं हैं और नियम हैं? हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमेशा ही 3 और 2 के लंबाई और चौड़ाई के अनुपात में बनाया जाता है।

हम आपको ये भी बता दें कि हर ध्वज को फहराने योग्य बनाने से पहले 20 अलग अलग तरह की गुणवत्ता जांच भी की जाती है। इसमें धागे के ताने बाने से लेकर रंगों के सटीक शेड जो शेड हैं उसका भी विशेष ध्यान रखा जाता है।

हमारे मध्य प्रदेश में ग्वालियर को यह गौरव प्राप्त है कि 15 अगस्त को जब पूरे राष्ट्र में ध्वज फहराए जाते हैं, राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाते हैं, तो उसमें ग्वालियर के नागरिकों के पसीने, समर्पण और खादी की महक शामिल होती है। जी हाँ, जीवाजीगंज ग्वालियर में स्थित मध्य भारत खादी संघ के कार्यालय में इन तिरंगों को तैयार किया जाता है। उत्तर भारत की ये एकमात्र BIS प्रमाणित संस्था है जिसे तिरंगे बनाने का प्रमाण प्राप्त है।

और श्रोताओं, जहां तक भोपाल की बात है तो आप सभी जानते होंगे कि हमारे वल्लभ भवन यानी मंत्रालय में भी एक विशाल काय तिरंगा फहराया जाता है, जो कि हमारे शहर की आन बान और शान का प्रतीक बना हुआ है। ₹235 फीट ऊंचे पोल पर स्थापित यह राष्ट्रीय ध्वज मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा तिरंगा है। रेडियो आजाद हिंद की ओर से एक बार फिर आप सभी को नेशनल फ्लैग डे यानी राष्ट्रीय ध्वज दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

श्रोताओं, आज हमारा पूरा देश 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस मना रहा है। इस अवसर पर हमारे भोपाल का भी इतिहास कोई कम रोचक नहीं है। श्रोताओं, भोपाल को राष्ट्रीय ध्वज के साथ बेहद ही गहरा और ऐतिहासिक संबंधित माना जाता है। देश की आजादी के समय में भोपाल रियासत का भारत में विलय नहीं हुआ था और 2.5 साल के कड़े संघर्ष और भोपाल विलीनीकरण आंदोलन के बाद 1 जुलाई सन 1949 को जब भोपाल का भारत में विलय हुआ, तब यहां पहली बार आधिकारिक रूप से आजाद भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। हमारे मान, हमारे गर्व और हमारे आत्मसम्मान का प्रतीक है हमारा अपना राष्ट्रीय ध्वज। यह पहचान है पूरे देश में, पूरे विश्व में हमारे देश की। हर भारतवासी को मन में देशभक्ति का जज्बा, अखंडता और स्वाभिमान का संदेश प्रज्वलित करता है हमारा अपना तिरंगा। आप सभी को आज के राष्ट्रीय ध्वज की बहुत बहुत शुभकामनाएं इस दिवस की।

तो श्रोताओ, आज के इस दिवस को हम एक विशेष दिवस मनाएं, क्यों ना हम अपने घर भी अपनी ध्वजा लहराएं। इस ध्वजा को लहराकर उसके सम्मान में खड़े हो जाएं और एक सलामी दें अपने नौनिहालों के साथ, ताकि वो भी तो जान पाए कि क्या महत्व है हमारे राष्ट्र का, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का हमारे जीवन में। और इसी के साथ दीजिए अनुमति, पूर्वा को नमस्कार, जय हिंद।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। पेश है भारतीय साहित्य के प्रख्यात कवियों की अनुपम और कालातीत रचनाओं की रचनात्मक प्रस्तुति पर आधारित हमारा कार्यक्रम काव्य गुंजन।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज का हमारा कार्यक्रम है काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। इस पुष्प विन्यास में आज हम प्रवेश कर रहे हैं उस सर्ग में जहां रण की गर्जना से पहले संकल्प की दीप्ति जन्म लेती है। श्रोताओं, रश्मिरथी के द्वितीय सर्ग की तपा भूमि से आगे बढ़ते हुए अब हम तृतीय सर्ग के द्वार पर हैं, जहां वनवास की अग्नि में तपे पांडव नव तेज के साथ लौटते हैं और विपत्ति से निखरा मानव साहस अपना स्वर पाता है। यहां शब्द शंखनाद नहीं, संकल्प की धधकती हुई शपथ है।
1: आइए श्रोताओं, अब प्रवेश करें रश्मि रथी के तृतीय सर्ग में, जहां यह रथ अपने ज्वलंत अश्वों सहित इतिहास की सीमाएं लांघता हुआ हमें नई विभा, नए संघर्ष और नए उत्कर्ष की ओर ले चलेगा। आइए सुनते हैं रश्मि रथी के तृतीय सर्ग का भाग एक।
0: हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से सहास, पावक में कनक सदृश तप कर वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं।
1: मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आपड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, शूलों का मूल नसाने को, बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के आगे पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, गुण बड़े एक से एक प्रखर, है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी के जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है, पीसा जाता जब इक्षु दंड, झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार, जब फूल पिरोहे जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं।
0: रश्मि रथी के तृतीय सर्ग का यह आरंभ हमें एक गहरे जीवन सत्य की ओर ले जाता है। अज्ञातवास की अवधि पूर्ण हुई और पांडव वन से लौटे, पर ये मात्र लौटना नहीं था, ये रूपांतरण था। वे जैसे गए थे वैसे नहीं लौटे, वे तपे हुए, निखरे हुए और भीतर से और अधिक दीप्त होकर लौटे।
1: यहाँ एक गूढ़ दार्शनिक संदेश निहित है, विपत्ति दंड नहीं अवसर है, वह हमारे व्यक्तित्व की छिपी शक्तियों को जागृत करने का माध्यम है। संघर्ष की अग्नि में ही मनुष्य अपने वास्तविक सामर्थ्य को पहचानता है और उसी प्रक्रिया में उसका व्यक्तित्व दिव्यता की ओर अग्रसर होता है। आइए श्रोताओं, अब हम सुनते हैं रश्मि रथी के तृतीय सर्ग का दूसरा भाग।
0: वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया, जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही, वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसून तो खिलते हैं, बाहों में शाल न मिलते हैं, कंकरियां जिनकी सेज सुघर, छाया देता केवल अंबर,
1: विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं, जो लाक्षा ग्रह में जलते हैं वे ही शूरमा निकलते हैं, बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम। सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। श्रोताओं, तृतीय सर्ग के भाग दो में मानो दिनकर जी ने कहीं अपने ही जीवन के संघर्षों से उत्पन्न भावों को पांडवों की कहानी में उकेर दिया हो। जीवन जीना मानो पत्थर पर फूल उगाने की कोई कला जैसा होता है। जो पुरुष कर्मशील है उसे विपत्तियों से भयभीत नहीं होना चाहिए, और जो धीर है वह सुखों में डूबकर अपने लक्ष्य को नहीं भूलता।
0: श्रोताओं, बढ़कर विपत्तियों पर छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा, इन पंक्तियों में केवल पांडवों के लिए संदेश नहीं है, बल्कि ये भारत की युवा शक्ति के लिए एक कालजयी पुकार है। मानो कवि सीधे युवा हृदय से संवाद कर रहा हो और कह रहा हो, हे नवयुवक, तू कठिनाइयों से भागने के लिए नहीं जन्मा, तू उन्हें परास्त करने के लिए जन्मा है। संघर्ष तेरी बाधा नहीं, तेरी निर्माण भूमि है। विपत्ति तेरा शत्रु नहीं, तेरा शिक्षक है। यदि तू आराम में डूबा रहेगा तो सो जाएगा, पर यदि तू संघर्ष को अपनाएगा तो जाग जाएगा। तेरी नसों में केवल रक्त नहीं, ऊर्जा स्वप्न और परिवर्तन की शक्ति बह रही है। समय उसी का साथ देता है जो साहस करता है, इसलिए उठ, अपने भीतर की अग्नि को पहचान, विपत्तियों पर छा जा और अपने पुरुषार्थ से अपना ही नहीं युग का भाग्य लिख दे।
1: श्रोताओं, हमें अब उस रथ की आवाज सुनाई दे रही है जिसके रथ से संसार के मनोरथ जुड़ते हैं, जिसके रथ के पहिए पहिए न होकर हम सभी के काल चक्र की ओर घूमते हुए हमारे जीवन और हमारी मृत्यु का विधान तय करते हैं। आइए उसी रथ के साथ तृतीय सर्ग के भाग तीन में प्रवेश करते हैं और सुनते हैं इस तृतीय सर्ग का भाग तीन। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। कृष्ण कहते हैं,
0: दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे।
1: दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले।
0: जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमरत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैं नाक मेरू पग मेरे हैं। दिपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग शर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शत कोट सूर्य शत कोट चंद्र, शत कोट सरित सर सिंधु मंद्र।
1: श्रोताओं, अभी आपने तृतीय सर्ग का ये भाग सुना। कथा महाभारत से ली गई है, पर दृष्टि दिनकर जी की है। यही तो विशेषता है रश्मि रथी की, कि ये केवल अतीत का आख्या नहीं, यह वर्तमान का मार्गदर्शन है। जीवन में शांति मार्ग सदैव श्रेष्ठ होता है। कृष्ण पहले दूत बनकर आते हैं, शस्त्र लेकर नहीं। ये हमें सिखाता है कि संवाद युद्ध से बड़ा होता है। अब समस्या ये है कि हमारा अहंकार उन्हें पहचान नहीं पाता। जब तक हम अपने भीतर के दुर्योधन को नहीं पहचानेंगे, तब तक विराट सत्य सामने होते हुए भी हम अंधे ही रहेंगे। दिनकर जी की कलम हमें झकझोरती है। यह काव्य केवल सुनने के लिए नहीं, आत्ममंथन के लिए है। आइए अब प्रवेश करें उस क्षण में जहां मनुष्य ईश्वर को बांधने चलता है और उत्तर में ईश्वर ब्रह्मांड का पट खोल देते हैं। सुनते हैं तृतीय सर्ग के भाग 4 का काव्य पाठ। इसे श्री कृष्ण की चेतावनी के नाम से भी सुनते और जानते हैं।
0: शतकोट विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोट विष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधने, भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, जिह्वा से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जभी मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, सुने को साध न सकता है, पर मुझे बांध कब सकता है, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर, फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रीगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा।
1: थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय।
0: श्रोताओं, दिनकर जी की अमर कृति रश्मिरथी हमें केवल महाभारत की कथा नहीं सुनाती, वो हमारे भीतर के कुरुक्षेत्र को उजागर करती है। अतः आइए इस प्रसंग से ये सीख लेकर आगे बढ़ें कि शांति का मार्ग ही श्रेष्ठ है, विनम्रता ही बल है, और आत्मचिंतन ही वो दीप है जो हमें विनाश से बचा सकता है।
1: आइए सुनते हैं तृतीय सर्ग के भाग 5 का काव्य पाठ। भगवान सभा को छोड़ चले, कर के रण गर्जन घोर चले, सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा, हरि बड़े प्रेम से कर धर कर ले चले उसे अपने रथ पर, रथ चला परस पर बात चली, शमदम की टेढ़ी घात चली, शीतल हो हरि ने कहा,
0: हाय हम शेष नहीं कोई उपाय, हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है, मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विष व्यंग कहां तक सहा नहीं, पर दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है, चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल, हे वी तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम, वह भी कौरव को भारी है, मति गई मूढ़ की मारी है। दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे, सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा। बाहर शोणित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार। निर्षण विषण बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। चिंता है मैं और क्या करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं। सब राह बंद मेरे जाने, हां एक बात यदि तू मानी तो शांति नहीं जल सकती है, समराग्नि अभी टल सकती है। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन। तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। तू संग ना उसका छोड़ेगा, वो क्यों रण से मुख मोड़ेगा। क्या अघटनीय घटना कराल, तू प्रथा कुक्षी का प्रथम लाल। बनसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है। शरचाप उठाए आठ प्रहार, पांडव से लड़ने हो तत्पर। मां का स्नेह पाया ना कभी, सामने सत्य आया ना कभी। किस्मत के फेरे में पड़कर पाप प्रेम बसा दुश्मन के घर। निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को। पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहा मान इतना मेरा। चल होकर संग अभी मेरे, हैं जहां पांच भ्राता तेरे। बिछुड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे। कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। पद त्राण भीम पहनाएगा, धर्माचिप चमर डुलाएगा। पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे। भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। हा हा क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा। सब लोग तुझे पहचानेंगे, हसली स्वरूप में जानेंगे। कोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली ना समाएगी। रण अनायास रुक जाएगा, कुरुराज स्वयं झुक जाएगा। संसार बड़े सुख में होगा, कोई ना कहीं दुख में होगा। सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। कुरुराज्य समर्पण करता हूं, साम्राज्य समर्पण करता हूं। यश मुकुटमान सिंहासन ले ले, बस बस एक भीख मुझको दे दे। कौरव को तजरण रोक सके, भूखा हर भावी शोक सके।
1: श्रोताओं अभी आपने कृष्ण की वाणी सुनी, वह वाणी जो केवल शब्द नहीं करुणा का समुद्र है, केवल तर्क नहीं समय की अंतिम पुकार है। वे कर्ण को समझा रहे हैं, पर वस्तुतः मनुष्य के भीतर बैठे उस द्वंद को संबोधित कर रहे हैं, जहां कर्तव्य और कृतज्ञता, जन्म और पालन, सत्य और संबंध आमने सामने खड़े हो जाते हैं। कृष्ण जैसे कोई दीपक लेकर अंधेरी सुरंग में उतर आए हों, वे कर्ण को उसका वास्तविक स्वरूप दिखाते हैं। आइए अब आगे सुनते हैं। सुन सुन कर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ, फिर कहा,
2: हे कृष्ण, बड़ी ये माया है जो कुछ

0: अंतर का रुधिर पिलाती है। आती फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वो नारी नहीं।
1: हे कृष्ण, आप चुप ही रहिए,
0: इस पर ना अधिक कुछ भी कहिए, सुनना ना चाहते तनिक श्रवण। जिस माँ ने मेरा किया जनन, वो नहीं नारी कुलपाली थी, सर्पणी परम विकराली थी, पत्थर समान उसका हीय था, सुत से समाज बढ़कर प्रिय था। गोदी में आग लगा करके, मेरा कुल वंश छिपा करके, दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। माँ का पै भी न पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने। वो तो यशस्वनी बनी रही, सबकी भौं मुझ पर तनी रही। कन्या वो रही अपरिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र से दीनहीन, राजाओं के सम्मुख मलीन। जब रोज अनादर पाता था, कह शूद्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था। सब देख रही थी दृश्य प्रथा, माँ की ममता पर हुई वृथा। छिपकर भी तो सुधी ले न सकी, छाया अंचल की दे न सकी। पांच तनय फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली। कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है? क्या पांच पुत्र हो जाने पर, सुत के धन धाम गवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर? नारियां सदैव हो जाती हैं, बिछड़ों को गले लगाती हैं। कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही। वो पाप अभी भी है मुझ में, वो शाप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वो डर जाएगा, कुंती को काट ना खाएगा। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय। ये अभिनंदन नूतन क्या है केशव, ये परिवर्तन क्या है। मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी। पर ऐसा भी था एक समय, जब ये समाज निष्ठुर निर्दय, किंचित ना स्नेह दर्शाता था, विष व्यंग सदा बरसाता था। उस समय सुअंक लगा करके, अंचल के तले छिपा करके, चुंबन से कौन मुझे भरकर, ताड़ना ताप लेती थी हर। राधा को छोड़ भजूं किसको, जननी है वही तजूं किसको। हे कृष्ण, जरा ये भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए, दोनों में मैं था पड़ा हुआ। किसका स्नेह पा बड़ा हुआ, किसने मुझको सम्मान दिया। निर्पता दे महिमा पान किया, अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख। भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए। कुंती ने केवल जन्म लिया, राधा ने मां का कर्म किया। राधा ने मां का कर्म किया।
2: श्रोताओं, कर्ण के शब्दों में अभी आपने केवल आक्रोश को नहीं सुना, एक ऐसे पुत्र का रिश्ता हुआ हृदय सुना है, जिसे जन्म तो मिला पर अपनापन नहीं मिला। यह संवाद तीर की तरह बाहर नहीं आता, भीतर धसता चला जाता है। कर्ण आज प्रश्न कर रहा है, पर यह प्रश्न केवल कुंती से नहीं है, यह उस समाज से भी है जो समय देखकर रिश्तों की चादर ओढ़ता और उतारता है। सच ही कहा गया है श्रोताओं, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। जिस बालक ने जन्म से ही तिरस्कार की धूप सही हो, वो अचानक मिले स्नेह पर सहज कैसे विश्वास कर ले।
3: और देखिए ना, कर्ण की वेदना केवल मातृत्व के अनुपस्थिति तक सीमित नहीं है, उसके भीतर वर्षों का अपमान अंगार बनकर धधक रहा है। वह पूछ रहा है, जब संसार मुझे सूत पुत्र कहकर ठुकराता था, तब किसने मेरा हाथ थामा था, कौन मेरे आंसुओं पर मरहम रखता था। यही कारण है कि उसका मन आज जन्म से अधिक पालन को सत्य मानता है। श्रोताओं, लोक में कहा जाता है कि जिसने दुख की धूप में साथ दिया वही अपना कहलाया। कर्ण के लिए राधा केवल पालक माता नहीं, उसकी आत्मा का आश्रय है।
2: दोस्तों, दिनकर जी यहां केवल कर्ण की कथा नहीं लिखते, वे मनुष्य के भीतर के उस खालीपन को शब्द देते हैं जहां अपनापन और उपेक्षा आमने सामने खड़े होते हैं। कृष्ण उसे उसके जन्म का सत्य दिखा रहे हैं, पर कर्ण जीवन का सत्य सामने रख रहा है। यही इस प्रसंग की महत्ता है। यहां धर्म केवल शास्त्रों में नहीं, संबंधों की कसौटी पर भी परखा जा रहा है।
3: श्रोताओं, अभी कर्ण का मन पूरी तरह खुला नहीं है। उसके हृदय में वर्षों से दबा हुआ लावा अभी और फूटना बाकी है। उसकी वाणी में अभी भी कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो समय के सीने पर चोट करने वाले हैं। अगले भाग में कर्ण अपने जीवन, अपनी मित्रता, अपने अपमान और अपने धर्म का ऐसा पक्ष रखेगा जहां करुणा और प्रतिज्ञा एक साथ दिखाई देंगी। अगले अंक में सुनेंगे सूर्यपुत्र कर्ण के अंतर मन का वह ज्वालामुखी जो अब धीरे धीरे पूर्ण रूप से फटने को है। तो श्रोताओं, अब समय है आपसे विदा लेने का, पर यह विदा केवल एक विराम है, इस काव्य यात्रा का अंत नहीं। जाते जाते हम आपको बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, मूल रचना राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की, रेडियो प्रस्तुति और लेखन दीपक नेमा का, वाचन स्वर मैं भगवती सक्सेना,
2: मैं संदीप शर्मा
4: और मैं दीपक नेमा।
3: इसी के साथ शब्दों और संवेदनाओं की ये यात्रा अब यहीं पर विराम लेती है। आपसे हम फिर मिलेंगे एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा, नमस्कार।
2: काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा।

अभी आप सुन रहे थे भारतीय साहित्य के प्रख्यात कवियों की अनुपम और कालातीत रचनाओं की रचनात्मक प्रस्तुति कार्यक्रम काव्य गुंजन में। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 FM, देश का चैनल देश के लिए। नमस्कार, मैं हूँ वर्षा सिंह।
3: नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक।
3: दोस्तों, ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो आपके लिए लेकर आता है उन महान व्यक्तित्वों की कहानियां जिन्होंने भारत का नाम विश्व में रोशन किया। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे महान गणितज्ञ की अद्भुत जीवन गाथा जिन्होंने गणित के सबसे कठिन क्षेत्रों में अपना परचम लहराया। आज हम बात करेंगे प्रोफेसर श्रीराम शंकर अभ्यंकर की, एक ऐसे व्यक्ति की जिनका नाम बीजगणितीय ज्यामिति के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है।
2: ये कहानी है समर्पण की, कठिन परिश्रम की और अपनी जड़ों से जुड़े रहने की। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने अमेरिका में रहते हुए भी अपनी भारतीयता को कभी नहीं भुलाया। तो आइए शुरू करते हैं ये यात्रा बचपन से लेकर उनके जीवन के अंतिम क्षणों तक, और साथ में जानेंगे उनके परिवार, उनके छात्रों और उनके सहयोगियों के अनुभव।
3: तारीख थी 22 जुलाई 1930, ग्रीष्मकाल की एक गर्म सुबह, मध्य प्रदेश का प्राचीन शहर उज्जैन, वही पवित्र नगरी जहां महाकवि कालिदास ने मेघदूत की रचना की थी। उज्जैन जो सदियों से भारतीय गणित, ज्योतिष और विज्ञान का केंद्र रहा है, यही एक साधारण परिवार में जन्म हुआ एक असाधारण प्रतिभा का, श्री राम शंकर अभ्यंकर। उनके पिता शंकर केशव अभ्यंकर एक सरकारी सेवक थे, माता एक पारंपरिक भारतीय गृहिणी थीं, जो संस्कार, शिक्षा और धर्म में गहरी आस्था रखती थीं।
2: घर का वातावरण बहुत शिक्षाप्रद था। शाम को संस्कृत के श्लोक, सुबह वेदों का पाठ और बच्चों के लिए शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता, यही वो माहौल था जिसमें श्रीराम का पालन पोषण हुआ। बचपन से ही श्रीराम में कुछ अलग था। जब गली के अन्य बच्चे गुल्ली डंडा खेलने में व्यस्त रहते, तब छोटा श्रीराम घर के एक कोने में बैठा संख्याओं के साथ खेल रहा होता। उनकी माता को याद था कि जब श्रीराम महज 5-6 साल के थे, तब वे रेत पर अंक बनाते और उन्हें जोड़ते घटाते रहते। ये कोई साधारण बच्चा नहीं था।
3: उज्जैन के स्थानीय विद्यालय में जब श्रीराम ने प्रवेश लिया तो शिक्षकों ने बहुत जल्दी उनकी असाधारण प्रतिभा को पहचान लिया। उनके गणित के शिक्षक पंडित रामनाथ शास्त्री अक्सर कहा करते थे, ये बालक साधारण नहीं है, इसकी बुद्धि तीक्ष्ण है और गणित में इसकी रुचि असामान्य है। एक बार की बात है, कक्षा में एक कठिन गणितीय समस्या दी गई, पूरी कक्षा परेशान थी, लेकिन श्री राम ने महज 10 मिनट में उसे हल कर दिया। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि उन्होंने उसे 3 अलग अलग तरीकों से हल किया था। शिक्षक भी चकित रह गए थे।
2: लेकिन श्रीराम घमंडी नहीं थे। उनके एक बचपन के मित्र मनोहर देसाई ने बाद में याद करते हुए कहा था, श्रीराम हमेशा से अलग था। जब हम क्रिकेट खेलते तो वो किताबों में खोया रहता, लेकिन वो कभी यह नहीं दिखाता कि वो हमसे ज्यादा होशियार है। बहुत विनम्र था। विनम्रता, ये गुण उनके साथ जीवन भर रहा। चाहे वे कितने भी बड़े गणितज्ञ बन गए, लेकिन उनमें घमंड का लेश भी नहीं था। श्रीराम की शिक्षा में संस्कृत का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। उनके पिता चाहते थे कि बच्चे अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहें।
3: हर शाम खाना खाने के बाद परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठते और संस्कृत के श्लोक पढ़ते। पाणिनी का व्याकरण, वेदों के मंत्र, ये सब श्री राम के जीवन का हिस्सा था और यहीं से शुरू हुआ उनका संस्कृत से गहरा प्रेम। उन्होंने पाणिनी के व्याकरण में एक गणितीय संरचना देखी। बाद में जब वे विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञ बन गए, तब भी वे कहते थे, संस्कृत गणित की भाषा है, इसकी संरचना पूरी तरह तार्किक और गणितीय है। यह दृष्टिकोण उन्हें अन्य गणितज्ञों से अलग बनाता था। वे प्राचीन भारतीय ज्ञान को आधुनिक गणित से जोड़ने में विश्वास रखते थे।
2: 1940 के दशक का भारत, देश स्वतंत्रता संग्राम से गुजर रहा था। गांधी जी का नाम हर घर में गूंज रहा था, लेकिन किशोर श्रीराम का मन किसी और दुनिया में था, गणित की दुनिया में। उनके कमरे में यूक्लिड, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त की किताबें सजी रहती। उनके पिता चाहते थे कि श्रीराम आईएएस बने, सरकारी सेवा में जाएं। ये उस समय का सबसे प्रतिष्ठित करियर था, लेकिन श्रीराम के सपने अलग थे। एक दिन उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं गणितज्ञ बनना चाहता हूँ, मुझे संख्याओं और समीकरणों से प्यार है, मैं इसी में अपना जीवन लगाना चाहता हूँ। पिता पहले तो चिंतित हुए, गणित में क्या भविष्य है, लेकिन जब उन्होंने अपने बेटे की आंखों में जुनून देखा तो वे समझ गए कि ये साधारण इच्छा नहीं है।
3: और इस तरह एक पिता ने अपने बेटे के सपने को पंख दिए। ये निर्णय श्री राम के जीवन को बदल देने वाला था। 1947 वो साल जब भारत आजाद हुआ, और वही साल था जब 17 वर्षीय श्री राम ने उज्जैन छोड़ा और बॉम्बे यानी कि मुंबई की ओर रुख किया। बॉम्बे सपनों का शहर, अवसरों का शहर। बॉम्बे विश्वविद्यालय में उनका दाखिला हो गया था। पहली बार घर से दूर एक नए शहर में, नए लोगों के बीच, लेकिन श्री राम डरे नहीं। उनके साथ था उनका जुनून, गणित का जुनून। बॉम्बे विश्वविद्यालय में उन्हें मिले कुछ उत्कृष्ट प्राध्यापक, प्रोफेसर वी नरलिकर, प्रोफेसर डी कोसंबी। ये वो नाम थे जिन्होंने श्री राम की प्रतिभा को और निखारा।
2: कॉलेज के दिनों में श्री राम का एक ही रूटीन था, सुबह कक्षाएं, दोपहर को पुस्तकालय, शाम को समस्याएं हल करना और रात को अध्ययन। उनके सहपाठी अक्सर मजाक में कहते थे, श्री राम तुम मनुष्य हो या मशीन, कभी तो आराम करो। और उनका जवाब था, गणित करना ही मेरा आराम है, जब मैं समीकरण हल करता हूँ तो मुझे शांति मिलती है। और ये सच था, गणित उनके लिए बोझ नहीं बल्कि आनंद था। यही जुनून उन्हें महानता की ओर ले जा रहा था। 1951 श्री राम ने बॉम्बे विश्वविद्यालय से गणित में बीएससी की डिग्री प्राप्त की, और वो भी प्रथम श्रेणी में सर्वोच्च अंकों के साथ। उनके प्राध्यापक उनकी प्रतिभा से बहुत प्रभावित थे। प्रोफेसर नीलिकर ने उन्हें बुलाया और कहा, श्री राम तुम्हारी प्रतिभा भारत में सीमित नहीं रह सकती, तुम्हें विदेश जाना चाहिए, वहां के महान गणितज्ञों से सीखना चाहिए।
3: विदेश, ये शब्द सुनते ही श्री राम के मन में हजारों सवाल उठे। क्या वे भारत छोड़ सकते हैं? क्या वे अपने परिवार से दूर रह सकते हैं? लेकिन फिर उन्होंने सोचा, ये भागना नहीं है, ये सीखने जाना है, ताकि एक दिन वे भारत लौट सकें और यहां के युवाओं को प्रेरित कर सकें। और इस तरह शुरू हुई अमेरिका जाने की तैयारी। परीक्षाएं, आवेदन पत्र, छात्रवृत्ति के लिए प्रयास, सब कुछ एक साथ। और फिर एक दिन वो पत्र आया, हार्वर्ड विश्वविद्यालय से स्वीकृति पत्र, दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक। श्री राम और उनके परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन साथ ही एक दुख भी था, अलग होने का दुख। प्रस्थान का दिन आ गया। 1951 की एक सर्द सुबह घर में सन्नाटा था, लेकिन हर किसी की आंखों में आंसू थे। मां ने श्री राम के माथे पर तिलक लगाया, उनके सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया, बेटा जा, जाकर नाम कमा, लेकिन कभी अपनी जड़ों को मत भूलना, तू भारत का बेटा है, ये हमेशा याद रखना। श्री राम ने मां के पैर छुए, पिता ने उन्हें गले लगाया, और फिर वे निकल पड़े एक नई दुनिया की ओर, नए सपनों की ओर। जहाज में बैठकर जब उन्होंने भारत की तरफ आखिरी बार देखा तो उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में दृढ़ संकल्प था, मैं वापस लौटूंगा, लेकिन एक महान गणितज्ञ बनकर। मैं अपने देश का नाम रोशन करूंगा। बोस्टन हवाई अड्डा, ठंडी हवा, अजनबी चेहरे, अलग भाषा, श्री राम के लिए सब कुछ नया था। हार्वर्ड विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, विशाल इमारतें, विशाल पुस्तकालय और हर तरफ विद्वानों का जमघट। पहले दिन जब श्री राम गणित विभाग पहुंचे तो उनका परिचय हुआ प्रोफेसर ऑस्कर जारेंस्की से, बीजगणितीय ज्यामिति के पितामह। प्रोफेसर जारेंस्की ने श्री राम को देखा, उनकी आंखों में झांका और मुस्कुराते हुए कहा, सो यू आर फ्रॉम इंडिया, द लैंड ऑफ रामानुजन, लेट सी व्हाट यू कैन डू।
2: ये चुनौती थी और श्री राम ने इसे स्वीकार किया। उन्होंने ठान लिया कि वे रामानुजन की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। हार्वर्ड में जीवन आसान नहीं था, अलग देश, अलग संस्कृति, कड़ाके की ठंड, सब कुछ चुनौतीपूर्ण था। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी गणित का वो स्तर जो यहाँ अपेक्षित था। हार्वर्ड में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ छात्र आते थे, लेकिन श्रीराम ने हार नहीं मानी। दिन रात मेहनत, पुस्तकालय में घंटों अध्ययन और प्रोफेसर जोरिस्की के कठिन प्रश्नों का सामना। प्रोफेसर जोरिस्की और श्रीराम के बीच एक विशेष रिश्ता विकसित हुआ। ये सिर्फ शिक्षक छात्र का रिश्ता नहीं था, बल्कि गुरु शिष्य की प्राचीन भारतीय परंपरा थी। जारिस्की ने श्री राम की प्रतिभा को पहचाना। उन्होंने देखा कि ये युवा भारतीय कुछ अलग है, उनकी सोच मौलिक है, उनका दृष्टिकोण नवीन है। एक दिन जारिस्की ने श्री राम को अपने कार्यालय में बुलाया और कहा, श्री राम, आई हैव अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम फॉर यू। इट्स अबाउट रेजोल्यूशन ऑफ सिंगुलरिटीज। Many have tried, many have failed. Do you want to try? श्री राम ने कहा, Professor, I am ready. Even if I fail, I will learn something.
3: और इस तरह शुरू हुआ उनका शोध कार्य, एक ऐसी समस्या पर जो गणित जगत को दशकों से परेशान कर रही थी। अगले 3 साल श्री राम ने दिन रात इसी समस्या पर काम किया। कई बार असफल हुए, कई बार निराश हुए, लेकिन हर बार जारेंस्की उन्हें प्रोत्साहित करते, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, ग्रेट डिस्कवरीज कम आफ्टर ग्रेट फेलियर्स। ये सबक श्री राम ने जीवन भर याद रखा और बाद में अपने छात्रों को भी यही सिखाया। 1955 की वसंत ऋतु, श्री राम ने अपना शोध प्रबंध पूरा किया, लोकल यूनिफॉर्माइजेशन ऑन अल्जेब्रिक सरफेसेस ओवर मॉड्यूलर फील्ड्स। ये कोई साधारण शोध नहीं था, ये बीजगणितीय ज्यामिति में एक महत्वपूर्ण योगदान था। जब उन्होंने अपने शोध प्रबंध की रक्षा की तो कमरे में उपस्थित सभी प्रोफेसर आश्चर्यचकित रह गए। परीक्षक समिति के एक सदस्य ने कहा, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट डिसर्टेशन आई हैव सीन इन माई 30 years एट हार्वर्ड। यंग मैन, यू हैव अ ग्रेट फ्यूचर अहेड।
2: प्रोफेसर जारिस्की की आंखों में गर्व के आंसू थे। उनका शिष्य सफल हो गया था और इस तरह मात्र 25 वर्ष की आयु में श्री राम शंकर अभ्यंकर ने हार्वर्ड से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। वो सिर्फ एक डिग्री नहीं थी, ये एक भारतीय युवा की विश्व मंच पर पहली विजय थी। और अब शुरू होती है एक प्रेम कहानी। 1955 की गर्मियों में एक शैक्षणिक सम्मेलन में श्रीराम की मुलाकात हुई यवोन से। यवोन एक बुद्धिमान और शिक्षित युवती थी। गणित में उनकी रुचि नहीं थी, लेकिन विज्ञान और साहित्य में गहरी रुचि थी। पहली मुलाकात में ही दोनों को एहसास हो गया कि ये कुछ खास है। श्रीराम को यवोन की बुद्धिमत्ता आकर्षित करती थी और यवोन को श्रीराम का समर्पण और विनम्रता। बाद में यवोन ने एक साक्षात्कार में बताया था, When I was first met Shri Ram, I was struck by his intensity. He talked about mathematics with such passion as if it was poetry. I had never met anyone like him. कुछ महीनों की मुलाकात के बाद श्री राम ने यवोन से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन उन्होंने ईमानदारी से कहा, यवोन, I must be honest with you. Mathematics is my
4: Everyone love their work as much as you do. It's beautiful.
3: 1956 में श्री राम और यवोन ने विवाह कर लिया। एक साधारण लेकिन सुंदर समारोह, कुछ मित्र, कुछ सहकर्मी और ढेर सारा प्यार। भारत से श्री राम के माता पिता नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने आशीर्वाद भेजा। माँ ने एक पत्र लिखा था, बेटा बहुत खुशी हुई तेरे विवाह का समाचार सुनकर। यवोन को हमारा आशीर्वाद, उसे बता देना कि भारतीय परिवार में बहू का बहुत सम्मान होता है। यवोन ने भारतीय संस्कृति को खुले दिल से अपनाया। उन्होंने हिंदी सीखने की कोशिश की, भारतीय खाना बनाना सीखा। विवाह के बाद जीवन एक नई दिशा में मुड़ गया। श्रीराम अब कॉर्नेल विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे थे। घर की जिम्मेदारियां, पढ़ाने की जिम्मेदारियां और शोध का काम, सब कुछ एक साथ। लेकिन यवोन ने पूरा साथ दिया। यवोन ने बाद में एक साक्षात्कार में कहा था, मैंने बहुत जल्द समझ लिया था कि श्री राम के काम में बाधा बनना संभव नहीं है, इसलिए मैंने उनका सहयोगी बनने का निर्णय लिया। मैं उनके पेपर टाइप करती थी, उनके छात्रों के लिए घर पर चाय कॉफी की व्यवस्था करती थी।
2: 1958 में उनकी पहली संतान हुई, बेटी किरण। श्री राम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पहली बार जब उन्होंने अपनी बेटी को गोद में लिया तो उनकी आंखों में आंसू थे। उस दिन मैंने श्री राम को पहली बार इतना भावुक देखा। वे किरण को गोद में लेकर घंटों बैठे रहे। उन्होंने कहा, अब मुझे और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। फिर 1960 में बेटे केतन का जन्म हुआ और 1963 में छोटे बेटे अरुण का। घर अब बच्चों की किलकारियों से गूंजने लगा था। लेकिन श्रीराम का शेड्यूल नहीं बदला। सुबह जल्दी उठना, फिर विश्वविद्यालय जाना, शाम को वापस आकर बच्चे के साथ थोड़ा समय और फिर रात को शोध का काम। किरण अभ्यंकर, जो अब एक सफल पेशेवर हैं, याद करती हैं, पिताजी के साथ बड़े होना एक अनोखा अनुभव था। हमारा घर एक साधारण घर नहीं था। हमारे कमरे में किताबें थीं, दीवारों पर गणितीय सूत्र लिखे होते थे। पिताजी का अध्ययन कक्ष हमारे लिए एक रहस्यमय जगह थी।
3: 1963 श्री राम के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़। विस्कॉन्सिन मेडिसन विश्वविद्यालय से उन्हें प्रोफेसर बनने का प्रस्ताव मिला। यह कोई साधारण प्रस्ताव नहीं था। विस्कॉन्सिन का गणित विभाग अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ विभागों में से एक था। परिवार के साथ मेडिसन शहर पहुंचे। सुंदर झीलों वाला शहर, शांत वातावरण और एक जीवंत विश्वविद्यालय। यहीं श्री राम ने अपना सबसे महत्वपूर्ण काम किया। यहीं वे एक महान शिक्षक बने और यहीं उन्होंने जीवन के अंतिम दिन बिताए। विस्कॉन्सिन में उनके पहले दिन विभाग के अध्यक्ष ने कहा था, प्रोफेसर अभ्यंकर, वी आर ऑनर्ड टू हैव यू हियर। योर वर्क ऑन रेजोल्यूशन ऑफ सिंगुलरिटीज इज ऑलरेडी लीजेंडरी। वी लुक फॉरवर्ड टू योर कॉन्ट्रीब्यूशन। और श्री राम ने निराश नहीं किया। अगले 50 वर्षों में उन्होंने विस्कॉन्सिन को बीजगणितीय ज्यामिति का एक वैश्विक केंद्र बना दिया।
2: 1965 में श्री राम के पास उनका पहला PhD छात्र आया, बाल्टिक करासलर, एक युवा प्रतिभाशाली लेकिन डरा हुआ छात्र। बाल्टिक याद करते हैं वो पहली मुलाकात। मैं बहुत घबराया हुआ था। प्रोफेसर अभ्यंकर की प्रतिष्ठा पहले ही बहुत थी। जब मैं उनके कार्यालय में गया तो वे एक बोर्ड पर समीकरण लिख रहे थे। उन्होंने मुड़कर देखा और पूछा, क्या तुम वाकई में गणितज्ञ बनना चाहते हो या सिर्फ डिग्री चाहिए? मैं सकते में आ गया। मैंने कहा कि मैं वाकई गणितज्ञ बनना चाहता हूँ। तो फिर तैयार रहो, ये यात्रा आसान नहीं होगी। तुम्हें कई बार असफल होना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम डटे रहे तो तुम सफल होगे। ये था प्रोफेसर अभ्यंकर का तरीका। बिल्कुल ईमानदार, बिल्कुल सीधा, कोई झूठी उम्मीदें नहीं, सिर्फ कड़ी मेहनत का वादा।
3: एक अन्य छात्रा ने कहा, पहले दिन में सोच रही थी कि मैंने गलत कक्षा में दाखिला ले लिया है। प्रोफेसर अभ्यंकर ने जो समीकरण बोर्ड पर लिखे वे मेरी समझ से परे थे, लेकिन धीरे धीरे समझ आने लगा। प्रोफेसर अभ्यंकर कभी नहीं बैठते थे। 3 घंटे की कक्षा में वे लगातार खड़े रहते, चलते फिरते, बोलते और लिखते रहते। उनके हाथ में हमेशा चौक होता और जूते हमेशा चौक की धूल से सफेद। कभी कभी उनके कपड़ों पर चौक के निशान होते, लेकिन जो छात्र बने रहते उन्हें एक अनमोल खजाना मिलता, गणित की गहरी समझ। प्रोफेसर अभ्यंकर की कक्षा में सवाल पूछना एक कला थी। डॉक्टर विलियम हाइंजर, जो अब स्वयं प्रोफेसर हैं, बताते हैं, एक बार मैंने एक बहुत बुनियादी सवाल पूछ लिया। प्रोफेसर अभ्यंकर रुके, मुड़े और मेरी ओर देखा, फिर बोले, तुमने पिछली रात पढ़ा नहीं, ये तो मैंने कल ही समझाया था, ध्यान कहां था तुम्हारा। मैं शर्मिंदा हो गया, लेकिन फिर उन्होंने पूरी कक्षा को संबोधित करते हुए कहा, देखो गणित में हर चीज महत्वपूर्ण है, अगर तुम बुनियादी बातें नहीं समझोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। कल रात की पढ़ाई दोहराओ, सब दोहराओ।
4: लेकिन जब कोई गहरा और विचारशील सवाल पूछता तो प्रोफेसर अभ्यंकर की आंखें चमक उठती। एक छात्रा डॉक्टर जेसिका मिलर बताती हैं, एक बार मैंने सवाल पूछा जो थोड़ा अलग दृष्टिकोण से भरा था। प्रोफेसर अभ्यंकर तुरंत रुके और बोले, अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल, आओ इस पर चर्चा करते हैं। और फिर अगले 45 मिनट तक हमने उसी सवाल पर चर्चा की। पूरी कक्षा ने साथ में सीखा। उस दिन मुझे समझ आया कि अच्छे सवाल पूछना भी एक कला है। प्रोफेसर अभ्यंकर अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़े रखना चाहते थे। अरुण अभ्यंकर सबसे छोटे बेटे, बताते हैं हर रविवार की सुबह पिताजी हमें संस्कृत के श्लोक सिखाते थे। पहले तो हम बोर हो जाते थे, लेकिन धीरे धीरे समझ आने लगा। अरुण याद करते हैं कि एक बार उन्होंने पूछा, पिताजी हम अमेरिका में रहते हैं, संस्कृत क्यों सीखें?
3: प्रोफेसर अभ्यंकर ने प्यार से समझाया, बेटे तुम भले ही अमेरिका में रहते हो, लेकिन तुम्हारी जड़ें भारत में हैं। संस्कृत सिर्फ एक भाषा नहीं है, ये एक विचारधारा है, एक दर्शन है, और सबसे महत्वपूर्ण ये गणित की भाषा है। फिर उन्होंने मुझे दिखाया कि कैसे पाणिनि के व्याकरण में गणितीय पैटर्न है। उस दिन से संस्कृत मेरे लिए रोचक हो गई। दिवाली और होली पर अभ्यंकर परिवार का घर रोशनी और रंगों से भर जाता था। यवोन ने भारतीय व्यंजन बनाना सीख लिया था। समोसे, जलेबी, पूड़ी, सब्जी, सब कुछ घर में बनता था। दिवाली पर पिताजी सबसे ज्यादा उत्साहित होते थे। वे कहते थे कि ये अंधकार पर प्रकाश की जीत है, ठीक वैसे ही जैसे गणित में ज्ञान अज्ञानता पर विजय पाता है। सन 1998 में भारत सरकार ने प्रोफेसर अभ्यंकर को पद्मश्री से सम्मानित करने की घोषणा की। ये खबर सुनकर प्रोफेसर अभ्यंकर बहुत भावुक हो गए। केतन बताते हैं, जब पिताजी को ये खबर मिली तो वे अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद मम्मी ने मुझे बुलाया, पिताजी रो रहे थे। मैंने पूछा, पिताजी क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? उन्होंने कहा, बेटे ये सम्मान मेरी मातृभूमि से है, फील्ड मेडल से भी बड़ा है मेरे लिए, भारत ने मुझे याद रखा। सम्मान समारोह के लिए पूरा परिवार भारत गया। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में समारोह था। जब राष्ट्रपति ने उन्हें पद्मश्री प्रदान किया तो प्रोफेसर अभ्यंकर ने अपने संक्षिप्त भाषण में कहा, मैं आज यहां एक गणितज्ञ के रूप में नहीं बल्कि भारत के एक बेटे के रूप में खड़ा हूं। ये सम्मान सिर्फ मेरा नहीं बल्कि उन सभी भारतीय विद्वानों का है जो विश्व मंच पर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।
4: सम्मान समारोह के बाद प्रोफेसर अभ्यंकर परिवार के साथ उज्जैन गए। अपनी जन्मभूमि किरण याद करती हैं, जब हम उज्जैन पहुंचे तो पिताजी का चेहरा देखने लायक था, वे बच्चे की तरह उत्साहित थे। प्रोफेसर अभ्यंकर अपने बचपन के घर गए, वो घर जहां उन्होंने गणित के सपने देखे थे। यहीं इसी आंगन में मैं बैठकर गणित की किताबें पढ़ता था, यहीं मेरे सपने शुरू हुए थे। उन्होंने अपने पुराने स्कूल का दौरा किया। वहां के छात्रों से मिले। एक युवा छात्र ने पूछा, सर आप इतने बड़े गणितज्ञ कैसे बने? उन्होंने जवाब दिया, बेटे मैं कोई बड़ा गणितज्ञ नहीं हूँ, मैं बस एक व्यक्ति हूँ जो गणित से प्यार करता है। तुम भी अपने पैशन को फॉलो करो, मेहनत करो, सफलता मिलेगी।
3: 2012 शरद ऋतु का समय, प्रोफेसर अभ्यंकर का स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगा। परिवार चिंतित था। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें आराम की जरूरत है, लेकिन प्रोफेसर अभ्यंकर काम करना नहीं छोड़ना चाहते थे। केतन बताते हैं, अक्टूबर 2012 में पिताजी की तबीयत खराब हो गई। हमने उन्हें अस्पताल ले जाना चाहा, लेकिन वे मना कर रहे थे। नहीं बेटे, मुझे अभी एक प्रमाण पूरा करना है, अस्पताल बाद में चलेंगे। अंततः परिवार के आग्रह पर वे अस्पताल गए, लेकिन वहां भी उनके बिस्तर के पास गणित की किताबें और कागज रखे रहते थे। एक नर्स ने बाद में बताया, मैंने ऐसा मरीज कभी नहीं देखा। वे अस्पताल के बिस्तर पर भी समीकरण लिख रहे थे। उनका समर्पण अद्भुत था।
4: 6 नवंबर 2012 प्रोफेसर अभ्यंकर के जीवन का आखिरी दिन। परिवार उनके पास था। यवोन, केतन, किरण, अरुण सबके सब भावुक होकर याद करते हैं। पिताजी बहुत कमजोर हो गए थे, लेकिन उनका मन अभी भी चल रहा था। वे धीमी आवाज में कुछ कह रहे थे। यवोन ने कान पास किया। वे कह रहे थे, वह प्रमाण पेज 47, वहां एक गलती है, उसे ठीक करना होगा। जीवन के अंतिम क्षण तक प्रोफेसर अभ्यंकर गणित के बारे में सोच रहे थे। फिर उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, केतन बेटे, गणित को आगे बढ़ाना है। और फिर शांति। उस महान आत्मा ने अपनी अंतिम यात्रा शुरू कर दी। 6 नवंबर 2012 शाम 5:30 बजे प्रोफेसर श्री राम शंकर अभ्यंकर ने इस दुनिया को अलविदा कहा।
3: विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय ने तुरंत एक बयान जारी किया। गणित विभाग और पूरा विश्वविद्यालय प्रोफेसर श्री राम शंकर अभ्यंकर के निधन से गहरे शोक में है। हमने एक महान गणितज्ञ, एक समर्पित शिक्षक और एक अद्भुत इंसान खो दिया है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय, MIT, प्रिंसटन, सभी प्रमुख संस्थानों ने शोक संदेश भेजे। भारत में भी गहरा शोक था। TIFR मुंबई ने कहा, प्रोफेसर अभ्यंकर ने विश्व को दिखाया कि भारतीय गणित की महान परंपरा अभी भी जीवित है। रामानुजन के बाद वे सबसे प्रभावशाली भारतीय गणितज्ञ थे। भारत में भी प्रोफेसर अभ्यंकर को याद रखा जाता है। TIFR मुंबई में एक वार्षिक व्याख्यान उनके नाम पर है। IIT और IISc में छात्रवृत्तियां उनके नाम पर स्थापित की गई हैं। उज्जैन में उनके जन्म स्थान के पास एक स्मारक बनाने की योजना है। स्थानीय विद्यालय में अभ्यंकर गणित क्लब भी है।
4: प्रोफेसर अभ्यंकर के जीवन से हमें अनेक पाठ मिलते हैं, आइए उन्हें याद करें। पहला पाठ, समर्पण। उन्होंने अपना पूरा जीवन गणित को समर्पित कर दिया। ये समर्पण ही उन्हें महान बनाया। दूसरा पाठ, अपनी जड़ों से जुड़े रहना। अमेरिका में 60 साल रहने के बाद भी वे भारतीय बने रहे। उन्होंने अपनी संस्कृति को कभी नहीं भुलाया। तीसरा पाठ, कठिन परिश्रम और कोई शॉर्टकट नहीं, कोई आसान रास्ता नहीं, बस मेहनत, मेहनत और मेहनत। चौथा पाठ, ज्ञान को बांटना। उन्होंने अपना ज्ञान अपने छात्रों के साथ उदारता से साझा किया। यही असली शिक्षक का लक्षण है। पांचवा पाठ, विनम्रता। इतने बड़े गणितज्ञ होने के बावजूद वे सदा विनम्र रहे। घमंड ने उन्हें कभी छुआ तक नहीं। छठा पाठ, परिवार का महत्व। काम के प्रति समर्पण होने के साथ साथ उन्होंने अपने परिवार की परवाह की।
3: उन्होंने एक बार कहा था, गणित में जल्दबाजी नहीं होती, सिर्फ सही या गलत होता है। समय लो, लेकिन सही करो। एक अन्य अवसर पर उन्होंने कहा, यदि समस्या आसान लगे तो तुमने इसे ठीक से समझा नहीं। असली गणित हमेशा चैलेंजिंग होता है। और युवा भारतीय गणितज्ञों से उन्होंने कहा था, तुम एक महान परंपरा से आते हो, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, रामानुजन, ये तुम्हारी विरासत है, इसे आगे बढ़ाओ, इसे गौरवान्वित करो। और उनका सबसे प्रसिद्ध कथन संस्कृत गणित की भाषा है, जो इसे समझता है वो गणित की आत्मा को समझता है।
4: श्रोताओ, ये थी कहानी श्री राम शंकर अभ्यंकर की, एक साधारण परिवार से आए एक असाधारण प्रतिभा की, एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने उज्जैन की गलियों से शुरुआत की और हार्वर्ड विस्कॉन्सिन के मंचों पर भारत का नाम रोशन किया, एक ऐसे भारतीय की जिन्होंने अपनी जड़ों को कभी नहीं भुलाया। आज 2025 में जब हम उन्हें याद करते हैं तो हमें ये समझ आता है कि महानता का मतलब सिर्फ उपलब्धियां नहीं है, महानता का मतलब है अपने पैशन को फॉलो करना, कठिन परिश्रम करना और अपने ज्ञान को दूसरों के साथ बांटना। तो आइए उन्हें श्रद्धांजलि दें, उनके जीवन से सीखें और उनकी विरासत को आगे बढ़ाएं, क्योंकि यही होगी उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि, उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना।

0: तो साथियों, आज कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक में हमने बातचीत की श्री राम शंकर अभ्यंकर के जीवन के बारे में। तो अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का, तो दीजिए विदा अपनी मित्र वर्षा को
1: और दीपक नीमा को। दोस्तों, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखन अखिलेश कुमार वर्मा।
0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 FM, देश का चैनल देश के लिए।
2: अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक 90.8 MHz पर। आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओ, आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। श्रोताओ, आज है 22 जुलाई, यानी आज है राष्ट्रीय ध्वज दिवस। इस अवसर पर प्रस्तुत है हमारा आज का विशेष कार्यक्रम, राष्ट्रीय तिरंगे का सफर।
2: श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। मैं हूं आपका रेडियो मित्र प्रमोद शर्मा, और आज हम जो एक खास कार्यक्रम लेकर आए हैं वो है हमारे तिरंगे का सफर।
3: भारत का।

श्रोताओं, हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक आजाद देश का एक अपना ध्वज होता है जो उसकी आजादी का प्रतीक भी होता है। और ऐसा माना जाता है भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान चौराहे पर फहराया गया था, जिसमें लाल, पीले और हरे रंग की 3 पट्टियां थी। फिर 1907 में पेरिस में मदाम कामा और उनके दल द्वारा इस्तेमाल किया गया। इसमें भी लाल, पीले और हरे रंग की पट्टियां तो थी, फर्क केवल इतना था कि सबसे ऊपर की पट्टी में कमल और 7 सितारे थे जो सप्तऋषि के प्रतीक थे। और श्रोताओं, इसके बाद 1917 में डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल आंदोलन में जो ध्वज इस्तेमाल किया गया था, उसमें एक के बाद लाल रंग के 5 और हरे रंग के 4 खड़ी पट्टियां और थी। इन पर भी सप्तऋषि के प्रतीक 7 सितारे थे। बाईं ओर सबसे ऊपर कोने में यूनियन जैक का निशान बना हुआ था। एक कोने में सफेद रंग का अर्धचंद्र और सितारा था। श्रोताओं, फिर 1921 में तत्कालीन बेजवाड़ा, जो आजकल विजयवाड़ा के नाम से जाना जाता है, वहां एक युवक गांधी जी के पास एक झंडा बना करके लेके आया। उसमें लाल और हरा रंग तो था, जिसे उन्होंने हिंदू और मुसलमानों का प्रतीक बताया था। गांधी जी के सुझाव पर देश के शेष धर्मों के प्रतीक के रूप में भी सफेद रंग की पट्टी और उसमें चरखा डाल दिया गया, जिसे देश की प्रगति के रूप में शामिल किया गया था, और पुनः इसमें परिवर्तन कर वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का यह स्वरूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था।

श्रोताओं, हम आपको बता दें कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज 3 बराबर भागों में बटा हुआ है, जिसमें सबसे ऊपर की पट्टी केसरिया रंग की, जो देश की ताकत और शौर्य का परिचायक होती है। बीच की सफेद पट्टी हमारे शांति, सद्भाव और सत्य के साथ नीले रंग का धर्म चक्र भी लिए हुए है, और यह चक्र सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी में सारनाथ में बनवाए गए चक्र की प्रतिकृति है, और इसके अंदर 24 रेखाएं होती हैं। चक्र दर्शाता है कि गति में भी जीवन है, ठहराव में मृत्यु है। राष्ट्रीय ध्वज में सबसे नीचे हरा रंग है, जो राष्ट्र की शस्य श्यामला धरती और राष्ट्र की खुशहाली का प्रतीक है। श्रोताओं, एक बात और है, और वो ये है कि तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात भारतीय संविधान में वर्णित विधान के अनुसार रहता है। लंबाई चौड़ाई में राष्ट्र ध्वज 9 प्रकार के होते हैं, जिन्हें संविधान ने स्वीकृत किया था, जो देश में फहराए जाते हैं। इनमें सबसे बड़ा राष्ट्र ध्वज 14x21 फीट का है। तो श्रोताओं, ये तो कहानी रही हमारे तिरंगे की, मगर तिरंगा फहराते समय हमें बहुत सारी सावधानियां भी रखनी पड़ती हैं। चलिए उसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताते हैं कि हमें अपने तिरंगे को फहराते समय किन किन सावधानियों पर ध्यान देना चाहिए। राष्ट्रध्वज तिरंगे का यह स्वरूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, ये तो हम सभी जानते हैं, और हमारा राष्ट्रध्वज 3 बराबर भागों में बटा होता है, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग देश की ताकत और शौर्य का परिचायक होता है, बीच में सफेद रंग जो शांति और सद्भाव और सत्य का प्रतीक होता है, सफेद के बीच में नीले रंग का धर्म चक्र है, और यह चक्र सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी सारनाथ में बनवाए गए चक्र की प्रतिकृति है, जिसमें 24 शलाखाएं होती हैं। चक्र यह दर्शाता है कि गति में ही जीवन है, ठहराव में मृत्यु है। राष्ट्र ध्वज के नीचे हरा रंग राष्ट्र की शस्य श्यामला धरती और देश की खुशहाली का प्रतीक है। तिरंगे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात भारतीय संविधान में वर्णित विधान के अनुसार रहता है, मतलब हम इसे अपनी मर्जी से किसी भी साइज में नहीं बना सकते हैं। यह हमें बात ध्यान में रखनी चाहिए। और राष्ट्र ध्वज की लंबाई चौड़ाई 9 प्रकार की होती है। तिरंगे का सम्मान करने और फहराने के लिए हमें जिन बातों पर ध्यान देना चाहिए वो इस प्रकार हैं। सबसे पहली बात, राष्ट्र ध्वज फहराते समय केसरिया रंग की पट्टी को हमेशा सबसे ऊपर रखें। क्षतिग्रस्त झंडे को कभी नहीं फहराना चाहिए। झंडा फहराते समय ध्यान ये रखना चाहिए कि झंडा जमीन को ना छुए और ना ही पानी में गीला हो। स्कूल में झंडा फहराते समय आयत का आकार बनाना चाहिए, जिससे तीनों ओर बच्चे और चौथी तरफ शिक्षक खड़े होने चाहिए और बीच में झंडा फहराया जाना चाहिए। एक बात और श्रोताओं, जब झंडा फहराया जाए तो सभी को उसे सलामी देना बहुत आवश्यक है। और श्रोताओं, राष्ट्रगान गाते समय या इसकी धुन सुनते समय हमेशा सावधान की स्थिति में खड़े होना चाहिए। और श्रोताओं, सावधान की स्थिति में ना तो हमें हिलना चाहिए और ना ही झंडा फहराते समय कोई बातें करना चाहिए। हमारा पूरा सम्मान राष्ट्रध्वज को जाना चाहिए। एक बात और श्रोताओं, ध्वजारोहण कार्यक्रम के दौरान जब झंडे को लेकर परेड की जाए, तब सभी लोग झंडे की तरफ मुंह करके सावधान की स्थिति में खड़े हो जाए। सैनिक टुकड़ियों को सही तरीके से राष्ट्रध्वज की सलामी देनी चाहिए। और हां, झंडा सूर्य उदय के साथ फहराना चाहिए, और सूर्य अस्त या मौसम खराब होने पर झंडा आदर सहित उतार लेना चाहिए। श्रोताओं, राष्ट्रध्वज उतारते समय ध्यान रखें कि वह जमीन को बिल्कुल न छुए। उसे सम्मान सहित हाथों में लेकर के अच्छी तरह से रखना चाहिए, और झंडा फहराते समय या परेड में ले जाते समय झंडे के ऊपर कोई दूसरी चीज नहीं होनी चाहिए। इस बात का भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए।

और श्रोताओं, एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा, राष्ट्रध्वज को पहनावे के रूप में हम उपयोग में नहीं ला सकते। किसी यूनिफॉर्म, कढ़ाई, साड़ी, रुमाल, नैपकिन या तकिए के प्रिंट में तिरंगे की आकृति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यह हमारे राष्ट्रध्वज का अपमान होता है। देश के महत्वपूर्ण व्यक्तियों जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल आदि की कारों पर झंडा हमेशा सामने की ओर और बीच में या दाहिनी तरफ लगा होता है। और श्रोताओं, सबसे आखिर में झंडा हमेशा ऊपर ही रहना चाहिए। जब राज्य, देश या विदेश की सरकारों के किसी प्रमुख की मृत्यु होती है तब झंडा आधा झुका दिया जाता है। अगर स्वतंत्रता दिवस पर ऐसा हो तो झंडा आधा झुका दिया जाता है। तो श्रोताओं, ये थी वो महत्वपूर्ण जानकारियां जो तिरंगे को फहराते समय हमें ध्यान में रखना चाहिए। हमें उम्मीद है कि जब भी कभी आप राष्ट्रध्वज को फहराएंगे तो इन बातों का विशेष तौर से पालन करेंगे। तो श्रोताओं, ये था हमारा एक छोटा सा ज्ञानवर्धक कार्यक्रम जिसका नाम था तिरंगे का सफर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय ध्वज दिवस पर हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: पर आप हैं श्रोताओं रेडियो आजाद हिंद के साथ। दिन के 12 बज चुके हैं। अब आज हमारी सुबह की सभा यहीं संपन्न होती है। हमारा ये प्रसारण यूं ही जारी रहेगा रात्रि 10 बजे तक। बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।
2: सुबह 7:10 से
1: अब सुबह की सभा से दीजिए आपके रेडियो मित्र पूर्वा खले को अनुमति। नमस्कार।
2: सुनो कहानी, ये कार्यक्रम आप सुन सके 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुनिए देशभक्ति गीत।

और आइए श्रोताओ, देशभक्ति गीतों के इस कार्यक्रम में अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसके बोल हैं, क्या समझते हो कि हम खेल का डर करते हैं, हम जो करते हैं उसे होके निडर करते हैं।

और आइए अब हम आपको सुनवाते हैं ये देशभक्ति कव्वाली। ना सुना जाएगा हमसे ये फसाना हरगिज, हंसते हंसते हमें जालिम ना रुलाना हरगिज।

और लीजिए अब सुनिए ये देशभक्ति रचना, आओ वीरो समर क्षेत्र में नवजीवन सरसाएगा, शीघ्र भारतीय हुंकारों से लंदन भी थर्राएगा।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। लीजिए सुनिए तेरी अमृत आराधना, भारत न खो जाए कहीं। सौ सौ युगों की साधना, भारत न खो जाए कहीं।

हम अहिंसा के पुजारी हैं मगर बुजदिल नहीं, कायरों से आज तक ये काम है शामिल नहीं, आज मिटने को न हो जो वो दिल नहीं। हम अहिंसा के पुजारी हैं मगर बुजदिल नहीं। आइए सुनते हैं इसी गीत को।

देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल। सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने। आइए सुनते हैं गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर की इस रचना को।

कहते हैं अलविदा इस जहान को, जाकर खुदा के घर फिर आया ना जाएगा। कहते हैं अलविदा इस जहान को।

0: आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत प्रमिला के साथ 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है।
1: मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व विख्यात संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा और राहुल शर्मा की बेहतरीन जुगलबंदी।

बहुत बहुत धन्यवाद। पहली मर्तबा हम लोग ये जुगलबंदी भोपाल में बजाएंगे।

तो श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम भारत भारती, जिसमें आज हमने आपको सुनवाया संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा और राहुल शर्मा की जुगलबंदी। अब दीजिए इजाजत इस कार्यक्रम से, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार रसिक जनों, मैं शाहिर अनंत फंदी। लगभग 270 साल पहले महाराष्ट्र के संगमनेर में जन्मा एक फकीर मंदी से कविता के बहाने दोस्ती हुई, कुछ सीखा, लिखा, लावणी, पौवाड़े, पद कटाव, फटका सब लिखा और गाया। जीवन में कितने फंदे हैं, माया, मोह, धन संपत्ति और क्या क्या, कि सब मुझे झकझोरते रहते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैं क्या अजर अमर हूं? ना ना ना, मेरी आत्मा आबसी है सूत्रधार में। जब मुझे पता लगा कि प्रातः स्मरणीय अहिल्याबाई पर नाटक होना है तो मन नहीं माना। मेरी शब्द विलास में डूबी कलम में कीर्तन का रंग उन्होंने ही भरा था। नाच गाने रस रंग से दूर भक्ति के भाव में डुबाया था मुझे महेश्वर में। जीवन में जब कठिनाई हो सरल सत्य पथ नहीं छोड़ना, जीवन में जब कठिनाई हो सरल सत्य पथ नहीं छोड़ना, भटक भटक कर दुख मत पाना, दुनिया से मुख नहीं मोड़ना।
1: साधु साधु, कविता में ऐसा फटका तो बस अनंत फंदी तुम्हारी कलम का जादू है।
0: प्रणाम स्वीकार करें मेरा, अहो भाग्य हमारा। अहिल्याबाई के दरबार के संस्कृत विद्वान और महान वक्ता हमारे बीच हैं, खुशाली राम जी।
1: मालवा की संस्कृति में सुदूर महाराष्ट्र की खुशबू का मिलन सोने में सुहागा मिलने जैसा है।
0: खुशाली राम जी, आपका आना जैसे कि प्राण वायु का झोंका है।
1: अरे इतना महिमा गान भी ठीक नहीं, अगर महिमा गानी है तो देवी अहिल्याबाई का यशगान करो।
0: उनका जीवन ही तो हमारे आज के नाटक की भावभूमि है। इतना लंबा समय काल, समझ में नहीं आता कहां से शुरू करें।
1: उनका बचपन रोमांच से भरपूर था, वहीं से शुरू करें।
0: हाँ, नाम अहिल्या था कन्या का, पुण्य समय अवतरित हुई। नाम अहिल्या था कन्या का, पुण्य समय अवतरित हुई, भक्ति भाव में मन था डूबा, गाथा इनकी कही गई।
1: अरे कविराज जरा रुको, थोड़ा परिचय दे दूं। महाराष्ट्र के जामखेड़ के पास एक गांव है चौढ़ी। यहां मनकोजी शिंदे के यहां

0: सुनो बेटी, इस गांव के पाटिल मनको जी का घर कहाँ है?
1: जी कहिए, मैं हूँ उनकी बेटी अहिल्या।
0: हम तीर्थयात्री पास के राजवाड़ी गांव के हैं। पालकी लेकर पंढरपुर जा रहे हैं, मनको जी से मिलना था।
1: बाबा अभी खेत पर से लौटे हैं, घर पर ही हैं।
0: जय हरि विठ्ठल मनको जी।
2: जय हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल। आइए आइए आइए, आप तो राजेवाड़ी गांव के शाहू जी हैं ना?
0: खूब पहचाना आपने, वार करी है, पंढरपुर जा रहे हैं।
2: ओ भाग्य, ओ भाग्य जो आपके दर्शन हुए। बाकी लोग?
0: वहीं देवी के मंदिर में हैं, विश्राम कर रहे हैं।
2: आपका भोजन? मैं कुछ धानी मुरमुरे भिजवा देता हूँ।
0: वो सब तो साथ में है।
2: तो फिर मैं नींबू की शिकंजी और छाछ का प्रबंध करवाता हूँ।
0: जैसी आपकी इच्छा।
2: और ये चांदी के 11 रुपए हमारे गांव की ओर से विट्ठल देव के मंदिर में अर्पण कर देना। इच्छा तो मेरी भी थी पंढरपुर जाने की, पर खेती में बहुत काम है, क्या करूं। अहिल्या
1: जी। बाबा,
2: अपनी माँ से कहो एक घड़ा छाछ मंदिर में भिजवा दे।
1: जी अभी जाती हूँ।
0: आपकी कन्या बहुत गुणवंती है।
2: हाँ, दया भाव बहुत है उसमें, गांव में सबसे लाडली है।
0: झूठ नहीं कहूंगा, तीर्थयात्री हूँ, विट्ठल का भक्त।
2: कहना क्या चाहते हैं आप?
0: मैं कुछ देवीय शक्ति देख रहा हूँ इसमें।
2: अरे आपकी उदारता है, अभी तो 8 वर्ष पूरे किए हैं उसने।
0: जीवन के गुण धर्म उम्र से नहीं आके जाते।
2: तो फिर?
0: ये तो ईश्वर की देन है, जो विधाता ने उसकी झोली में भर दिए हैं।
2: ये तो मेरा सौभाग्य है।
0: आपकी पुत्री राजरानी होगी।
2: हरी इच्छा शाहू जी, कहां हम साधारण किसान और कहां वो।
1: लीजिए।
0: तुम्हारा भविष्य में देख रहा हूं, माउली हो तुम, माउली।
1: जी
2: आपकी वाणी सच हो।
3: जय भवानी।
4: जय भवानी।
3: मालवा के सुबेदार मल्लार राव जी होलकर पूना की यात्रा पर विश्राम के लिए।
2: अहो भाग्य, अहो भाग्य, चंडिका मंदिर में बहुत स्थान है।
3: आप व्यवस्था करें, मैं सूचना देता हूँ।
5: जय भवानी।
4: जय भवानी।
2: जय भवानी। मैं मनकोजी शिंदे, चौड़ी गांव का पाटिल, प्रणाम और स्वागत करता हूँ आपका।
0: मैं राजवाड़ी गांव का मुखिया डिंडी हूँ, पंढरपुर जा रहे हैं, प्रणाम।
5: क्या नाम है बेटी तुम्हारा?
1: जी अहिल्या।
5: आशीर्वाद। ये मंदिर में क्या कर रही हो?
1: बहुत से तीर्थयात्री हैं ना, सेवा कर रही हूँ।
5: सेवा करना अच्छा लगता है तुम्हें?
1: अच्छा, मुझे बहुत आनंद आता है।
5: क्यों?
1: माँ कहती है दे देवाचे मंदिर, याने
5: ये दे ईश्वर का मंदिर है, यही ना?
1: आपको कैसे पता?
5: मेरे गुरु ने भी सिखाया था यही।
1: सच? तब तो हम गुरु भाई हुए है ना?
5: हाँ बिल्कुल।
1: मैं जब किसी को खाना खिलाती हूँ, पानी देती हूँ, सेवा करती हूँ, तो
5: फिर क्या?
1: तो मुझे उनमें भगवान दिखाई पड़ते हैं।
5: क्या मुझ में भी?
1: हाँ आप में भी, आप सबसे अलग थोड़ी ही हैं। और दूं?
5: ना ना बेटी ना, जीवन में आज पहली बार मन और तन दोनों तृप्त हुए।
1: क्यों, पहले कभी छाछ नहीं पी क्या?
5: नहीं बेटी, मेरी माँ के मरने के बाद पहली बार किसी ने इतने प्रेम से कलेवा छाछ करवाया है।
1: अरे अरे रो मत, यहाँ रहोगे ना तो रोज इतने ही प्रेम से खिलाऊंगी।
5: मैं तो यहाँ नहीं रह सकता, पर तुम जरूर मेरे साथ रहोगी। मनको जी।
2: जी
5: मैं अपने पुत्र खांडेराव के लिए आपकी बेटी को चाहता हूँ।
2: जी कहाँ आप, कहाँ हम, मैं।
5: आप ऐसी शीलवान कन्या के पिता हैं, मैं आपका जीवन धन आपसे मांग रहा हूँ।
2: अहिल्या हमारे परिवार की जीवन ज्योति है।
5: अब वो उसका दिव्य प्रकाश इंदौर के राजमहल को भी आलोकित करेगा।
2: स्वीकार है महाराज, स्वीकार है।
5: अब हम जाना चाहेंगे। ऐसा लगता है इस शुभ कार्य के लिए ही विधाता ने मुझे इस रास्ते भेजा।
2: आपने बड़ी कृपा की महाराज, मैं तो धन्य हो गया, मैं तो धन्य हो गया महाराज, मैं तो धन्य हो गया।
1: राजा जी, आपने मेरे बाबा को क्यों रुलाया?
5: ये खुशी के आंसू हैं बेटी, तुम हमारी बहू बनकर आओगी। मनको जी, आप चिंता ना करें।
2: बेटी के विवाह की चिंता तो होगी ही महाराज।
5: अभी हम पूना जाकर सारी व्यवस्था कर देंगे। आपका घर धन्य धान्य से भरपूर हो जाएगा। पेशवा से आपकी मनसबदारी भी तय करवा देंगे। चलें। जय भवानी।
4: जय भवानी।
2: आपकी वाणी सच हो गई महाराज, आपकी वाणी सच हो गई।
0: ये तो होना ही था, बिटिया बड़ी भाग्यशाली है।
2: जी महाराज।
6: देखा खुशाली राम जी, सेवा और विनय भाव से
7: आप संसार जीत सकते हैं।
6: हाँ, इसीलिए कहता हूँ सबको, इसीलिए कहता हूँ सबको, प्रेम भाव से जीना है। अच्छे जहां विचार मिले उसको मन में पीना है। निंदा, निंदा नहीं किसी की करना, निंदा नहीं किसी की करना, बस चोरी से डरना है। सत्कर्मों की छाया में जीवन अच्छा करना है।
7: वाह कविराज वाह, आपने जीवन का सूत्र बता दिया।
6: हमारे वेद पुराण भी यही कहते हैं। अब नाटक आगे बढ़ाएं।
7: बिल्कुल बिल्कुल। फिर क्या हुआ अहिल्या का?
6: होना क्या था, धूमधाम से विवाह हुआ। राजे महाराजे आए और राजसी ठाट से नन्ही अहिल्या पालकी में सवार हो

0: रानी साहिबा, कैसी लगी हमारी पसंद?
1: बड़ी परख है आपको, कितनी दूर से गुणवंती ढूंढ लाए।
0: सब गणेश जी की कृपा है, अब उसको राजमहल के संस्कार, शिक्षा दीक्षा।
1: कल अहिल्या से बात की, उसकी माँ ने काफी पढ़ाया है घर में, मराठी, संस्कृत, गणित।
0: ये तो अच्छी बात है, पर उसे मोड़ी लिपि सिखाना भी ठीक रहेगा।
1: क्यों, वो क्या राजकाज करेगी?
0: समय किसने देखा है, अरे पेशवा से सारी चिट्ठी पत्री मोड़ी लिपि में होने से सब गुप्त रहता है।
1: मोड़ी की 4 लिपि है, अलग अलग।
0: मेरे विचार से रानाड़ी लिपि ठीक रहेगी।
1: ठीक है, कल से उसके लिए अलग पढ़ाने वाले की जरूरत होगी, मैं सब व्यवस्था कर दूंगी।
2: समय अपनी गति से चलता रहा। अपनी सासू माँ के मार्गदर्शन में अहिल्या की शिक्षा जारी रही।
3: केवल शिक्षा नहीं, राज दरबार के दांव पेंच, राजनीति के सूत्र और सैन्य संचालन के रहस्य भी धीरे धीरे उनकी पकड़ में आने लगे।
2: मल्हार राव कुशल सेना नायक थे और मराठा गुरिल्ला युद्ध के साहसी खिलाड़ी।
3: उनके पुत्र खांडे राव ने भी शस्त्र शिक्षा अपने पिता से पाई।
2: और एकांत में खांडे राव अपनी पत्नी अहिल्याबाई को शस्त्र चलाना सिखाते थे।
3: जामखेड़ के जंगलों में घूमने वाली अहिल्या जल्दी ही सब सीख गई। उसका बचपन अब कहीं दूर जा चुका था और अब वो तैयार थी हर विपत्ति का सामना करने के लिए।
0: कहो सेनापति जी, क्या समाचार है?
4: हुना से बाजीराव जी पेशवा का संदेश आया है। पत्र के अनुसार मालवा का अधिकांश भाग अब आपको दे दिया गया है। सेना रखने का खर्च भी अब आपका 4 गुना बढ़ा दिया गया है।
0: इसका मतलब अब हजारों की सेना हमारे नीचे रहेगी, यानी और अधिक लड़ाइयां, युद्ध।
4: हमारी सेना को पुर्तगालियों से लड़ने वसई जाना होगा,
0: पश्चिम में समुद्र किनारे।
4: जी ठीक कहा। इसके अलावा पत्र में उत्तर भारत की तरफ सैन्य अभियान के कूट संकेत भी हैं।
0: पेशवा को हमारी सेना की बहादुरी पर विश्वास है, अच्छा है। खांडे राव जी भी इन सभी अभियानों में साथ रहेंगे।
4: जी, उन्हें सूचना भेज दी जाएगी।
0: सेना में बहादुर साहसी युवकों की भर्ती की मुनादी करवा दें, आवश्यक व्यवस्था करें।
4: जैसी आज्ञा।
5: अहिल्या, कुछ सुना तुमने?
6: हाँ, सासू माँ कह रही थी उधर राजस्थान, दिल्ली और आगे लाहौर तक जाना।
5: हाँ, रोहिल्या के साथ और मुगलों के साथ भी।
6: कौन कौन जाएंगे आपके साथ?
5: जयप्पा शिंदे, गंगाधर, तात्या, तुकोजी राव तो हैं ही, सेना भी बड़ी होगी।
6: कब जाना है?
5: शायद 15 दिन बाद, गणेश चतुर्थी के दिन।
6: महल के गणेश मंदिर में अखंड दीप जलता रहेगा आपके विजय के लिए।
5: और मेरे मन में तुम्हारी याद का दीपक।
2: ये सैन्य अभियान काफी लंबा चला। फतेहगढ़ की लड़ाई में रोहिल्ला और बंगश पराजित हुए। 1752 में सफदरजंग मराठा सेना के साथ आए अहमद शाह अब्दाली से संधि हुई। इसी समय पेशवा का संदेश आया, पूना जाओ, पूना पर आक्रमण हुआ है।
3: वहां से मराठा सेना फिर लौटी और राजस्थान के कुम्हेर किले पर घेरा डाल दिया।
2: पेशवा के छोटे भाई राधोबा, होलकर और सिंधिया की सेना की मदद से राजा सूरजमल को हराना चाहते थे,
3: पर 4 महीने की घेरेबंदी के बाद भी किला जीत ना सके।
2: विधाता कुछ और संकेत दे रहा था। 24 मार्च 1754 को किले से दागे गए तोप के गोले ने खांडे राव की जीवन लीला समाप्त कर दी।
3: क्रोधित मल्हार राव कूटनीति के तहत सूरजमल से संधि करके इंदौर लौटे, अपने पुत्र को खोकर।
2: ये कैसा समय आ गया, जिस महल में खुशी के स्वर गूंजते थे वहां विषाद योग। मात्र 20 वर्ष के वैवाहिक जीवन के बाद ये कैसा अनर्थ। छाया अंधकार महलों में अजब भाग्य की माया, रोती थी हल भाग अहिल्या बन विषाद की काया। अब जीवन में क्या रखा, अब जीवन में क्या रखा, काया भीगी आंसुओं में, साथ पति के सती हो सकूं, सोचा मन ही मन में।
1: आप अकेले कैसे महाराज, कहां है मेरा लाल?
0: हम क्षत्रिय हैं रानी साहिबा, राजकुमार रण में खेत रहे।
1: आपने रक्षा नहीं की उसकी, आप तो समर्थ थे ना।
0: रक्षा तो की, 4 महीने कुम्हेर दुर्ग को घेर करके रखा।
1: ये तो घेरा था, युद्ध तो नहीं?
0: हाँ, हम डेरा डाले हुए थे, पर एक दिन शत्रु ने तोप का गोला दागा जो सीधा खांडे राव के तंबू पर गिरा
1: और वो कर्तव्य की बलि वेदी पर
0: अपना जीवन होम कर बैठा।
1: वीर था मेरा पुत्र, पिछले 10 वर्षों में कितने युद्ध में आपके साथ रहा, हमेशा जीत कर ही आया,
0: और होलकर सेना का ध्वज कभी झुकने नहीं दिया।
4: क्षमा करें महाराज, वंश परंपरा के अनुसार संस्कार की तैयारी हो चुकी है।
0: जी, राजकीय सम्मान का भी ध्यान रखें।
4: जैसी आज्ञा, वैसा ही होगा।
6: महाराज क्षमा करें, कुछ विनय करना है।
0: बोलो बेटी, वैसे तो मैं तुम्हारा अपराधी हूं, अपने बेटे को वापस न ला सका।
6: आपका कोई दोष नहीं, ये सब विधाता ने रचा है।
0: विधाता का माध्यम हम ही तो है ना।
6: अब मेरा संसार तो उजड़ चुका है।
0: ऐसा ना कहो बेटी।
6: मैं अपने पति के साथ सती होने की आज्ञा चाहती हूँ।
1: क्या? सती होना चाहती हो?
6: जी महाराज।
1: ऐसा कैसे संभव है? नहीं, ये उचित नहीं।
0: पति के प्रति तुम्हारा अनुराग, इतना प्रेम वंदनीय है, पर सती? नहीं नहीं नहीं।
1: अपने बच्चे मालेराव और मुक्ताबाई के बारे में नहीं सोचा? वे भविष्य है होलकर वंश के।
6: सोचा तो, पर पति के बगैर एक स्त्री का क्या जीवन है?
0: जीवन ईश्वर का अंश है, वो केवल तुम्हारा नहीं, उसके साथ दूसरों का जीवन और कल्याण भी जुड़ा है।
6: कैसे?
0: भूल गई? अपने गांव में कितने प्रेम और सेवा भाव से लोगों की सेवा करती थी।
6: तब मैं अकेली थी।
0: ना ना ना, प्रेम और सेवा भाव तुम्हारे मन से गया नहीं। अब तुम प्रजा के कल्याण की सोचो, तुम्हारे पास साधन है, शक्ति है, अधिकार है।
6: हाँ है तो, पर जीवन में अब आनंद कहाँ?
0: हाँ, विलास अब नहीं है, पर समर्पण का आनंद है।
6: किसे किसे करूं समर्पण, इस व्याकुल मन को?
0: अपनी व्याकुलता इन्हें अर्पित करो, ये शिव हैं। शिव का अर्थ ही है सुंदर और कल्याणकारी, अमंगल का नाश और मंगल का उदय।
6: यदि शिव ही मंगल का मूल है तो मेरा अमंगल क्यों?
0: चित को शांत करो, यह प्रश्न जो तुम्हें दुख दे रहा है स्वाभाविक है, ये तुम्हारी सांसारिक दृष्टि है। मन में झांक कर देखो तो पाओगे कि इस जन्म में जन जन के कल्याण के लिए जो तुम्हारी भूमिका है, ये उसके उदय का संधिकाल है।
6: यानी? मैं समझी नहीं।
0: समझो इसे, जन्म और मृत्यु है क्या? सर्व शिवमय जगतः, इस असार संसार में सब शिवमय है। ये संसार शिवत्व का ही प्रकटीकरण है, शिव इस सृष्टि का शाश्वत तत्व है, सब तत्वों का सार और मूल।
6: अर्थात यहीं से जन्म और इसी में विलय। सर्वम शिवमय जगता, सर्वम शिवमय जगता।
0: संतुलन साधना ही शिवत्व है, लय और प्रलय दोनों शिव के अधीन है। शिव सौम्य भी हैं और रुद्र भी, ये अर्ध नारीश्वर हैं, पुरुष और स्त्री का सम्मिलित रूप, वे गृहस्थ भी हैं और वीतरागी भी। ये संतुलन ही कल्याणकारी शिवत्व है।
6: ओम नमः शिवाय। चैतन्याय चिदंबराय।
0: ये जीवन ये साम्राज्य शिव को अर्पित करो और उनकी ओर से इस राज्य पर कल्याणकारी शासन करो।
6: जैसी आज्ञा पिताजी। ओम नमः शिवाय।
2: अहिल्या को ढाढ़स बधाकर मल्हार राव पुत्र के अंतिम संस्कार में चले जाते हैं। धीरे धीरे दुख की छाया कम होने लगती है, राजकाज चलने लगता है।
3: अहिल्या सत्संग और भक्ति में अपने दिन काटने लगती है।
2: 20 मई 1766 को आलमपुर में मल्हार राव होलकर का निधन हो जाता है।
3: भालेराव होलकर को सत्ता मिलती है, पर अहिल्या बाई की देखरेख में।
2: पर क्रूर काल को यह भी मंजूर नहीं था। बीमार भालेराव भी सत्ता सुख नहीं भोग पाता, उसका देहांत हो जाता है।
3: एक वर्ष के भीतर ही ससुर और पुत्र को खोने के बाद अहिल्या बाई धीरज से राजकाज संभाल लेती है। यही वो परिवर्तन बिंदु है जहां से मालवा की प्रजा अपना उत्कर्ष देखती है।
6: सभी प्रजाजन और गुरुजनों को प्रणाम।
7: रानी माँ, राज्याभिषेक के बाद आपका दरबार में स्वागत है।
6: मैंने अपने पूज्य महाराज मल्हार राव जी को वचन दिया था कि उनके अधूरे काम मैं पूरा करूंगी।
7: ऐसा ही होगा, हम सेवा में आज्ञा करें।
6: महाराज जी ने अनेक लड़ाइयां लड़ी, अब हम यहाँ अमन चैन चाहते हैं।
4: आसपास के राज्य तो सब शांत है, हाँ पाताल पानी और उधर जंगलों में डाकू गांव के लोगों को तंग कर रहे हैं।
6: आप घोषणा करवा दें, जो वीर उन डकैतों को पकड़ेगा हम अपनी पुत्री मुक्ताबाई का विवाह उससे करेंगे। पुरोहित जी, हम महेश्वर को अपनी राजधानी बनाना चाहते हैं, आपकी क्या राय है?
7: शुभ विचार है, नर्मदा का पावन तट और घने जंगल पहाड़ सुरक्षित जगह रहेगी।
4: उधर के आदिवासी भील भिलाले हमारे साथी और मित्र हैं।
6: राजकोष से पैसे की व्यवस्था करें। हाँ, हमारा महल सादगी से बनेगा, वहां से माँ नर्मदा के दर्शन हो ये ध्यान रखें।
2: बहादुर युवा यशवंत राव ने डकैतों को पराजित किया और उसका विवाह मुक्ताबाई से संपन्न हुआ।
3: महेश्वर में अहिल्या बाई ने भगवान शिव का विशाल मंदिर भी बनवाया।
2: विरोधियों ने खूब हल्ला मचाया, पर सेना तुकोजी राव के नेतृत्व में रानी के साथ थी। शिव की पूजा शिव का अर्चन, शिव की पूजा शिव का अर्चन और नर्मदा का पावन जल, जनहित में कल्याणी बनकर बनी अहिल्या मात सकल।

0: आज शिवरात्रि का पावन पर्व है। प्रजाजन अपनी तकलीफ हमें बता सकते हैं।
1: दरबार में मराठी कवि मोरोपंत, शायर अनंतराम भंदी, संस्कृत विद्वान खुशाली राम भी मौजूद हैं।
0: हम महेश्वर को विद्या और संस्कृति का केंद्र बनाना चाहते हैं। आप सभी सहयोग करें।
2: यहाँ की जलवायु वस्त्र साड़ी आदि बनाने के लिए अच्छी है।
0: ठीक है, हम सूरत से कारीगर लाकर यहाँ बसाएंगे, उन्हें उचित आवास और धन देंगे।
3: जी, सैकड़ों परिवारों को काम मिलेगा।
4: संस्कृति विद्यालय और शिक्षण का काम मैं संभालूंगा।
2: रानी माँ, हमारे समाज में माँ बहनों के लिए कोई पाठशाला नहीं है।
0: ये उचित नहीं है। खुशाली राम जी, आप इसकी योजना बनाएं। कहाँ कहाँ महिलाओं लड़कियों के लिए पाठशाला खोल सकते हैं, हम व्यवस्था करेंगे।
5: रानी माँ, जैसे कि हम पंचायतों को अपने क्षेत्र में शासन और व्यवस्था के लिए सुविधा दे रहे हैं, शिक्षा का जिम्मा भी उन्हें ही दे दें।
0: उचित सुझाव है। पंचायतों की सहयोग राशि और आय के लिए जमीन दी जा सकती है।
5: बंदोबस्त अधिकारी इस सारे काम के लिए लगाए जा सकते हैं।
0: मेरे पास लगान और दूसरे करों के बारे में काफी सूचना आई है।
5: असल में आसपास के छोटे राजा जमींदार अपने फालतू खर्चों के लिए हर कभी किसानों पर, व्यापारियों पर, दुकानदारों पर कर लगा देते हैं।
0: ये अत्याचार सब बंद करिए। किसानों व्यापारियों से बात करके लगान और कर की सीमा तय करें। उनका भी इतना हो और राज्य का भी खर्चा चलता रहे।
3: रानी माँ, बाहर कुछ मजदूरों की भीड़ लगी है, आपके दर्शन चाहती है।
0: आने दीजिए।
6: रानी माँ, हम गरीबों की भी सुनिए। ये बड़े बड़े व्यापारी, सामान, जमींदार हमसे खेतों में हाट में काम करवाते हैं और एक ढेला भी नहीं देते। मजदूरी मांगो तो कभी आधी और कभी मार मिलती है।
2: हम गरीब भूखे मरते हैं, हमारे बच्चे अदनंगे बीमार घूमते हैं।
3: कभी बीमार होते हैं तो कोई दवाई या उपचार भी नहीं मिलता, ऐसे ही मर जाते हैं तड़प कर।
0: राज वैद को बुलाया जाए। राज वैद जी, आसन ग्रहण करें। इन गरीबों की सेवा के लिए आप क्या कर सकते हैं?
1: सामान्य सुलभ औषधि हम इन्हें निशुल्क दे सकते हैं। ये ग्रामीण आदिवासी जंगली बूटी के जानकार हैं। ये जंगल से सामग्री ला दें, हम औषध बनवा देंगे।
0: आप खुश हैं? मंजूर है? राज वैद जी, आप योग्य शिष्य भी तैयार करें ताकि उन्हें हम गांव भेज सकें। राशि हम देंगे। मंत्री जी, मजदूरों की मजदूरी के नियम तय करें, कोई बेगार नहीं करेगा, और भूखों के लिए अनाज राज्य के भंडार से दिया जाए।
5: पेशवा का पूना से पत्र आया था अंग्रेजों के बारे में।
0: पेशवा को पत्र में साफ साफ लिख दें, आप बाघ, शेर, तेंदुओं को तो लड़ाई में मार सकते हैं, पर ये अंग्रेज रीछ के समान है। जब तक सिर में इनके मर्म स्थल पर ना मारा जाए, ये मरेंगे नहीं। पेशवा अंग्रेजों से दूर ही रहे तो अच्छा।
7: रानी माँ, आज श्रावण सोमवार है, आपके मंदिर जाने की तैयारी कर दूं?
0: हाँ, आज हजारों पार्थिव शिवलिंग बनेंगे।
7: सब व्यवस्था हो गई है।
0: सबको कह दो कि हर पार्थिव शिवलिंग में चावल के 8-10 दाने जरूर रखें,
7: ताकि नर्मदा मैया के जीवों को भोजन मिल सके, यही ना?
0: सभी तत्व शिव में है, उनको पालना है, हम तो केवल साधन है।
8: अपना सारा जीवन परोपकार में लगाने वाली पुण्य श्लोका अहिल्याबाई ने सारे देश में मंदिरों का जीर्णोद्धार किया।
9: आलमपुर में उन्होंने मल्हार राव और कुम्भेर में पति खांडे राव के स्मृति चिन्ह बनवाए।
8: बद्रीनाथ, वाराणसी, अयोध्या, द्वारका, अमरकंटक, बेलूर, चित्रकूट, गंगोत्री, गया, गोकर्ण, हरिद्वार और केदारनाथ आदि अनेक स्थानों पर बने मंदिर उनकी कीर्ति गाथा आज भी सुना रहे हैं।
9: अपनी निजी संपत्ति से बनाए गए ये सभी स्थान उस काल की स्थापत्य कला के भी सुंदर नमूने हैं।
8: मात्र 70 वर्ष की आयु में 13 अगस्त 1795 को लोकमाता अहिल्या शिवलोक को चली गईं।
9: क्या कहें कितनी कहें उस कल्याणी की यश गाथा। मन थक जाता है, कलम रुक जाती है।
8: 250 वर्ष पुरानी इस कथा में आपको आनंद जरूर मिला होगा। हमें आज्ञा दें, आज करें गुणगान सभी मिले, ऐसी जीवन गाथा का अपने दुख की छाया में उपकार उसी को आता था। जगह जगह पर बने शिवाले, जगह जगह पर बने शिवाले, मंदिर चमके गौरव से, जन जन को सुख चैन मिला, बचे युद्ध के रौरव से, सबके जीवन में मंगल हो, मन में इच्छा दमक रही, मात अहिल्या नारी गौरव, ध्रुव तारे सी चमक रही, मात अहिल्या नारी गौरव, ध्रुव तारे सी चमक रही।
10: अहिल्या माता की
11: जय हो,
10: अहिल्या माता की
11: जय हो,
10: अहिल्या।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई। रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
2: तो सुनते रहिए रेडियो आज़ाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद पर मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: ये मेरा इंडिया।
0: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थी, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञान वर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और आज हम अपने कार्यक्रम सुनो कहानी में आपको सुना रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी बलिदान।

मनुष्य की आर्थिक अवस्था का सबसे ज्यादा असर उनके नाम पर पड़ता है। मौजे बेला के मंगरू ठाकुर जब से कांस्टेबल हो गए हैं, उनका नाम मंगल सिंह हो गया है। अब उन्हें कोई मंगरू कहने का साहस नहीं कर सकता। कल्लू अहीर ने जब से हलके के थानेदार से मित्रता कर ली है और गांव का मुखिया हो गया है, उसका नाम कालिका दीन हो गया है। अब उसे कोई कल्लू कहे तो आंखें लाल पीली करता है। इसी प्रकार हरख चंद्र कुर्मी अब हरखू हो गया है। आज से 20 साल पहले उसके यहाँ शक्कर बनती थी, कई हल्की खेती होती थी और कारोबार खूब फैला हुआ था, लेकिन विदेशी शक्कर की आमद ने उसे मटिया मेट कर दिया। धीरे धीरे कारखाना टूट गया, जमीन टूट गई, गाहक टूट गए और वो भी टूट गया। 70 वर्ष का बूढ़ा जो एक तकियेदार माचे पर बैठा हुआ नारियल पिया करता था, अब सिर पर टोकरी लिए खाद फेंकने जाता है, परंतु उसके मुख पर भी एक प्रकार की गंभीरता, बातचीत में अब भी एक प्रकार की अकड़, चाल ढाल में अब भी एक प्रकार का स्वाभिमान भरा हुआ है। इन पर काल की गति का प्रभाव नहीं पड़ा। रस्सी जल गई पर बल नहीं टूटा। भले दिल मनुष्य के चरित्र पर सदैव के लिए अपना चिन्ह छोड़ जाते हैं। हरखू के पास अब केवल 5 बीघा जमीन है, केवल 2 बैल हैं, एक हल की खेती होती है, लेकिन पंचायतों में आपस की कलह में उसकी संपत्ति अब भी सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है। वो जो बात कहता है बेलाग कहता है और गांव के अनपढ़ उसके सामने मुंह नहीं खोल सकते। हरखू ने अपने जीवन में कभी दवा नहीं खाई। वो बीमार जरूर पड़ता, कुआर मास में मलेरिया से कभी ना बचता था, लेकिन 10-5 दिन में वो बिना दवा खाए ही चंगा हो जाता था। इस वर्ष भी कार्तिक में बीमार पड़ा और ये समझकर कि अच्छा तो हो ही जाऊंगा, उसने कुछ परवाह न की। परंतु अब की ज्वर मौत का परवाना लेकर चला था। 1 सप्ताह बीता, 2रा सप्ताह बीता, पूरा महीना बीत गया, पर हरखू चारपाई से ना उठा। अब उसे दवा की जरूरत मालूम हुई। उसका लड़का गिरधारी कभी नीम की सीखें पिलाता, कभी गदा पूर्णा की जड़, पर इन औषधियों से कोई फायदा न होता था। हरखू को विश्वास हो गया कि अब संसार से चलने के दिन आ गए। एक दिन मंगल सिंह उसे देखने गए। बेचारा टूटी घाट पर पड़ा राम राम जप रहा था। मंगल सिंह ने कहा, बाबा बिना दवा खाए अच्छा ना होगे, कुनैन क्यों नहीं खाते? हरखू ने उदासीन भाव से कहा, तो लेते आना। दूसरे दिन कालिका दीन ने आकर कहा, बाबा 2-4 दिन कोई दवा खा लो, अब तुम्हारी कोई जवानी की देह थोड़ी है कि बिना दवा दर्पण के अच्छे हो जाओ। हरखू ने उसी मंद भाव से कहा, तो लेते आना, लेकिन रोगी को देखकर आना एक बात है, दवा लाना उसे दूसरी बात है। पहली बात शिष्टाचार से होती है, दूसरी सच्ची संवेदना से। न मंगल सिंह ने खबर ली, न कालिका दीन ने, न किसी तीसरे ही ने। हरखू दालान में खाट पर पड़ा रहता। मंगल सिंह कभी नजर आ जाते तो कहते, भैया वो दवा नहीं लाए। मंगल सिंह कतराकर निकल जाते। कालिका दीन दिखाई देते तो उनसे भी ये प्रश्न करता, लेकिन वो भी नजर बचा लेता। या तो उसे ये सूझता ही नहीं था कि दवा पैसों के बिना नहीं आती, या वो पैसों को जान से भी प्रिय समझता था, अथवा वो जीवन से निराश हो गया था। उसने कभी दवा के दाम की बात नहीं की, दवा ना आई। उसकी दशा दिनों दिन बिगड़ती गई, यहां तक कि 5 महीने कष्ट भोगने के बाद उसने बड़ी होली के दिन शरीर त्याग दिया। गिरधारी ने उसका शव बड़ी धूमधाम से निकाला, क्रियाकर्म बड़े हौसले से किया, कई गांव के ब्राह्मणों को निमंत्रित किया। बेला में होली ना मनाई गई, ना वीर, ना गुलाल उड़ी, ना डफली बजी, ना भंग की नालियां बहीं। कुछ लोग मन में हरखू को कोसते जरूर थे कि इस बुढ़े को आज ही मरना था, 2-4 दिन बाद मरता, लेकिन इतना निर्लज्ज कोई न था कि शोक में आनंद मनाता। वो शहर नहीं था जहां कोई किसी के काम में शरीक नहीं होता, जहां पड़ोसी के रोने पीटने की आवाज हमारे कानों तक नहीं पहुंचती। हरखू के खेत गांव वालों की नजर पर चढ़े हुए थे। 5 बीघा जमीन कुएं के निकट, खाद 5 से लदी हुई मेड़ बांध से ठीक थी। उनमें 3-3 फसलें पैदा होती थी। हरखू के मरते ही उन पर चारों ओर से धावे होने लगे। गिरधारी तो क्रियाकर्म में फंसा हुआ था। उधर गांव के मनचले किसान लाला ओमकार नाथ को चैन न लेने देते थे। नजराने की बड़ी बड़ी रकमें पेश हो रही थी,
कोई साल भर का लगान पेशगी देने पर तैयार था, कोई नजराने की दूनी रकम का दस्तावेज लिखने पर तुला था, लेकिन ओमकारनाथ सबको टालते रहते थे। उनका विचार था कि गिरधारी का हक सबसे ज्यादा है, वो अगर दूसरों से कम भी नजराना दे तो खेत उसी को देने चाहिए। अस्तु जब गिरधारी क्रियाकर्म से निवृत्त हो गया और चैत का महीना भी समाप्त होने लगा, तब जमींदार साहेब ने गिरधारी को बुलाया और उससे पूछा, खेतों के बारे में क्या कहते हो? गिरधारी ने रोकर कहा, उन्हीं खेतों का आसरा है, जोतूंगा नहीं तो क्या करूंगा। ओमकारनाथ बोले, नहीं जरूर जोतो, खेत तुम्हारे हैं, मैं तुमसे छोड़ने को नहीं कहता हूं। हरखू ने उन्हें 20 साल तक नहीं जोता, उन पर तुम्हारा हक है, लेकिन तुम देखते हो अब जमीन की दर कितनी बढ़ गई है। तुम 8 रुपया बीघा पर जोतते थे, मुझे 10 रुपये मिल रहे हैं और नजराने के 100 लग। तुम्हारे साथ रियायत करके लगान वही रखता हूं, पर नजराने के रुपए तुम्हें देने पड़ेंगे। सरकार, मेरे घर में तो उस समय रोटियों का भी ठिकाना नहीं है, इतने रुपए कहां से लाऊंगा? जो कुछ जमा जथा थी दादा के काम में उठ गई, अनाज खलिहान में है, लेकिन दादा के बीमार हो जाने से उपज भी अच्छी नहीं हुई, रुपए कहां से लाऊं? यह सच है, लेकिन मैं इससे ज्यादा रियायत नहीं कर सकता। नहीं सरकार, ऐसा ना कहिए, नहीं तो हम बिना मारे मारे जाएंगे। आप बड़े होकर कहते हैं तो मैं बैल बधिया बेचकर 50 रुपया कर सकता हूं, इससे बेशी की हिम्मत नहीं पड़ती। ओमकारनाथ चिढ़कर बोले, तुम समझते हो कि हम ये रुपए लेकर अपने घर में रख लेते हैं और चैन की बंसी बजाते हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो कुछ गुजरती है हम ही जानते हैं। कहीं ये चंदा, कहीं वो इनाम, इनके मारे कचूमर निकल जाता है। बड़े दिन में सैकड़ों रुपए डालियों में उड़ जाते हैं, जिसे डाली ना दो वही मुंह फुलाता है। अरे जिन चीजों के लिए लड़के तरस कर रह जाते हैं उन्हें बाहर से मंगाकर डालियों में सजाता हूं। उस पर कभी कानून गो आ गए, कभी तहसीलदार, तो कभी डिप्टी साहब का लश्कर आ गया, सब मेरे मेहमान होते हैं। अगर ना करूं तो नक्कू बनूं और सबकी आंखों में कांटा बन जाऊं। साल में 1200 मोदी को इस रसद खुराक के मद में देने पड़ते हैं, ये सब कहां से लावे? बस यही जी चाहता है कि छोड़कर निकल जाऊं, लेकिन हमें तो परमात्मा ने इसलिए बनाया है कि एक से रुपया सता कर लें और दूसरे को रो रो कर दें, यही हमारा काम है। तुम्हारे साथ इतनी रियायत कर रहा हूं, लेकिन तुम इतनी रियायत पर भी खुश नहीं होते तो हरी इच्छा। नजराने में 1 पैसे की भी रियायत ना होगी, 1 हफ्ते के अंदर रुपए दाखिल करोगे तो खेत जोतने पाओगे, नहीं तो नहीं, मैं कोई दूसरा प्रबंध कर लूंगा। गिरधारी उदास और निराश होकर घर आया, 100 रुपए का प्रबंध करना उसके काबू से बाहर था। सोचने लगा, अगर दोनों बैल बेच दूं तो खेत ही लेकर क्या करूंगा, घर बेचूं तो यहां लेने वाला ही कौन है, और फिर बाप दादू का नाम डूबता है। 4-5 पेड़ हैं, लेकिन उन्हें बेचकर 25 रुपए या 30 रुपए से अधिक ना मिलेंगे, उधार लूं तो देता कौन है? लेकिन बनिए के 50 रुपए सिर पर चढ़े हैं, वो 1 पैसा भी ना देगा, घर में गहने भी तो नहीं है, नहीं तो उन्हीं को बेचता। ले देकर एक हंसली बनवाई थी, वो भी बनिए के घर पड़ी है, साल भर हो गया, छुड़ाने की नौबत ना आई। गिरधारी और उसकी स्त्री सुभागी दोनों ही इसी चिंता में पड़े रहते, लेकिन कोई उपाय न सूझता था। गिरधारी को खाना पीना अच्छा ना लगता, रात को नींद ना आती, खेतों के निकलने का ध्यान आते ही उसके हृदय में हूक सी उठने लगती। हाय हाय, वो भूमि जिसे हमने वर्षों जोता, जिसे खाद से पाटा, जिसमें मेड़े रखी, जिसकी मेड़े बनाई, उसका मजा अब दूसरा उठाएगा। ये खेत गिरधारी के जीवन के अंश हो गए थे, उनकी 1-1 अंगुल भूमि उसके रक्त से रंगी हुई थी, उनका 1-1 परमाणु उसके पसीने से तर हो गया था। उनके नाम उसकी जिह्वा पर उसी तरह आते थे जिस तरह अपने 3 बच्चों के, कोई 24 था, कोई 22 था, कोई नाले वाला, कोई तलैया वाला। इन नामों के स्मरण होते ही खेतों का चित्र उसकी आंखों के सामने खींच जाता था, वो इन खेतों की चर्चा इस तरह करता मानो वे सजीव हैं, मानो उसके भले बुरे के साथी हैं। उसके जीवन की सारी आशाएं, सारी इच्छाएं, सारे मंसूबे, सारी मन की मिठाइयां, सारे हवाई किले इन्हीं खेतों पर अवलंबित थे। इनके बिना वो जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकता था, और वे ही अब हाथों से निकले जाते हैं। वो घबराकर घर से निकल जाता और घंटों उन्हीं खेतों की मेड़ों पर बैठा हुआ रोता, मानो उनसे विदा हो रहा हो। इस तरह 1 सप्ताह बीत गया और गिरधारी रुपए का बंदोबस्त ना कर सका। 8वें दिन उसे मालूम हुआ कि कालिका दीन ने 100 रुपए नजराने देकर 10 रुपए बीघे पर खेत ले लिए।
गिरधारी ने एक ठंडी सांस ली। एक क्षण बाद वो अपने दादा का नाम लेकर बिलख बिलख कर रोने लगा। उस दिन घर में चूल्हा नहीं जला। ऐसा मालूम होता था मनु हरखू आज ही मरा। लेकिन सुभागी यूं चुपचाप बैठने वाली स्त्री न थी। वो क्रोध से भरी कालिका दीन के घर गई और उसकी स्त्री को खूब लताड़ा। कल का बानी आज का सेठ खेत जोतने चले हैं, देखे मेरे खेत में कौन हल्ले जाता है, अपना और उसका लहू एक कर दूं। पड़ोसियों ने उसका पक्ष लिया। सब तो हैं, आपस में ये चढ़ाव ऊपरी नहीं करनी चाहिए। नारायण ने धन दिया तो क्या गरीबों को कुचलते फिरेंगे। सुभागी ने समझा मैंने मैदान मार लिया। उसका चित्त शांत हो गया। किंतु वही वायु जो पानी में लहरें पैदा करती है वृक्षों को जड़ से उखाड़ डालती है। सुभागी तो पड़ोसियों की पंचायत में अपने दुखड़े रोती और कालिका दीन की स्त्री से छेड़ छेड़ लड़ती। इधर गिरधारी अपने द्वार पर बैठा हुआ सोचता अब मेरा क्या हाल होगा, अब ये जीवन कैसे कटेगा, ये लड़के किसके द्वार पर जाएंगे। मजदूरी का विचार करते ही उसका हृदय व्याकुल हो जाता। इतने दिनों तक स्वाधीनता और सम्मान का सुख भोगने के बाद अधम चाकरी की शरण लेने के बदले वो मर जाना अच्छा समझता था। वो अब तक गृहस्थ था, उसकी गणना गांव के भले आदमियों में थी। उसे गांव के मामले में बोलने का अधिकार था। उसके घर में धन न था पर मान था। नाई बढ़ई कुम्हार पुरोहित भाट चौकीदार ये सब उसका मुंह ताकते थे। अब ये मर्यादा कहाँ, अब कौन उसकी बात पूछेगा, कौन उसके द्वार पर जाएगा। अब उसे किसी के बराबर बैठने का, किसी के बीच में बोलने का हक नहीं रहा। अब उसे पेट पालने के लिए दूसरों की गुलामी करनी पड़ेगी। अब पहर रात रहे कौन बैलों को नांद में लगाएगा। वो दिन अब कहां जब गीत गा गा कर हल चलाता था, चोटी का पसीना एड़ी तक आता था पर जरा भी थकावट ना आती थी। अपने लहलाते हुए खेतों को देखकर फूला ना समाता था। खलिहान में अनाज का ढेर सामने रखे अपने को राजा समझता था। अब अनाज के टोकरे भर भर कर कौन लाएगा, अब खत्ते कहां बखार कहां। यही सोचते सोचते गिरधारी की आंखों से आंसू की झड़ी लग जाती थी। गांव के दो चार सज्जन जो कालिका दीन से जलते थे कभी कभी गिरधारी को तसल्ली देने आया करते थे, पर वो उनसे भी खुलकर न बोलता। उसे मालूम होता था कि मैं सबकी नजर में गिर गया हूं। अगर कोई समझाता कि तुमने क्रियाकर्म में व्यर्थ इतने रुपए उड़ा दिए तो उसे बहुत दुख होता। वो अपने उस काम पर जरा भी ना पछताता। मेरे भाग्य में जो लिखा है वो होगा, पर दादा के ऋण से तो मैं उपऋण हो गया। उन्होंने अपनी जिंदगी में चार बार खिलाकर खाया, क्या मरने के पीछे उन्हें पिंडे पानी को तरसाता। इस प्रकार तीन मास बीत गए और आषाढ़ा पहुंचा। आकाश में घटाएं आई, पानी गिरा, किसान हल जुए ठीक करने लगे, बढ़ई हलों की मरम्मत करने लगा। गिरधारी पागल की तरह कभी घर के भीतर जाता, कभी बाहर आता, अपने हलों को निकाल निकाल देखता। उसकी मुठिया टूट गई है, इसकी फाल ढीली हो गई है, जुए में सैला नहीं है। ये देखते देखते वो एक क्षण अपने को भूल गया। दौड़ा हुआ बढ़ई के यहाँ गया और बोला, रज्जू मेरे हल बिगड़े हैं, चलो बना दो। रज्जू ने उसकी ओर करुणा भाव से देखा और अपना काम करने लगा। गिरधारी को होश आ गया, नींद से चौंक पड़ा, ग्लानी से उसका सिर झुक गया, आंखें भर आईं, चुपचाप घर चला आया। गांव के चारों ओर हलचल मची हुई थी। कोई सन के बीज खोजता फिरता था, कोई जमींदार के चौपाल से धान के बीज ले आता था, कहीं सलाह होती थी किस खेत में क्या बोना चाहिए, कहीं चर्चा होती थी कि पानी बहुत बरस गया, दो चार दिन ठहर कर बोना चाहिए। गिरधारी ये बातें सुनता और जलहीन मछली की तरह तड़पता था। एक दिन संध्या समय गिरधारी खड़ा अपने बैलों को खुजला रहा था कि मंगल सिंह आए और इधर उधर की बातें करके बोले, गोई को बांधकर कब तक खिलाओगे, निकाल क्यों नहीं देते। गिरधारी ने मलिन भाव से कहा, हां कोई ग्राहक आए तो निकाल दूं। एक ग्राहक तो हम ही है, हम ही को दे दो। गिरधारी अभी कुछ उत्तर न देने पाया था कि तुलसी बनिया आया और गरज कर बोला, गिरधारी तुम्हें रुपए देने हैं कि नहीं वैसा कहो, तीन महीने से हीला हवाला करते हो जाते हैं, अब कौन खेती करते हो कि तुम्हारी फसल को अगोरे बैठे रहे। गिरधारी ने दीनता से कहा, सा इतने दिनों जैसे माने हूं आज मान जाओ, कल तुम्हारी एक एक कौड़ी चुका दूंगा। मंगल और तुलसी ने इशारे में बात की और तुलसी भुनभुनाता हुआ चला गया। तब गिरधारी मंगल सिंह से बोला, तुम इन्हें ले लो तो घर के घर में ही रह जाएं, कभी कभी आंख से देख तो लिया करूंगा। मंगल बोला, मुझे अभी तो ऐसा कोई काम नहीं, लेकिन हाँ घर पर सलाह करूंगा, मुझे तुलसी के रुपए देने हैं, नहीं तो खिलाने को भूसा है।
ये बड़ा बदमाश है, कहीं नालिश न कर दे। सरल हृदय गिरधारी धमकी में आ गया। कार्यकुशल मंगल सिंह को सस्ता सौदा करने का ये अच्छा अवसर मिला। 80 रुपए की जोड़ी 60 रुपए में ठीक कर ली। गिरधारी ने अब तक बैलों को न जाने किस आशा से बांध कर खिलाया था, आज आशा का वो कल्पित सूत्र भी टूट गया। मंगल सिंह गिरधारी की खाट पर बैठे रुपए गिन रहे थे। गिरधारी बैलों के पास विषादमय नेत्रों से उनकी ओर ताक रहा था। आह, ये मेरे खेतों के कमाने वाले, मेरे जीवन के आधार, मेरे अन्नदाता, मेरी मान मर्यादा की रक्षा करने वाले, जिनके लिए पहर रात से उठकर छांटी काटता था, जिनके खली दाने की चिंता अपने खाने से ज्यादा रहती थी, जिनके लिए सारा घर दिन भर हरियाली उखाड़ा करता था। ये मेरी आशा की दो आंखें, मेरे इरादे के दो तारे, मेरे अच्छे दिनों के दो चिन्ह, मेरे दो हाथ, हम उससे विदा हो रहे हैं। अब मंगल सिंह ने रुपए गिनकर रख दिए और बैलों को ले चले। तब गिरधारी उनके कंधों पर सिर रखकर खूब फूट फूट कर रोया, जैसे कन्या मायके विदा होते समय माँ बाप के पैरों को नहीं छोड़ती, उसी तरह गिरधारी इन बैलों को न छोड़ता था। सुभागी भी दालान में खड़ी रो रही थी और छोटा लड़का मंगल सिंह को एक बांस की छड़ी से मार रहा था। रात को गिरधारी ने कुछ नहीं खाया, चारपाई पर पड़ा रहा। प्रातःकाल सुभागी चिलम भर कर ले आई तो चारपाई पर न था। उसने समझा कहीं गए होंगे, लेकिन जब 2-3 घड़ी दिन चढ़ाया और वो न लौटा तो उसने रोना धोना शुरू किया। गांव के लोग जमा हो गए, चारों ओर खोज होने लगी, पर गिरधारी का पता न चला। संध्या हो गई, अंधेरा छा रहा था। सुभागी ने दिया जलाकर रख दिया और बैठी द्वार की ओर ताक रही थी कि सहसा उसे पैरों की आहट मालूम हुई। सुभागी का हृदय धड़क उठा, वो दौड़कर बाहर आई और इधर उधर ताकने लगी। उसने देखा कि गिरधारी बैलों की नांद के पास सिर झुकाए खड़ा है। सुभागी बोल उठी, घर आओ, वहां खड़े क्या कर रहे हो, आज सारे दिन कहां रहे? ये कहती हुई वो गिरधारी की ओर चली। गिरधारी ने कुछ उत्तर न दिया, वो पीछे हटने लगा और थोड़ी दूर जाकर गायब हो गया। सुभागी चिल्लाई और मूर्छित होकर गिर पड़ी। दूसरे दिन कालिका दीन हल लेकर अपने खेत पर पहुंचे। अभी कुछ अंधेरा था, बैलों को हल में लगा रहे थे कि यकायक उन्होंने देखा कि गिरधारी खेत की मेड़ पर खड़ा है। वही मिर्जई, वही पगड़ी, वही सोंटा। कालिका दीन ने कहा, अरे गिरधारी, मर्दे आदमी तुम यहां खड़े हो और बेचारी सुभागी हैरान हो रही है, कहां से आ रहे हो? ये कहते हुए वो बैलों को छोड़कर गिरधारी की ओर चला। गिरधारी पीछे हटने लगा और पीछे वाले कुएं में कूद पड़ा। कालिका दीन ने चीख मारी और हल बैल छोड़कर भागा। सारे गांव में शोर मच गया और लोग नाना प्रकार की कल्पनाएं करने लगे। कालिका दीन को गिरधारी वाले खेतों में जाने की हिम्मत न पड़ी। गिरधारी को गायब हुए 6 महीने बीत चुके हैं। उसका बड़ा लड़का अब एक ईंट के भट्टे पर काम करता है और 20 रुपए महीना घर आता है। अब वो कमीज और अंग्रेजी जूता पहनता है। घर में दोनों जून तरकारी पकती है और जौ के बदले गेहूं खाया जाता है, लेकिन गांव में उसका कुछ भी आदर नहीं। अब ये मजदूर है। सुभागी अब पराए गांव में आए हुए कुत्ते की भांति दुबकती फिरती है। अब वो पंचायत में नहीं बैठती, अब वो मजदूर की माँ है। कालिका दीन ने गिरधारी के खेतों से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि गिरधारी अभी तक अपने खेतों के चारों तरफ मंडराया करता है। अंधेरा होते ही वो मेड़ पर आकर बैठ जाता है और कभी कभी रात को उधर से उसके रोने की आवाज सुनाई देती है। वो किसी से बोलता नहीं, किसी को छेड़ता नहीं, उसे केवल अपने खेतों को देखकर संतोष होता है। दिया जलने के बाद उधर का रास्ता बंद हो जाता है। लाला ओमकारनाथ बहुत चाहते हैं कि ये खेत उठ जाए, लेकिन गांव के लोग अब उन खेतों का नाम लेते डरते हैं।

0: सुनो कहानी में आपने आज सुनी मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी बलिदान। अपने अगले अंक में, अपने अगले एपिसोड में फिर किसी ऐसी ही कहानी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन।

0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम भारत भारती में हम आपको सुनवा रहे हैं गायन। फनकार हैं पंडित राजन साजन मिश्र।
2: एक प्राचीनतम राग से शुरू किया जाए जो ईश्वर की आराधना के लिए है, राग श्री। राग श्री का मतलब है विष्णु, श्री का मतलब है भगवान, और इसमें दो तीन रचनाएं हम लोग गाएंगे। पहली रचना झप ताल में है, 10 मात्रा, जिसके बोल हैं प्रभु के चरण कमल निस दिन सुमरिए।

0: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भारत भारती में गायन। कलाकार थे पंडित राजन साजन मिश्र। अब दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। देश का चैनल, देश के लिए।
1: अरे

0: मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार आदाब, मैं हूं पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: रेडियो आजाद हिंद के सभी सुनने वालों को फिनाज मसानी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। शाम के 5 बजे हैं, हमारी संध्याकालीन सभा आरंभ होती है। इस सभा में हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। शुभ संध्या। इस सभा की शुरुआत में आइए सुनते हैं कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 170 से वाचन। ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रा वरुण, देवता हैं इंद्र, छंद है वृहति, अनुष्टुप और त्रिष्टुप।
1: न नूनमस्ति नो श्वः कस्तद्वेद इदद्भुतम् अन्यस्य चित्तमभि संचरेण्य मुताधीतम् विनश्यति। इंद्र का कथन जो आज नहीं वो कल भी नहीं प्राप्त होगा, जो हुआ ही नहीं है उसे कैसे जाना जा सकता है। दूसरे का चित्त चलायमान है, अतः वह संकल्प करेगा तो भी बदल सकता है। किम न इंद्र जिघांससि भ्रातरो मरुतस्तव तेभिः कल्पस्व साधुया मा नः समरेण वधीः। अगस्त्य ऋषि कहते हैं कि हे इंद्रदेव, मुझ निरपराधी का वध आप क्यों करना चाहते हैं? मरुदगण आपके भाई हैं, आप उनके साथ यज्ञ के श्रेष्ठ भाग को प्राप्त करें। हे इंद्रदेव, हमें युद्ध क्षेत्र में हिंसित न करें। किम नो भ्रातरगस्त्य सखा सन्नति मन्यसे विद्मा हिते यथा मनोस्मभ्य मिन्न दित्ससि। हे भ्रातृस्वरूप अगस्त्य, आप हमारे मित्र होकर हमारा अपमान क्यों करते हैं? आपका मन जिस भावना से ग्रस्त है उसे हम भली प्रकार जानते हैं। आप हमारा भाग हमें नहीं देना चाहते हैं। अरम कृणवन्तु वेदिम समग्नि मिन्धताम पुरः तत्रा मृतस्य चेतनम यज्ञम ते तनवा वहै। याज्ञिक जन यज्ञ वेदिका को भली प्रकार सुसज्जित करें, उसमें सबसे पहले अग्नि को प्रज्वलित करें। वहां पर हम आपके निमित्त अमरत्व को जागृत करने वाली यज्ञीय भावनाओं को विस्तारित करें। त्वमीशि से वसुपते वसूनाम त्वम मित्राणाम मित्रपते धेष्ठः इंद्रत्वम मरुद्भिः सम वदस्वाध प्राशान ऋतुथा हवींषि। हे धनाधिपति इंद्रदेव, आप संपूर्ण धनों को अपने स्वामित्व में रखते हैं। हे मित्र रक्षक, आप मित्रों के विशेष धारण करने योग्य आश्रय हैं। हे इंद्रदेव, आप मरुदगणों के साथ सदव्यवहार करें और उनके साथ ऋतुओं के अनुसार हमारे द्वारा प्रदत्त आहुतियों का सेवन करें।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 170 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि का सूक्त 170 का वाचन।
2: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन।

0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी प्यार।

0: नमस्कार, मैं नितिन मुकेश। आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: न जी भर के देखा न कुछ

नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम भक्ति संगीत। श्रोताओं, स्वागत है आपका भक्ति संगीत की इस मधुर पीला में। भक्ति वो साधना है जो जीवन की हर उलझन को सरलता में बदल देती है। तो आइए आज की इस शुभ संध्या का शुभारंभ करते हैं इस मधुर भक्ति रचना के साथ।

जीवन में हमेशा परीक्षाएं और समस्याएं आती जाती रहेंगी, लेकिन परमेश्वर तुम्हें तुम्हारे जीवन में आने वाले तूफान से उबारेंगे और तुम्हें इस पार करने की शक्ति देंगे। बस अपने अंदर सकारात्मकता और धैर्य बनाए रखें।

एक व्यक्ति हर दिन ईश्वर से प्रार्थना करता था कि उसकी परेशानियां दूर हों। एक दिन उसे सपने में ईश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारी राह आसान नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें इतना मजबूत जरूर बना दूंगा कि हर राह आसान लगने लगे। सच तो है, प्रार्थना परिस्थितियां नहीं बदलती, प्रार्थना हमें बदल देती।

यह तो प्रकृति का नियम है कि प्रत्येक जीव को अपने द्वारा किए गए व्यवहार का फल अवश्य ही मिलता है। जो व्यवहार हम अपने साथ नहीं चाहते, वो व्यवहार हमें भी किसी भी जीव के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जैसा कर्म करेंगे उसका फल हमें अवश्य ही मिलता है।

आत्मविश्वास वो शक्ति है जो असंभव लगने वाले कार्य को भी संभव बना देती है। जो स्वयं पर विश्वास रखता है उसके लिए मार्ग स्वयं बनते जाते हैं।

और इन्हीं भक्ति रचनाओं के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम भक्ति संगीत अब यहीं समाप्त होता है। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है राजा मर्दन सिंह पर केंद्रित कार्यक्रम वतन का राग।

0: नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल, थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

सन 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम और स्वराज का आह्वान करता रानी लक्ष्मीबाई का एक पत्र, जिसमें वो कहती हैं, सुराज भव चाहिजे, योई सलाह पर डटो राने हैं, कैसे कि भारत अपुन को देश है, विदेशियों की गुलामी में रहबो अच्छो नहीं है, उनसे लड़बो अच्छो है। ये पत्र उन्होंने कालपी से बानपुर के राजा मर्दन सिंह को लिखा था, जो 1857 के महासमर में रानी लक्ष्मीबाई के विश्वसनीय सहयोगी थे। वतन का राग कार्यक्रम में आज चर्चा उन्हीं राजा मर्दन सिंह की। राजा मर्दन सिंह का जन्म सन 1799 में हुआ था। उनके पिता मोद प्रहलाद चंदेरी रियासत के राजा थे। उनकी माताजी का नाम राजकुमार था। मोद प्रहलाद के तीन पुत्र थे, मर्दन सिंह, राव गज सिंह और कुंवर रणजीत सिंह। चंदेरी राज्य में उस समय ललितपुर, बानपुर और ताल बेहट के किले थे। मर्दन सिंह बचपन से ही अत्यंत वीर और स्वाभिमानी थे। राजा मोद प्रहलाद आमोद प्रमोद में व्यस्त रहा करते थे। इसके साथ ही कुछ घटनाएं ऐसी हुईं कि उनके शत्रु बढ़ने लगे। इन असंतुष्ट लोगों ने ग्वालियर के सिंधिया के सेनानायक कर्नल जॉन बैप्टिस्ट को चंदेरी पर आक्रमण करने के लिए उकसाया। इस तरह सन 1811-12 में सिंधिया का कब्जा चंदेरी राज्य पर हो गया। राजा मोद प्रहलाद को भागना पड़ा, लेकिन मर्दन सिंह को इस घटना से बहुत आघात पहुंचा। उन्होंने अपने पिता से कहा कि भागने से काम नहीं चलेगा, हमें संघर्ष करके अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त करना होगा। इसके लिए मर्दन सिंह ने अपने समर्थक जुटाए। ओरछा का राजा महेंद्र विक्रमजीत सिंह अपने पड़ोस में सिंधिया का वर्चस्व नहीं चाहता था, इसलिए उसने भी मर्दन सिंह को समर्थन दिया। मर्दन सिंह ने ओरछा राजा की सहायता लेकर सिंधिया के राज्य में अशांति फैला दी। तंग आकर जॉन बैप्टिस्ट ने राजा मोद प्रहलाद से समझौते का मन बनाया। चंदेरी राज्य की तत्कालीन आय लगभग 5,30,000 रुपये थी। समझौता हुआ कि इस आय का एक तिहाई भाग राजा मोद प्रहलाद को दिया जाएगा और दो तिहाई भाग सिंधिया के पास रहेगा। चंदेरी राज्य के तीन किलों में से बानपुर का किला बंटवारे में राजा मोद प्रहलाद के हिस्से आया। इस तरह सन 1830 में राजा मोद प्रहलाद ने बानपुर को अपने राज्य की राजधानी बनाया। इस घटना से मर्दन सिंह की योग्यता साबित हो चुकी थी। सन 1842 तक मोद प्रहलाद ने बानपुर पर शासन किया और सन 1842 में उनकी मृत्यु के बाद राजा मर्दन सिंह बानपुर के राजा बने। उस समय सिंधिया ने उनके पास संदेश भेजा कि राज्यारोहण से पहले उन्हें कर्नल जॉन बैप्टिस्ट से अनुमति लेनी चाहिए। इस पर राजा मर्दन सिंह ने अपने पूर्वज राजा राम शाह का हवाला देते हुए जवाब भेजा कि राजा राम के पवित्र राज सिंहासन पर बैठने के लिए जनता ही स्वयं अभिषेक करती है, किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। राजा मर्दन सिंह के इस वक्तव्य ने भारत भूमि के प्रति उनके प्रेम को जता दिया था।

मर्दन सिंह बानपुर के राजा बन चुके थे, लेकिन वो चंदेरी वापस चाहते थे। इसके लिए वो लगातार प्रयास कर रहे थे। संयोग से ऐसी ही स्थिति शाहगढ़ रियासत के राजा बखतबली की भी थी। वो भी अपना गढ़ा कोटा इलाका वापस चाहते थे। उन दिनों उस क्षेत्र में डाकुओं का आतंक था, जिसे राजा मर्दन सिंह और राजा बखतबली समाप्त करना चाहते थे। डाकुओं को पकड़ने के अभियान में ही दोनों की भेंट हुई और दोनों एक दूसरे के सहयोगी बन गए। दोनों का एक ही लक्ष्य था कि किसी भी तरह अंग्रेजों को बुंदेलखंड से खदेड़ दिया जाए, ताकि चंदेरी पर राजा मर्दन सिंह का और गढ़ाकोटा पर राजा बखतबली का अधिकार हो सके। राजा बखतबली के पास 10 तोपें और 2000 सैनिक थे, जबकि राजा मर्दन सिंह के पास 5 तोपें और 1500 सैनिक थे। इस तरह दोनों के मिलने पर 15 तोपों और 3500 सैनिकों की शक्ति एकत्र हो गई। इससे दोनों राजाओं का हौसला बहुत अधिक बढ़ गया। चंदेरी विजय के लिए दोनों सेनाओं का संयुक्त अभियान अब आगे बढ़ा। उन्होंने न केवल चंदेरी पर विजय प्राप्त की, बल्कि ताल बेहट पर भी कब्जा कर लिया। राजा मर्दन सिंह को अपना चंदेरी इलाका मिल चुका था, लेकिन अभी इसके लिए अंग्रेजों से संघर्ष शेष था। उधर गढ़ाकोटा इलाका भी अंग्रेजों के नियंत्रण में था। इन परिस्थितियों में दोनों ये समझ चुके थे कि अंग्रेजों को बुंदेलखंड से भगाने के लिए देसी राजाओं, जागीरदारों आदि का सहयोग आवश्यक है। संगठित होकर ही अंग्रेजों से लोहा लिया जा सकता है। इस तरह दोनों ने सबको संगठित करने का प्रयास आरंभ किया। इसी बीच झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। राजा मर्दन सिंह शोक संवेदना प्रकट करने झांसी पहुंचे। यहां नाना साहेब, तात्या टोपे, राजा बखतबली आदि भी आए हुए थे। यहीं से सबने मिलकर अंग्रेजी राज के विरुद्ध व्यूह रचना तैयार की, क्योंकि ये सभी अंग्रेजी राज को समाप्त कर भारत का गौरव बहाल करना चाहते थे। इस तरह 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की पूर्व पीठिका तैयार हो चुकी थी। कानपुर में नाना साहेब, दिल्ली में बहादुर शाह जफर, अवध में बेगम हजरत महल और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई इसकी सूत्रधार बनी। राजा मर्दन सिंह से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का पत्राचार जारी था। राजा मर्दन सिंह राजा बखतबली के साथ मिलकर सागर में 1857 की क्रांति की व्यूह रचना तैयार कर चुके थे। अनेक जागीरदार, उवारीदार और सागर स्थित देसी पलटन के सिपाही उनके साथ थे। 10 मई 1857 को मेरठ से इस क्रांति का आरंभ हो गया और महीने भर के अंदर क्रांति की ये ज्वाला बुंदेलखंड के द्वार झांसी तक पहुंच गई। 12 जून को ये क्रांति ज्वाला ललितपुर में फैल गई। क्रांति की इस लहर का सागर तक पहुंचना तय हो चुका था और इस समाचार से सागर के अंग्रेज अधिकारी अत्यंत भयभीत हो गए। राजा मर्दन सिंह, राजा बखतबली और सागर स्थित 42वीं देसी पलटन के सैनिक बिल्कुल तैयार थे और उचित समय देखकर 1 जुलाई सन 1857 को सुबह 42वीं देसी पलटन के सीनियर सूबेदार रमजान ने सागर स्थित मस्जिद के द्वार पर रखे नगाड़े पर चोट करके बुलंद आवाज में सागर में 1857 की क्रांति का शंखनाद कर दिया।

1857 का महासमर प्रबल रूप लेता जा रहा था। अंग्रेजों को बाहर खदेड़ने का ये एक महाअभियान था। राजा मर्दन सिंह ने अंग्रेजों को भगाकर 9 जुलाई को खुरई पर अधिकार कर लिया। दूसरी तरफ इसी दिन राजा बखत बली ने बिनायका पर अधिकार कर लिया। 14 जुलाई को राजा मर्दन सिंह ने नरियावली पर आक्रमण किया और उसे अपने अधिकार में ले लिया। इस तरह क्रांति की लौ प्रचंड ज्वाला बन चुकी थी। राजा मर्दन सिंह अत्यंत सूझबूझ वाले पराक्रमी राजा थे। भारत में अंग्रेजी राज के इतिहास में अंग्रेजों को कभी इतना दबना नहीं पड़ा जितना वो सागर क्षेत्र में दबे। कुछ समय पहले बानपुर राजा मर्दन सिंह ने ललितपुर के डिप्टी कमिश्नर एसी गार्डन को एक ऐसे पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए भी मजबूर कर दिया था जिसमें लिखा था कि वो स्वेच्छा से ललितपुर जिले का प्रबंध राजा मर्दन सिंह को सौंप रहा है। कुल मिलाकर राजा मर्दन सिंह ने राजा बखत बली के साथ मिलकर 1857 की क्रांति को एक विकराल रूप दे दिया। अंग्रेज अत्यंत परेशान थे। राजा मर्दन सिंह की गतिविधियां रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। अंततः अंग्रेजों ने राजा मर्दन सिंह को पकड़वाने पर 8,000 रुपए और राजा बखत बली को पकड़वाने पर 10,000 रुपए इनाम की घोषणा की। और उधर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से अंग्रेजों का जबरदस्त संघर्ष जारी था। कुल मिलाकर अंग्रेजों को चारों ओर से प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था। इन परिस्थितियों में बुंदेलखंड में क्रांति के दमन का कार्य सर ह्यूरोज को सौंपा गया। ह्यूरोज ने राहतगढ़ पर नियंत्रण करके राजा मर्दन सिंह सहित सागर के अनेक क्रांतिकारियों पर अंकुश लगाया। ह्यूरोज जानता था कि राजा मर्दन सिंह और राजा बखत बली रानी लक्ष्मीबाई के संपर्क में हैं और वो हर हाल में रानी की सहायता करेंगे ही। इसीलिए उसने मेजर ओर को इन दोनों राजाओं के पीछे लगा रखा था। ह्यूरोज ने शाहगढ़ और बानपुर पर कब्जा करके अब झांसी की ओर बढ़ने की योजना बनाई। वो जानता था कि इस मार्ग में ये दोनों राजा अवरोध बनेंगे। उसने बहुत चालाकी से काम लिया। उसने तय किया कि वो नरहट घाटी छोड़कर मदनपुर घाटी से ही झांसी जाएगा और नरहट घाटी में एक छोटी सेना भेजकर राजा मर्दन सिंह को धोखे में रखेगा। राजा मर्दन सिंह को नरहट घाटी में ही उलझाकर उसने वास्तविक आक्रमण मदनपुर घाटी से किया। ह्यूरोज की सेना से राजा बखत बली ने जमकर संघर्ष किया। बखत बली को राजा मर्दन सिंह की प्रतीक्षा थी, लेकिन राजा मर्दन सिंह नरहट घाटी में उलझे रहे और राजा बखत बली पराजित हो गए। राजा मर्दन सिंह को जब ये सूचना मिली तो उन्होंने रानी को इस विश्वासघात की सूचना भिजवाई। जब रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर की ओर कूच किया तब उन्होंने राजा मर्दन सिंह को पत्र लिखकर कहा कि आप भी शाहगढ़ राजा बखत बली के साथ अंग्रेजों को खदेड़ते हुए ग्वालियर पहुंचिए, वहीं भेंट होगी। लेकिन स्थितियां बहुत बिगड़ चुकी थीं। ह्यूरोज की सेना चारों ओर बिखरी हुई थी। राजा मर्दन सिंह और राजा बखत बली ने दतिया नरेश से दतिया होकर ग्वालियर जाने की अनुमति मांगी और प्रस्थान भी किया, लेकिन रास्ते में ही उन्हें समाचार मिला कि 17 जून 1858 को अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए रानी लक्ष्मीबाई ने अपना जीवन बलिदान कर दिया है। ये सूचना पाकर दोनों राजा अत्यंत दुखी हुए। इसके बाद अंग्रेजों ने राजा मर्दन सिंह और राजा बखत बली को बंदी बनाकर लाहौर भेज दिया। यहां से राजा मर्दन सिंह को मथुरा जेल लाया गया। राजा मर्दन सिंह ने 21 साल तक जेल में कठोर यातनाएं सही, लेकिन वो झुके नहीं और न ही अंग्रेजों का कोई प्रलोभन उन्होंने स्वीकार किया। अंग्रेजों की क्रूरता सहते हुए 22 जुलाई 1879 को उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसे अमर बलिदानी को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार आदाब, मैं हूँ पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: रेडियो आजाद हिंद के सभी सुनने वालों को नाज मसानी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से।
2: इतिहास के पन्नों से, इतिहास के पन्नों। नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा, और एक बार फिर आज हम अपने कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से में गोंड राजवंश की बात करेंगे। लेकिन आज की हमारी ये कड़ी बहुत खास होने वाली है, क्योंकि हमने गोंड राजवंश की बात शुरू की थी गढ़ा मंडला से, उसके बाद हमने बात की देवगढ़ की, चंद्रपुर की, खेरेला की, और अपने पिछले एपिसोड में मकड़ाई की। इन सारी जगहों के बारे में, इन सारे राजवंशों के बारे में हमें जानकारी दी डॉक्टर पूजा सक्सेना ने, प्रसिद्ध पुरातत्वविद। पूजा जी एक बार फिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, हम उनका स्वागत करते हैं आप सभी की ओर से।
3: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: पूजा जी, आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, किस राजवंश की बात करेंगे, किस गोंड राजवंश की?
3: आज हम गिन्नौरगढ़ भोपाल के गोंड राजवंश की बात करेंगे।
2: आज की कड़ी खास क्यों है ये भी श्रोताओं को हमारे बता दीजिए।
3: हमने बहुत विस्तृत रूप से गोंड राजवंश के बारे में जाना और देखा कि कई सारे राजवंशों ने मध्य भारत पर शासन किया
2: जी।
3: और वो भी उस समय जब बहुत विपरीत परिस्थितियां थी। दिल्ली पर मुगलों का शासन था और लगातार संघर्ष जारी था। मुगल कोशिश कर रहे थे कि वह नर्मदा पार करके दक्कन में प्रवेश कर जाएं, क्योंकि दक्कन में उस समय जहाज के सारे जो खास पत्तन थे वो वहीं थे
2: जी।
3: तो यदि इस मध्य भारत से निकलने वाले व्यापारिक मार्ग पर जिसका भी अधिकार होगा वही राजस्व वसूलेगा।
2: बिल्कुल।
3: तो दिल्ली से लगातार मध्य भारत पर अटैक हो ही रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो जनजातियाँ थीं, जो कभी प्रत्यक्ष रूप में आकर शासन नहीं कर रही थीं, वो भी उस समय सामने आई और इस क्षेत्र को शासन किया और उसको बचाया
2: जी।
3: बाहरी आक्रांताओं से
2: जी जी।
3: तो बहुत सारे राजवंश तो हम देख ही चुके हैं
2: जी।
3: और इन राजवंशों की कड़ी में आखिरी कड़ी है गिन्नौरगढ़ भोपाल के गोंड राजवंश की। आपने नाम तो सुना ही होगा, रानी कमलापति।
2: बिल्कुल।
3: तो आज हम रानी कमलापति और उनके राजवंश के बारे में जानेंगे।
2: तो श्रोताओं, कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से में पिछले कई एपिसोड से हमारी जो श्रृंखला चल रही थी गोंड राजवंश के ऊपर, वो आज यहाँ पर समाप्त होने जा रही है। और जो समापन हो रहा है वो गिन्नौरगढ़ और भोपाल के गोंड राजवंश की जानकारी के साथ हो रहा है। तो पूजा जी, शुरू करते हैं, बस हमारे श्रोता बहुत बेकरार हैं आपको सुनने के लिए।
3: बिल्कुल, हमने ये इतिहास गढ़ा के गोंड मंडला से शुरू किया था। और जैसा कि हम जानते हैं कि नरई के युद्ध में रानी दुर्गावती ने प्राणोत्सर्ग किया और सर्वोच्च बलिदान दिया इस भूमि की रक्षा के लिए, और उसके परिणाम स्वरूप गढ़ा के गोंड मंडला राज्य को 10 गढ़ मुगल शासक अकबर को देने पड़े। लेकिन इस बात पर भी हमने चर्चा की है कि जल्दी ही अकबर ने भी ये 10 गढ़ जो थे वापस गोंडों को लौटा दिए। उसका कारण ये था कि ये बड़ा वनों से आच्छादित क्षेत्र है, खूब पशु हैं
2: जी।
3: और जनजातियों का इस क्षेत्र पर बहुत ही सुदृढ़ होल्ड रहा
2: जी,
3: है
2: जी।
3: तो अकबर के बस में नहीं था कि वो इस क्षेत्र को शासित कर पाता
2: जी। बिल्कुल,
3: ऐसे लिखित साक्ष्य हैं
2: जी।
3: तो अकबर ने जब ये 10 गढ़ लौटाए तो उन्होंने गढ़ा मंडला को ये गढ़ नहीं लौटाए, उन्होंने बल्कि जो स्थानीय गोंड प्रमुख थे
2: जी,
3: उनको ये गढ़ लौटा दिए।
2: अच्छा।
3: उसमें से जो गिन्नौरगढ़, भोपाल, बाड़ी, ये जो आसपास का क्षेत्र है जो आजकल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और उसके आसपास का क्षेत्र है, वहाँ के जो 4-5 गढ़ थे वो उन्होंने स्थानीय प्रमुखों को लौटाए।
2: अच्छा।
3: तो उसमें से जो सर्व प्रमुख गढ़ था वो था गिन्नौरगढ़ का किला। ये किला भोपाल से दक्षिण दिशा में लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है और जिला सीहोर में आता है।
2: अच्छा।
3: तो ये किला जो था ये व्यापारिक मार्ग पर था, भोपाल से या विदिशा से आप नर्मदापुरम की तरफ जा रहे हैं
2: जी जी,
3: नर्मदा क्रॉस करने के लिए, तो बड़ा ही एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट बनता था गिन्नौरगढ़
2: जी।
3: तो वहां पर एक प्राचीन किला हुआ करता था परमारों का, क्योंकि इस किले में आज भी परमारों, प्रतिहारों के, मंदिरों के बहुत से अवशेष हैं।
2: अच्छा।
3: तो ये कोई पुराना किला रहा होगा बाद में फिर उसी किले पर, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो स्थानीय सेनानायक होते थे या किलेदार हुआ करते थे वो स्थानीय गोंड हुआ करते थे, तो जब परमारों का शासन समाप्त हुआ तो उन्हीं गोंडों ने फिर वहां पर शासन स्थापित किया। तो गिन्नौरगढ़ पर भी कोई गोंड रहे होंगे, हालांकि शुरू का इतिहास स्पष्ट नहीं है, मिलता नहीं है लिखित इतिहास। तो ये जो किला था बड़ी सामरिक पोजीशन पर था, हमको 1720 के आसपास का इतिहास मिलना शुरू होता है। तो एक नाम आता है निजाम शाह।
2: अच्छा,
3: तो गिन्नौरगढ़ का शासक था निजाम शाह। उस समय निजाम जैसे जो नाम थे वो टाइटल के रूप में दिए जाते थे, तो संभवतः वो उनका टाइटल रहा होगा। जैसा अपन ने पहले भी चर्चा की थी कि शाही सरनेम हुआ करता था
2: जी।
3: निजाम शाही वो बाद में लिखते लिखते शाह हो गया।
2: अच्छा,
3: तो निजाम शाह का इतिहास हमें मिलता है
2: जी।
3: और इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें तो हमें दिखाई देता है कि उनकी जो अदावत थी वो अपने ही रिश्ते के भाई से थी, और उनके भाई का नाम था आलम शाह। तो आलम शाह को चैनपुर बाड़ी में भी एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था जसवंत सिंह।
2: अच्छा।
3: तो जसवंत सिंह ने किसी बात पर भड़काया निजाम शाह के खिलाफ।
2: अच्छा।
3: और आलम शाह इतना भड़क गया कि उसने निजाम शाह की धोखे से हत्या कर दी।
2: ओ।
3: तो जब निजाम शाह की मृत्यु हो गई उसके बाद उनकी जो रानी थी, रानी कमलापति वो थी, और उनका एक अल्पवयस्क बेटा था नवल शाह।
2: अच्छा।
3: तो वो दोनों थे। तो अब जो है शासन का भार आ गया नवल शाह पर, लेकिन नवल शाह क्योंकि बालिग नहीं थे तो शासन संभाला रानी कमलापति ने।
2: अच्छा।
3: अब दो केंद्र बने गिन्नौरगढ़ के
2: जी।
3: एक तो है गिन्नौरगढ़ का किला
2: जी,
3: और दूसरा भोपाल में उनका ही एक छोटा सा किला हुआ करता था जिसे आज रानी कमलापति का महल या पुराना किला या किला कोहना के नाम से भी जानते हैं
2: जी, जी, जी।
3: तो यहाँ दोनों केंद्र स्थापित हुए। तो रानी को ज्यादा ठीक लगा कि वो भोपाल से शासन करें, उन्होंने अपना केंद्र स्थानांतरित करके भोपाल का जो किला था उनका वो कर लिया
2: जी।
3: तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 1720 के आसपास तक रानी कमलापति ने अपना शासन संचालित करना आरंभ कर दिया।
2: पूजा जी, जैसे कि आपने बताया कि रानी कमलापति ने अपने शासन करने के लिए भोपाल को चुना, जो कि गिन्नौरगढ़ से जब आज 60 किलोमीटर दूर है तो तब तो परिस्थितियां और काफी दुर्गम रही होंगी, तो किस तरीके से, क्योंकि बड़ा किला तो गिन्नौरगढ़ का था, तो वहां किस तरह से शासन किया और गिन्नौरगढ़ के किले की क्या क्या खासियतें हैं ये हम आपसे जानना चाहेंगे।
3: गिन्नौरगढ़ का किला जैसे मैंने कहा कि व्यापारिक मार्ग पर था
2: जी,
3: और बड़ी सामरिक स्थिति रही होगी उसकी
2: जी।
3: तो ये भी एक बड़ी ऊंची पहाड़ी पर है, और आजकल तो ये जो क्षेत्र है रातापानी अभ्यारण कहलाता है
2: जी।
3: और देलावाड़ी चेक पोस्ट बनती है, तो आज तो जाना भी बड़ा दुर्गम है वहां तक पहुंचना, क्योंकि रिजर्व फॉरेस्ट है तो पशुओं की संख्या भी बहुत अधिक है। तो उस समय भी दुर्गम रहा होगा, किले तो दुर्गम स्थानों पर ही बनाए जाते थे। तो ये जैसा हम पहले भी कहते आए हैं कि गोंडों का एक तरीका था किले निर्माण का, तो यहाँ पर भी बहुत ऊंची पहाड़ी है एक, और आप दूर से ऐसे देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि किले की ऊंची ऊंची दीवारें आप चारों तरफ से देख रहे हैं, जबकि वो दीवारें नहीं है, किले की जो पहाड़ी है उसका कुछ टेक्चर ऐसा है, ये बालुकाश्म सेडिमेंटरी रॉक्स हैं, कुछ इस तरीके का टेक्चर है कि दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि बड़ी ऊंची दीवारें बनी हुई है।
2: अच्छा।
3: जबकि वो आपको पहाड़ी का सरफेस दिखाई देता है, लेकिन किले की पहाड़ी पर दो प्राकृतिक तालाब भी हैं
2: जी, जैसे तो कि ज्यादातर गोंड राजवंशों के किले में होता है
3: जी। हाँ, पानी की आवश्यकता तो होगी
2: जी।
3: तो यहाँ दो तालाब हैं। तो किले का जो मुख्य प्रवेश द्वार है उत्तर दिशा में है, और हमने जैसे पहले भी बात की है कि तीन ओर से पहाड़ी जो है वो खड़ी हो, ऐसी ढलान वाली पहाड़ी देखी जाती थी
2: जी।
3: तो इसमें भी ऐसा ही है जिससे शत्रुओं का एकदम से आगमन ना हो पाए
2: जी।
3: और इस पहाड़ी के चारों ओर खाई भी रही होगी, ऐसे भी प्रमाण हैं। और जहाँ उत्तर की ओर मुख्य द्वार है उस तरफ तो खाई की गहराई ज्यादा है, चौड़ाई भी ज्यादा है
2: जी।
3: अब तो पानी नहीं है, लेकिन उस समय पानी रहा करता होगा, और एक पर्टिकुलर पॉइंट से जो है वो ब्रिज डालते होंगे जिसको क्रॉस करके फिर आप उस पहाड़ी के
2: उस पार जा सकते हैं जी, जी।
3: तो इस तरीके से इसका संयोजन है सुरक्षा की दृष्टि से, और चारों तरफ बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं। एक पहाड़ी का नाम तो है अशर्फी पहाड़ी।
2: अच्छा।
3: हाँ, और अशर्फी पहाड़ी की एक कहानी भी है। लोग कहते हैं कि जब गिन्नौरगढ़ का किला था उस समय कुछ निर्माण कार्य हो रहा था
2: जी,
3: तो मिट्टी की जरूरत थी, तो लोग कहते हैं कि राजा ने कहलवाया कि जो भी एक टोकरी मिट्टी लाएगा, उसके बदले में एक अशर्फी मिलेगी।
2: अच्छा।
3: तो लोग लाके उस जो मुख्य पहाड़ी है उसके पास में मिट्टी इकट्ठी करने लगे, तो उनको बदले में एक टोकरी के एक अशर्फी मिलती। और यहाँ तो पूरा अंबारी लग गया मिट्टी का, तो वो कहते हैं कि अशर्फी पहाड़ी ऐसे नाम पड़ा।
2: अच्छा।
3: तो किला है, किले में ऊपर कई सारे महल हैं और एक हमाम है।
2: अच्छा।
3: तो महल बहुत खूबसूरत है, और आपने अगर भोपाल में देखा होगा मध्य प्रदेश टूरिज्म का एक होटल है, उसका जो एंट्रेंस गेट बनाया है वो इसी स्थापत्य से, जो किले में महल है, गोंड महल है, उसका जो एंट्रेंस है उससे प्रभावित होकर बनाया है।
2: अच्छा।
3: तो हाँ, पर ये जो महल है इसमें कई सारे कमरे हैं, बहुत खूबसूरत ब्रैकेट्स हैं, काफी टूट भी गया है
2: जी।
3: लेकिन इस महल का जो हमाम का भाग है वो अभी भी बचा हुआ है।
2: अच्छा।
3: और ये हमाम कैसा है, स्टीम बाथ है, यानी कि भट्टी से तलघर में
2: जी,
3: पानी को गर्म करते हैं टंकी के, और फिर पूरे कमरे में वाष्प फैल जाती है, स्टीम फैल जाती
2: जी,
3: है
2: जी।
3: तो उसका अपनी एक टेक्निक है इस हमाम पर, फिर आगे कभी हम लोग बात करेंगे। लेकिन ये हमाम बड़ा ही खूबसूरत है, खासकर जो इसकी छत है, अंदरूनी छत जो है उस पर बहुत सुंदर स्टको वर्क किया हुआ है, चूने से बड़ा सुंदर काम है। फिर उसके ऊपर पेंटिंग भी है लाल पीले नीले रंग से, तो बड़ी खूबसूरत लगता है ये जो हमाम है। कुछ समय पहले तक तो कहते हैं कि क्योंकि ये पूरा वन क्षेत्र है तो यहाँ पर टाइगर भी रहा करता था आके, फिर अभी आजकल तो नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर काफी सुरक्षा के साथ में वन विभाग जो है वो गिन्नौरगढ़ के किले तक जाने देता है
2: जी, जी।
3: तो ऐसा ये गिन्नौरगढ़ का किला है, और दूर दूर तक बड़ा स्पष्ट नजर आता है, तो शत्रुओं पर जो नजर रखी जा सकती है वो यहाँ से का बड़ा अच्छा प्रबंध इन्होंने किया हुआ है।
2: निश्चित रूप से बहुत बिल्कुल वन आच्छादित पूरा क्षेत्र है, और सलकनपुर जाते समय ये जगह पड़ती है, बिल्कुल सलकनपुर से बहुत बिल्कुल थोड़ी से पहले।
3: हाँ, और इसी मार्ग पर आगे जाएं तो पान गुड़ारिया है।
2: अच्छा।
3: हाँ, क्योंकि हम पहले से ही ये बात कह रहे हैं कि व्यापारिक मार्ग बड़े महत्वपूर्ण हुआ करते थे, तो सम्राट अशोक जो कि गोंड काल से तो लगभग 1700-1800 साल पहले हुए हैं, वो भी इस मार्ग से गुजरे होंगे, क्योंकि जहां आपने सलकनपुर बोला, गिन्नौरगढ़ बोला, उसके पास में ही एक साइट है पान गुड़ारिया, वहां पर दो शिलालेख हैं अशोक के, एक जब वो राजा बने उससे पहले का और एक जब वो राजा बन गए उसके बाद का, तो इतना महत्वपूर्ण ये क्षेत्र रहा होगा
2: जी। और पूजा जी, जो भोपाल में रानी कमलापति का महल कहलाता है वो उस समय किस तरह का था?
3: हाँ, ये तो बहुत ही सुंदर महल है
2: जी,
3: महल सुंदर है और रानी भी बड़ी सुंदर थी। तो ये जो महल है वो भोपाल तालाब के आसपास ही बनाया गया था, और हम जैसे पहले से कहते आ रहे हैं कि जो गोंड किले हैं वो पहाड़ी के ऊपर समतल स्थान पर नहीं होते, बल्कि जो पहाड़ी की ढलान होती है उसका उपयोग करते हुए बनाते हैं
2: जी।
3: तो यहाँ क्या हुआ भोपाल में कि पहाड़ी तो थी नहीं किला बनाने के लिए, जो स्थान उन्होंने चुना, तो स्थान कौन सा चुना, जहां पर परमार काल का एक बांध था। ये बांध राजा भोज के द्वारा बनाया गया था कोलास नदी के पानी को नियंत्रित करने के लिए, जिसके कारण भोपाल का बड़ा तालाब बना
2: जी, बिल्कुल।
3: तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर इसी बांध का उपयोग किया, तो बांध की भी जो ढलान है उसी पर ही महल बना लिया, तो नीचे बांध है
2: जी, जी।
3: और उसी को नींव की तरह उपयोग करते हुए कई मंजिला महल बनाया। अभी किले की दो मंजिलें हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं और तीन मंजिलें थोड़ा सा छुपी हुई सी दिखाई देती हैं, और भोपालियों की आप माने तो अभी तो सात मंजिलें और डूबी हुई हैं।
2: अच्छा।
3: हाँ, जिस तरफ छोटा तालाब है वहाँ भोपाली मानते हैं कि सात मंजिलें और डूबी हुई हैं, यानी कि अभी पांच मंजिल तो हमको दिख रही है, सात मंजिल और डूबी हुई है। और ये संभव भी हो सकता है, कह नहीं सकते। एक मंजिल तो डूबी हुई है, जब मैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए रानी कमलापति के महल का डॉक्यूमेंटेशन कार्य कर रही थी तब मैं नाव से उस तरफ गई थी।
2: अच्छा।
3: और मैंने देखा कि हाँ, एक मंजिल तो डूबी हुई दिख रही है। अब सात मंजिल है कि नहीं ये तो नहीं मालूम। हाँ, ये जरूर है कि जब रानी कमलापति रही होंगी उस समय ये शायद बगिया रही होगी, जहाँ आज छोटा तालाब है।
2: अच्छा।
3: बांध के दूसरी तरफ
2: जी, जी।
3: तो क्योंकि खसरा में अगर देखिए तो आज भी ये गिन्नौरी बगिया कहलाता है
2: जी, जी, जी।
3: तो हो सकता है, क्योंकि ये जो तालाब है, छोटा तालाब, ये बाद में बना
2: जी।
3: तो इस स्थान पर बगिया रही होगी, इसलिए हो संभव है कि कुछ मंजिलें और नीचे होंगी।
2: अच्छा।
3: और एक और चीज ध्यान देने वाली बात है कि जो मुख्य किला है उसका नाम है गिन्नौरगढ़
2: जी,
3: गिन्नी
2: जी,
3: है ना
2: जी,
3: गिन्नी यानी पैसा,
2: बिल्कुल,
3: तो गिन्नौरगढ़। और ये जो क्षेत्र कहलाता है जहाँ रानी कमलापति का महल है, इसको कहते हैं गिन्नौरी बगिया या गिन्नौरी तलैया। तो वो गिन्नौरी गिन्नौरी हमको बहुत सारी चीजें इस तरीके की दिख रही है।
2: तो पूजा जी, ये जो गिन्नौरगढ़ गिन्नौरी, ये महज इत्तेफाक था या कोई इसके पीछे कोई कारण भी था?
3: ऐसा स्पष्ट ज्ञात तो नहीं है कि किसके पीछे क्या कारण था कि इस तरीके के नाम आ रहे हैं, गिन्नौर गिन्नौरी
2: जी,
3: और इधर अशरफी जी, जी, जी, नाम है, उस समय कुछ प्रचलन में रहा होगा। पर ये जो रानी कमलापति का महल है
2: जी,
3: ये आज राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है।
2: अच्छा।
3: और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसको संरक्षित करता है। आज तो किले का बहुत छोटा सा हिस्सा ही बाकी है, जैसा कि मैंने बताया कि बांध है और बांध के ऊपर गोंड महल है जिसकी 5 मंजिलें आज भी हैं।
2: जी जी।
3: लेकिन ये किला बहुत बड़ा था। अगर हम आज भोपाल के बड़े तालाब और छोटे तालाब के किनारे को ध्यान से देखें तो हमको कई सारे बुर्ज दिखाई देते हैं।
2: जी।
3: एक बुर्ज पर तो आपने शायद देखा भी होगा, राजा भोज की प्रतिमा खड़ी
2: बिल्कुल,
3: है
2: बिल्कुल।
3: वो भी गोंड किले का ही एक भाग है।
2: अच्छा।
3: गोंड किले की ही एक बुर्ज है। तो इस तरीके की कई बुर्ज थी और दीवारें भी थी। आपने ये भी जरूर देखा होगा कि जब बड़े तालाब में पानी कुछ कम होता है तो एक दीवार भी तालाब के अंदर जाती हुई स्पष्ट दिखाई देती
2: जी,
3: है। तो ये भी क्या है कि जो गोंड किला था उसकी दीवार है। तो कई सारे बुर्ज और दीवारें छोटे तालाब और बड़े तालाब को घेरते हुए ये पूरा गोंड किला बनाते थे
2: जी, जी।
3: और जो बड़े तालाब का बहुत सारा हिस्सा है वो किले के अंदर आता था।
2: अच्छा।
3: जी हाँ। तो ये सुरक्षा प्रदान करता था रानी कमलापति के महल को।
2: और ये कितना खूबसूरत रहा होगा कि किले के अंदर ही इतना समंदर सा तालाब उनके यहाँ पर रहा होगा।
3: जी हाँ। और अगर आप महल के अंदर देखें तो वहाँ पर भी जल व्यवस्था बड़ी अच्छी है।
2: अच्छा।
3: हमने डॉक्यूमेंटेशन के दौरान देखा कि दीवारों के अंदर टेराकोटा पाइपलाइन है।
2: अच्छा।
3: और जो रानी कमलापति का महल है उसके ठीक पास में एक भवन है जिसका नाम है पंचक्की।
2: अच्छा।
3: हाँ, अगर आप भोपालियों से कभी पूछेंगे तो कहेंगे कि यहाँ पर गेहूं पीसने की चक्की हुआ करती थी। तो असल में पुराने जमाने में चक्की जब चलती थी तो उसमें गेहूं भी पिस जाता था और पानी को लिफ्ट करने का भी वो काम आता था
2: जी।
3: तो हम देख रहे हैं कि 17वीं-18वीं शताब्दी में यहाँ लिफ्ट करने के लिए एक पूरी पंचक्की लगी हुई थी और छत के ऊपर टैंक है,
2: वहां तक पानी महल पहुंचा के, हाँ, थी,
3: जी हाँ, महल के छत पर टैंक है और उस टैंक तक पानी पहुंचाने के लिए पंचक्की लगी होगी और फिर दीवारों से में जो पाइपलाइंस थी
2: जी, जी।
3: उनके जरिए जो है यहाँ पर पानी पहुंचाया जाता होगा और कमलापति के महल में फव्वारा भी है।
2: अच्छा।
3: तो ये बड़ा खूबसूरत दिखाई देता होगा, फव्वारा चलता होगा। और मैंने तो यहाँ तक देखा है कि रानी कमलापति के महल का एक हिस्सा है जो बिल्कुल छोटे तालाब के किनारे पर है
2: जी।
3: वहां पर तो उस कक्ष के छत पर इस तरीके का इंतजाम है कि कमरे के बाहर कुछ इस तरीके का नजारा कृत्रिम रूप से तैयार किया गया था कि छत से बारिश का पानी गिर रहा है, इस तरीके का एक दृश्य आर्टिफिशियली उत्पन्न किया जाता था। उसके लिए कई सारी पाइपलाइंस डाली गई हैं, टैंक डाले गए हैं, तो बड़ा ही सुंदर दिखाई देता होगा।
2: तो गोंड, देखिए, राजवंशों की बात हो रही है, आज हम अपनी अंतिम कड़ी तक आ पहुंचे हैं और आज हम बात कर रहे हैं गिन्नौरगढ़ की और भोपाल की रानी कमलापति की। पूजा जी, क्योंकि समय की भी कमी है, आपसे अब ये जानना चाहेंगे कि रानी कमलापति का शासनकाल बहुत ज़्यादा लंबा तो रहा नहीं है और फिर ये कहा जाता है कि उन्होंने छोटे तालाब में कूद कर अपनी जान दे दी थी, तो क्या ये बात सच है और ऐसा उन्होंने किया क्यों?
3: जी हाँ, रानी कमलापति ने भोपाल राज्य की अस्मिता के लिए आत्मोत्सर्ग किया था। हम देखते हैं कि सन 1707 में मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु हो गई।
2: हाँ।
3: और जैसे ही उनकी मृत्यु हुई तो उनके जितने भी सिपासालार सेनापति थे उन सबको लगा कि अब ये मुगल शासन बहुत समय तक रहेगा नहीं। और सुदृढ़ तो बिल्कुल नहीं रहेगा। तो उनमें से अनेक लोगों ने यह प्रयास किया कि वो कहीं और जाके अपनी शासन स्थापित कर लें। तो उसमें ही एक नाम आता है सरदार दोस्त मोहम्मद का।
2: अच्छा।
3: ये जो सरदार दोस्त मोहम्मद था ये अफगानिस्तान से आया था, तिराह नाम की एक जगह है।
2: अच्छा।
3: वहां से तो ये यहाँ पर रोजगार ढूंढता हुआ पंजाब पहुंचा। लेकिन क्योंकि इसकी प्रवृत्ति बहुत अच्छी नहीं थी
2: जी।
3: तो जब ये पंजाब पहुंचा तो अपने बहनों ही क्या रहता था, बहन क्या
2: जी।
3: क्योंकि बहुत गुस्सैल था, किसी बात पर उसका झगड़ा हुआ और जिसने उसे प्रश्रय दिया था उसी की हत्या करके वहां से भाग गया। और भाग कर फिर पहुंचा दिल्ली।
2: अच्छा।
3: और दिल्ली तक पहुंचते हुए भी उसने अनेक ऐसी हरकतें की और फिर आखिरकार जुगाड़ लगाकर वो औरंगजेब की सेना में भर्ती हो गया।
2: अच्छा।
3: और एक युद्ध के सिलसिले में उसको मालवा आने को मिला।
2: जी जी।
3: तो जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो दोस्त मोहम्मद को लगा कि मालवा जाना ज्यादा ठीक है, वहां वह कुछ अपने लिए कर सकता है
2: जी।
3: तो वो मालवा की तरफ आया। पर कुछ समय मालवा में गुजारने के बाद फिर वो, क्योंकि वो रोजगार की तलाश में तो था ही, तो भोपाल के पास एक रियासत हुआ करती थी मंगलगढ़।
2: अच्छा।
3: वहां के राजा थे आनंद सिंह
2: जी।
3: तो वहां पर वो रोजगार के लिए पहुंच गया
2: जी,
3: और
2: जी।
3: उसे मिल भी गया काम। धीरे धीरे उसने वहां पर सभी को अपने भरोसे में ले लिया
2: जी।
3: और राजा रानी का तो जैसे वो बेटा ही बन गया। राजा रानी उस पर बहुत भरोसा करने लगे। और एक बार की घटना है कि राजा युद्ध के लिए गए और फिर वो लौटे ही नहीं, उनकी संदेहास्पद स्थिति में मृत्यु हो गई।
2: अच्छा।
3: जिसका शक जो है वो दोस्त मोहम्मद पर जाता है। और जब मृत्यु की खबर आई तो दोस्त मोहम्मद तो इस ताक में था ही कि वो कैसे मंगलगढ़ को धोखा देता है, कैसे उनकी संपत्ति लूटता है
2: जी।
3: और फिर उसने वहां पर भी सारी विपरीत स्थितियां खड़ी की, रानी की भी मृत्यु हो गई और उसने फिर वहां मंगलगढ़ का सारा खजाना लूट लिया। और उस खजाने को लूट कर वो भोपाल की तरफ आया।
2: अच्छा।
3: तो यहाँ भोपाल में एक जगह का नाम है सरसिया, जिसको आजकल बैरसिया बोलते हैं।
2: बैरसिया का पहले नाम सरसिया था।
3: हाँ जी हाँ। तो उसने सरसिया को लीज पर लिया, क्योंकि जो पैसे वहां से लूटे थे
2: जी, जी, जी।
3: उन पैसों से उसने सरसिया को लीज पर ले लिया
2: जी।
3: तो एक जगह उसके पास हो गई जहां पर उसने लूट का सामान भी रखा
2: जी।
3: और उसके बाद फिर वो ढूंढने लगा कि अब मैं क्या करूं
2: जी।
3: तो भोपाल के पास एक जगह है जगदीशपुर
2: जी, जी।
3: वहां पर देवड़ा राजपूतों का शासन था।
2: अच्छा।
3: तो उसने उनको भी कुछ धोखा देकर और राजा की हत्या कर दी और जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया
2: जी।
3: और बाद में इसी जगदीशपुर का नाम बदलकर उसने इस्लाम नगर किया और अभी कुछ ही समय पूर्व वापस इसका नाम जगदीशपुर कर दिया गया। तो इस तरीके से वो भोपाल के आसपास उसने अपनी सत्ता स्थापित कर ली
2: जी।
3: अब उसकी नजर जो थी वो भोपाल के गोंड राज्य पर थी
2: जी।
3: तो वो कई प्रयास करता रहा पर सफलता हाथ नहीं लग रही थी। आखिरकार उसने पूरी एक अच्छी सेना इकट्ठी की
2: जी।
3: और गिन्नौरगढ़ के राज्य पर हमला बोल दिया
2: जी।
3: तो उस समय नवल शाह जो थे उनकी आयु बहुत कम थी
2: जी।
3: पर वह युद्ध के लिए आगे गए।
2: अच्छा।
3: और कहते हैं कि नवल शाह और दोस्त मोहम्मद के बीच में जो आजकल भोपाल में बैरागढ़ कहलाता है
2: जी जी।
3: है ना, वहाँ बैरागढ़ के पास, सॉरी, जो आजकल भोपाल में लाल घाटी कहलाता है
2: जी।
3: वहां पर युद्ध हुआ।
2: अच्छा।
3: और जैसा कि तय था कि अगर नवल शाह युद्ध में विजय नहीं प्राप्त करते हैं तो फिर वहाँ उनकी सेना धुआं करेगी और यहाँ कुछ किलोमीटर की दूरी पर रानी कमलापति का जो महल है वहां पर ये सूचना मिल जाएगी
2: जी।
3: तो ऐसा ही हुआ। नवल शाह बड़ी वीरता के साथ दोस्त मोहम्मद से लड़े
2: जी।
3: और आखिरकार युद्ध में वह विजय प्राप्त नहीं कर सके और वहाँ लाल घाटी में धुआं किया गया
2: जी।
3: और यहाँ पर जब रानी को ये सूचना मिली कि अब दोस्त मोहम्मद गोंड महल में प्रवेश कर जाएगा
2: जी।
3: और भोपाल की अस्मिता को चोट पहुंचेगी, तो रानी कमलापति ने निर्णय लिया कि वे प्राणोत्सर्ग करके अपने राज्य की अस्मिता की रक्षा करेंगी। और जैसा कि हम सुनते हैं कि उन्होंने अपने महल के पूर्वी ओर जो छोटा तालाब है वहां पर जल समाधि ले ली
2: जी।
3: और आज भी उनकी स्मृति में उस क्षेत्र को बड़े सम्मान के साथ देखा जाता है
2: जी। आज उस क्षेत्र में रानी कमलापति की वहां प्रतिमा भी लगाई गई है, स्थापित की गई
3: जी। हाँ, रानी कमलापति ने भोपाल राज्य के लिए जो सर्वोच्च बलिदान दिया उसके प्रति हम सब नतमस्तक हैं
2: जी।
3: और उन्हीं को सम्मान देते हुए हमने अपने नए रेलवे स्टेशन का नाम भी रानी कमलापति के नाम पर रखा है।
2: के नाम पर रखा है जी। हाँ, बिल्कुल। देखिए, हम सभी नतमस्तक हैं, चाहे वो वीरांगना रानी दुर्गावती हो या रानी कमलापति। गोंड राजवंश का बहुत बड़ा योगदान रहा है मध्य भारत की तरक्की में, मध्य प्रदेश की तरक्की में, हमारे प्रदेश की तरक्की में। और कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से में ये जानकारी हमें दी है पूजा जी ने, पूजा सक्सेना जी ने, प्रसिद्ध पुरातत्वविद। आप सभी श्रोताओं की ओर से एक बार फिर से हम बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं पूजा जी को। आज गोंड राजवंश श्रृंखला की ये हमारी अंतिम कड़ी थी। अगली बार आपको किसी और विषय के बारे में जानकारी देंगे इसी कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम हमारा जारी रहेगा, लेकिन आज इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की परिकल्पना और निर्देशन का श्रेय जाता है सुश्री अदिति गौड़ को। ध्वनि अंकन और ध्वनि संपादन किया अमित कुंदानी ने। तो अब अपने रेडियो मित्र संदीप शर्मा को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से। 90.8 MHz पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल, देश के लिए।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है। खुलकर

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: यह है रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज और आप ध्रुव संगारी बिलाल चिश्ती को इस पे सुन रहे हैं। रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। अब समय हो गया है तकनीकी की जानकारी से परिपूर्ण कार्यक्रम टेक गुरु का। तकनीक हमारे जीवन का मुख्य आधार बन गई है। इसका सही तरीके से किया गया प्रयोग हमारे जीवन को सुखद बना सकता है। चाहे मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, नेट हो, तकनीक से हम सभी जुड़े हुए हैं और हमारे इस कार्यक्रम में आपको बहुत सी रोचक बातों से भी अवगत कराया जाता रहा है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे वृद्ध जनों के लिए डिजिटल सुरक्षा की। वर्तमान में साइबर सिक्योरिटी की बारीकियों से तो युवा कहीं हद तक परिचित है, पर हमारे बुजुर्ग या कहें वरिष्ठ नागरिक जिन्हें साइबर सिक्योरिटी की ज्यादा जानकारी न होने के कारण उनके साथ बहुत से फ्रॉड हो जाते हैं। तो श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे वृद्ध जनों के लिए डिजिटल सुरक्षा की। आज हमारे बीच टेक गुरु यानी तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रदेश प्रमुख हेल्प एज इंडिया सुश्री संस्कृति खरे जी। संस्कृति जी, रेडियो आजाद हिंद की ओर से आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत करते हैं।
2: नमस्कार।
1: संस्कृति जी, वर्तमान में वृद्ध जनों के लिए डिजिटल सुरक्षा क्या है और ये महत्वपूर्ण क्यों है? इसमें बुजुर्गों के साथ फ्रॉड किस प्रकार से किया जाता है?
2: ये जानकारी बहुत आवश्यक है वरिष्ठ नागरिकों के लिए, क्योंकि हमने जिस प्रकार से कोविड में देखा कि वरिष्ठ नागरिक एक ऐसा व्यक्ति थे जो हर परिवार से और अपने समाज से कट चुके थे, क्योंकि उनके पास आने जाने वाला कोई नहीं था। वहाँ पर एक ही माध्यम था जो लोगों को जोड़े हुए था, वो था टेक्नोलॉजी। और जो वीडियो कॉलिंग कर पाते थे या फिर अपने स्मार्टफोन से अगर बात कर पाते थे, सिर्फ वही अपने परिवार से संपर्क में थे। तो वहाँ से हमने इस चीज़ की शुरुआत करी कि क्या हम वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐसी कोई चीज़ ला सकते हैं जो उनको परिवार के ज्यादा करीब ला सकता है। तो उस समय हेल्पेज इंडिया ने सोचा कि हम वरिष्ठ नागरिकों की किस प्रकार से हमारे पास कंप्लेंट आती, किस प्रकार से वो हमसे जानकारी की आवश्यकता होती उनको, उस प्रकार से हम अलग अलग कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो हमने कोशिश करी कि हम उनकी सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे वरिष्ठ नागरिक हैं जो आजकल स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं और कोविड के बाद से पेमेंट से लेकर बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो गई, वीडियो कॉलिंग भी है और बहुत फ्रीक्वेंटली करने लगे हैं। उसको एक्सेस कैसे करना है मोबाइल को, उनको वो नहीं समझ में आता था। फिर उसको एक्सेस करने पे कई बार उनकी गलतियां होती थी, उन गलतियों को कैसे सुधार पाएं। फिर उसको वीडियो कॉलिंग भी करना है या उनको फेसबुक पे अकाउंट बनाना है, उनको वो नहीं पता था। और छोटी छोटी सी जानकारियां कि अगर उन्होंने कोई अकाउंट खोल लिया या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना है तो वो करने के लिए पासवर्ड उनको कैसे सिक्योर करना है, सारी चीज़ें हम उनको सिखाना। तो हमने डिजिटल लिटरेसी उनको सिखाना शुरू करा। उसके बाद में हमें आवश्यकता ये पड़ी कि लोगों ने जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पॉपुलेशन, पहले वरिष्ठ नागरिकों की पॉपुलेशन सिर्फ 6.5% हुआ करती थी, 2011 की बात करें तो पॉपुलेशन 8.5% हो गई टोटल पॉपुलेशन की, और अगर हम 2022 से 24 की बात करें तो अभी उनकी पॉपुलेशन 10.5% हो चुकी है एल्डरली की। तो जिस प्रकार से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उनके लिए सुरक्षा के लिए हमें दूसरे विकल्प ढूंढने पड़ रहे हैं। हमारे पास जिस प्रकार से कंप्लेंट आई, पहले एक दो बार लोगों ने हमसे शेयर किया, वरिष्ठ नागरिकों ने, कि हमारे पास अकाउंट है और उनकी मोस्टली सेविंग एक ही अकाउंट में होती है वरिष्ठ नागरिकों की, और बड़े सॉफ्ट टारगेट होते हैं क्योंकि बहुत ही वो अपने भोलेपन से बता देते हैं कि ये हमारा अकाउंट है, इसमें पासवर्ड है, बच्चों से कई बार हेल्प ली, कैसे हम इसको करें, आप हमारा एटीएम से पैसे निकाल के दे, तो छोटी छोटी चीज़ें वो हेल्प के लिए। उस वजह से उनके साथ में फ्रॉड होना शुरू हुआ। तो जब ये कंप्लेंट हमारे पास में आना शुरू हुई तो हमें लगा कि नहीं, यहाँ पर उनको थोड़ा सतर्क करने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से हम वरिष्ठ नागरिकों को इन सब चीज़ों से बचा सकें। तो बहुत सारे ऐसे हमारे पास उदाहरण आने लगे कि जिनको देख करके हमने फिर बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उनको हमने रिक्वेस्ट करी कि क्यों ना आप हमें ऐसे प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट करें जिसमें हम वरिष्ठ नागरिकों को डिजिटल लिटरेसी से एक सुरक्षित कर सकें। तो हमने एक सुरक्षित के नाम से एक प्रोजेक्ट हमें गूगल ने सपोर्ट किया, और उस सुरक्षित प्रोजेक्ट में हमने साइबर सिक्योरिटी से लेकर के डिजिटल लिटरेसी एक प्रोग्राम स्टार्ट करा वरिष्ठ नागरिकों के लिए। तो ये कार्यक्रम हमने स्टार्ट करा है और इसमें हम बहुत सारे आयामों को कवर कर रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे पास कंप्लेंट आती है वैसे वैसे हम उसको उनके पास एग्जांपल्स और अलग अलग तरह की चीजें हम
1: जी बताते हैं। आपने बताया कि आप हेल्पेज इंडिया से जुड़ी हुई हैं और प्रदेश प्रमुख भी हैं, आपके साथ जो बुजुर्ग या कहें जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको आप साइबर सिक्योरिटी या वृद्ध जनों के लिए जो डिजिटल सुरक्षा है उसकी जानकारी आप किस तरह से उनको परिचित कराती हैं, किस तरह से उनको जानकारी देती हैं?
2: सबसे पहले तो हमने उनके लिए गाइड बुक बनाई है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से बनाई है, जिसमें हम लोग उनको किस प्रकार से हर एक एक छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप, एक तो उनके साथ में कि पासवर्ड कैसे बनाना, क्योंकि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है लोग पासवर्ड बना लेते हैं और पासवर्ड एक पासवर्ड वो हर जगह यूज करते हैं, और हर जगह पासवर्ड जब यूज होता है तो उनको अगर एक ने अगर एक जगह का पासवर्ड उनका क्रैक कर लिया तो सभी जगह से उनका पासवर्ड क्रैक हो जाता है। तो उनको पहले तो पासवर्ड किस प्रकार से बनाना वो हमने, कहने के लिए बहुत छोटी बात है लेकिन वो बहुत गहरी चीज़ है जो हम भी शायद आजकल इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, लेकिन हम वरिष्ठ नागरिकों को जरूर एडवाइस देते हैं कि वो करें इम्प्लीमेंट। तो एग्जाम्पल की हम जैसे उनको एक सेंटेंस बताते हैं कि जैसे हरी हैज टू डॉग्स नेम टॉम एंड जेरी, तो उसमें आपके न्यूमेरिकल्स भी आ जाती हैं, एच कैपिटल आता है, हैज का एच स्मॉल आता है, टू में न्यूमेरिकल भी आ जाता है, डी में कैपिटल डी आ जाता है, नेम में एन स्मॉल है, देन टी कैपिटल और एंड का सिंबल वाला एंड आ जाता है। तो उस तरह से उनको हम सेंटेंस के थ्रू सिखाते हैं ताकि उनको याद रहे और वो भूले नहीं, क्योंकि ये चीजें हम लोग भी कई बार पासवर्ड रख के भूल जाते हैं अगर हमने बहुत दिन यूज नहीं करा तो ये कॉमन चीज है जो भूल जाते हैं, उसको हम किस प्रकार से याद रखें उस तरह से भी उनको सिखाते हैं। दूसरा जो हमारे पास वॉइस कॉल आता है मोबाइल पर, वॉइस कॉल आने के बाद में उसको क्लोनिंग की जाती है और आपकी वॉइस रिकॉर्ड करके फिर आपको उसके लिए फिर थ्रेफ्ट किया जाता है। कुछ आते हैं वीडियो कॉलिंग के थ्रू आते हैं कि वीडियो कॉलिंग आपको कर रहे हैं व्यक्ति और आपका फिर वीडियो बना रहे हैं, देन आपको फिर ब्लैकमेल कर रहे हैं
1: जी।
2: तीसरे एक तरह का जो हमारे पास इसमें जो केसेस आते हैं वो है वीडियो कॉल सेक्सटॉर्शन के नाम से आता है, जिसमें वो एल्डरली के साथ में आजकल जो कॉमन होने लगे जो पहले कभी नहीं होता था कि उनको फीमेल कॉल कर रही है और फिर उसका वीडियो बना के फिर वो ब्लैकमेलिंग करती है
1: जी, जी, जी।
2: और उसके अलावा हमारे पास में आपने भी देखा होगा कि अगर हमारा एमपीबी से कॉल आ गया कि एमपीबी से आपका आज ये बिल पे करें इस पे और नहीं तो आपका इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाएगी, और ये बहुत कॉमन हो गया, तुरंत वो फ्रॉड जो करते वो कॉल करते हैं जबकि एमपीबी से कॉल नहीं आता है। एक और ऑप्शन है कि बच्चे को उन्होंने बोला आपका बेटा इस समय कहाँ पर है, तो वो बताएंगे हमारा बेटा कहीं बाहर गया है, तो वो बोलेंगे नहीं आपका बेटा हमारे पास बैठा हुआ है और उसने कहीं ड्रग्स में फंस चुका है और आप हमें इतने पैसे ट्रांसफर करें, तो हम उसको किसी को नहीं बताएंगे, रिलीज कर देंगे, वो हम गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स बोल रहे हैं। कहीं से भी वो अपनी एक डिग्निटी बताते हैं और उस तरह से बात करते हैं, पेरेंट्स डर जाते हैं कि हमें बचाना उसको कैसे भी करके, और वो कर देते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे हमारे पास में केसेस आते हैं। अब उसको हम कैसे प्रिवेंट करेंगे ये हमारा एक दूसरा,
1: जो आपकी पुस्तक है उसमें और भी चीजें जो बताई गई होंगी उसके बारे में आप बताइए ना कि
2: इसमें हमने एक तो किस प्रकार से आपको किस तरह की लिंक को क्लिक करना है कि जैसे HTTPS होता है HTTP होता है, तो HTTP अगर है सिर्फ तो उसको आपको क्लिक नहीं करना क्योंकि वो सिक्योर नहीं होती है, जब तक HTTPS नहीं होगा तब तक आप उसको क्लिक नहीं करें, वो सिक्योर साइट नहीं होती है
1: जी।
2: दूसरा इसमें कई चीज़ें हैं कि हम लोग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का है, तीसरा हमने इसमें मेंशन किया हुआ कि आपको किस प्रकार से डिजिटली एक्सेस करना है कि मोबाइल के ऑपरेशंस कैसे करना है
1: जी जी।
2: चौथा हमने इसमें डाला हुआ है कि क्या क्या ऑप्शंस है, अगर आप कभी फंस जाते हो तो आप किसको हेल्प के लिए अप्रोच करेंगे, वो हमने इसमें डाला हुआ है। इस प्रकार से हमने 5-6 पहलू को इसमें डाला हुआ है, और यदि आप कोई ऑनलाइन स्कैम में फंस रहे हैं तो उसको आप कैसे सिक्योर करेंगे। हमने जो सिक्योर पासवर्ड की बात करी थी कि सिक्योर पासवर्ड होना चाहिए इसमें, फिर बैंकिंग में अगर ऑनलाइन यदि आप करें तो किस प्रकार से आपको ऑनलाइन बैंकिंग करना है, बिल्स आपको कैसे पे करना है वो हमने इस नोटबुक में कवर किया हुआ है, फिर प्रोटेक्शन कैसे करना है अपने पासवर्ड का, फिर आप स्कैम यदि हो रहा है तो उसको आप कैसे सिक्योर करेंगे, व्हाट्सएप आप कैसे यूज करें जिसमें आप सेफली रहें और आपके साथ कोई थ्रेट ना हो, और कैब बुकिंग यदि करना है तो कैब बुकिंग में भी कई बार
1: फ्रॉड
2: हो जाता है फ्रॉड, तो वो आप कैसे सिक्योर करते, हमने मेजरली ये चीजें कवर करी है इसमें।
1: वृद्ध जनों के साथ हुए फ्रॉड के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर है क्या जिस पर वे तत्काल बात कर अपनी समस्या बता सके?
2: ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने एक हेल्पलाइन स्टार्ट करी है और जिसका नंबर है 1930
1: जी।
2: जब भी कभी भी किसी के साथ यदि फ्रॉड हो जाता है तो तत्काल जो गोल्डन आवर्स हम कहते हैं कि तुरंत आपको किसी को इन्फॉर्मेशन देना है तो वो इस नंबर पर है। इस नंबर पर जब भी आप कॉल करें उसके पहले जिस प्रकार का आपके पास फ्रॉड हुआ है उसकी पूरी जानकारी पहले आप एक पेपर में लिख लें। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आपके अकाउंट से पैसा निकल गया तो उसका अकाउंट नंबर कितना अमाउंट गया है, किस डेट को गया है, किस बैंक से गया है, कि बस कोई लिंक अगर आया था जिसपे आपने क्लिक करा उसके बाद गया है, या किसी पर्सन पे आपको लगता है कि किसी पर्सन ने भेजा था, तो आप उससे संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वो आप पूरी पहले एक पेपर पे लिख ले, फिर उनको कॉल करें, क्योंकि आपसे वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप वो जानकारी लेने के बाद में तुरंत आप उनको कॉल करें, तो वो फिर पूरा कोशिश करते हैं उसको ट्रैकिंग करने के लिए। और साइबर क्राइम का जो गवर्नमेंट का साइट है उसका cybercrime.gov.in वेबसाइट है, इसको आप क्लिक करके बहुत सी आप जानकारी, गवर्नमेंट ने जो स्टार्ट करी हेल्पलाइन, इसकी जानकारी आप ले सकते हैं।
1: संस्कृति जी, आपके साथ में या आपके साथ जो वृद्ध जन है उनके साथ ऐसी कोई घटना घटी हो, फ्रॉड हो गया, तो उसके बारे में हमारे श्रोताओं को जरूर बताइए।
2: जैसा कि मैंने बताया कि फ्रॉड कई तरह के होते हैं, तो जैसे हमारा वीडियो कॉल सेक्सटॉर्शन के नाम से एक फ्रॉड होता है। तो एक वरिष्ठ नागरिक ने, जब ये हम डिजिटल लिटरेसी वर्कशॉप करते हैं तो कई लोग अपनी अलग अलग केसेस सुनाते हैं कि मेरे साथ ये हो गया। पैसे निकलना तो एक बहुत कॉमन चीज है, जो कम से कम हर वर्कशॉप में कम से कम 4-5 एल्डरली हमें बताते हैं उनके साथ हो चुका है। ये वर्कशॉप होने के बाद में किसी एल्डरली के पास में, जबकि सब कुछ प्रिवेंशन सब कुछ बताया था, फिर भी कम से कम 15-20 दिन बाद एक एल्डरली का कॉल आता है। उन्होंने बताया कि किसी फीमेल ने उनको वीडियो कॉल किया, कुछ 2-3 मिनट बात करी और उसने कॉल रख दिया। उसके बाद में उसने उनका पिक विक लेकर, स्क्रीनशॉट लेकर के उन्हीं के वीडियो बना करके उनको भेजा गया। और वो एल्डरली इतना डर चुके थे कि वो फैमिली को बता नहीं पा रहे थे कि उन्होंने एक नॉर्मल टॉकिंग करा था, लेकिन उसको उन्होंने मोल्ड करके AI के थ्रू बहुत उसको एनिमेटेड कर दिया था। मतलब उनका ये स्थिति हो गई थी, वो सुसाइड करने के मूड में आ गए थे। फिर उन्होंने हमारे यहाँ जो डिजिटल ट्रेनिंग देते हैं राकेश, उनको कॉल किया कि ऐसा सा हुआ है मेरे साथ में, क्या कोई बचाव है इसमें? तो उन्होंने बोला कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही परिवार से आपको छुपाने की जरूरत है, क्योंकि ये चीजें बाहर का व्यक्ति यदि आपको परेशान कर रहा है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी में जाएं, वहां पर कंप्लेन करें, रिटर्न में कंप्लेन दें, और उसके बाद में फिर आपको सहायता दी जाएगी। तो तब जाके वो थोड़ा सा उनको एश्योरेंस मिला कि नहीं, हम कुछ हेल्प ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट की हेल्पलाइन से भी उन्होंने हेल्प ली, प्लस जाकर के उन्होंने पुलिस कंप्लेन उसमें साइबर सिक्योरिटी करी। तो ये चीजें भी ऐसी है, तो जो एल्डरली सोचते उनके साथ ये चीजें नहीं होंगी, या यंग जनरेशन सोचते उनके साथ में होगा, लेकिन होता है ये चीजें। इसी प्रकार से हमारे पास में कुछ एल्डरली के केसेस आए थे जिसमें वो वॉइस को लेकर के था, उनका बेटे की वॉइस में किसी एल्डरली को कॉल कर रहे हैं, पापा मुझे अभी अर्जेंट में, मतलब मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया, अब मैं अपने दोस्त के फोन से लगा रहा हूँ, आप मुझे इतना इतना अमाउंट पे कर दो, मेरे अकाउंट में अभी नहीं है। अब पिताजी हैं, उन्होंने तुरंत उसको भेज दिया अकाउंट, पता पड़ा बेटे ने कॉल ही नहीं किया था, क्योंकि बेटे की वॉइस रिकॉर्ड करके उन्होंने खुद कॉल किया था। तो जो पैसा हमारा हमारी गलती से चला जाता है उसको वापस लेना बहुत मुश्किल होता है। तो हमारा यही एम है डिजिटल सेफ्टी से कि हम किस प्रकार से उनको प्रिवेंट कर पाए, पहले ही हम गलती करने के पहले उनको रोक पाए, ताकि वो इस स्टेज पे जा ही नहीं पाए।
1: जैसे बुजुर्ग जो है आम साइबर सिक्योरिटी के खतरों से खुद को वो कैसे बचा सकते हैं,
2: उसके लिए कुछ डोंट एंड डूज हैं कि क्या करना चाहिए उनको, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे हम बच्चों से बोलते हैं कि ये मत करो, चलोगे गिर जाओगे, लेकिन ये चीज ऐसी जिसको आप इमेजिन नहीं करते हो। आज आपके पास में कोई थ्रेट सामने आया, आपने उसको प्रिवेंशन कर लिया, कल को कोई नई चीज आ जाएगी, तो उसके लिए हम मानसिक रूप से तैयार नहीं होते हैं। और क्योंकि वरिष्ठ नागरिक, तो AI एक ऐसी चीज है जो बहुत टेक्नोलॉजी वास्ट होती जा रही, दिन पे दिन नई नई चीजें आती जा रही है। तो हमारी अगर एज ग्रुप की बात करें, मिडिल एज ग्रुप, यंग एज ग्रुप की, हर चीज हम लोग भी नहीं समझ पाते हैं, जबकि हम डेली उस चीज को यूज कर, हम डेली लैपटॉप पे बैठते हैं, काम करते हैं, हम मोबाइल पे एक्सेस करते हैं, लेकिन कुछ सिस्टम ऐसे हो जो हम भी नहीं समझ पाते। तो उसको इजी बनाने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने कुछ चीजें उनको एडवाइस जो है वो होना चाहिए, जैसे कि सबसे पहले उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पे हम बात करेंगे। तो जैसे साइट्स हैं, जैसे हमने कोई भी साइट यदि वो सर्च भी कर रहे हैं, कई बार किसी को लर्निंग की आदत होती है कि एल्डरली है तो लैपटॉप बैठ कर कुछ सीखना चाह रहे हैं, इंटरनेशनल कोई चीज पढ़ रहे हैं, तो URL जब भी क्लिक करें तो वो सेफ है या नहीं है उस साइट को देख करके करें, जिसमें HTTPS हो तो ही देख करके वो उस पर क्लिक करें। दूसरा, यदि कोई आपको कॉल करके, मिस कॉल करके छोड़ रहा है या बार बार आ रहे हैं, तो वो आप कॉल बैक ना करें। अगर अर्जेंट होगा तो आपको दोबारा कॉल बैक करेगा, और उसको अगर अननोन पर्सन है तो आप विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में फोन काट दें, जब तक वो अगर अपनी आइडेंटिटी प्रॉपर नहीं बता रहा है। तीसरा एक ये होता है चीजें कि जब व्यक्ति आपको वीडियो कॉल करता है, वीडियो कॉल यदि अननोन नंबर से आ रहा है तो आपको कॉल उठाना ही नहीं है उसको। तो वीडियो कॉल जब आते हैं और हम उसको बिल्कुल देख करके करते हैं, तो वो चीजें आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि हम उस चीज को, वीडियो कॉल है उसको नहीं उठाएं। अगर हमारे कोई परिचित भी कर रहे होंगे तो फिर हम टेक्स्ट करें पहले कि हाँ मैं हूँ या कुछ है उसके बाद, और यदि आपको दिख भी रहा कि अननोन पर्सन, तो तुरंत उसको, गलती से आपने अटेंड भी कर लिया तो तुरंत उसको काट दें। दूसरा एक ऑप्शन है कि ओटीपी होता है। हाँ। कि ओटीपी यदि आपके पास में आ रहा है तो ओटीपी आप पहले देख लें सिक्योर है नहीं है। यदि आपको किसी बैंक यदि आप ट्रांजैक्शन करें तो आप बैंक में कंफर्म भी कर सकते हैं फोन करके कि हमने ये ट्रांजैक्शन करने के लिए किया था, क्या आपके ये भी सिस्टम है या नहीं है। आपको श्योर है तो ही करें, नहीं है तो आप पूछ सकते हैं। हर जगह हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं और दे विल रिस्पॉन्ड। कुछ होता है कि जैसे वेरिफिकेशन के लिए कॉल आता है तो वेरिफिकेशन के लिए कॉल के लिए आप वो बोलेंगे हम इस बैंक से बोल रहे हैं, हम आपका डाटा वेरीफाई करना है, तो आप पहले उस बैंक को कॉल करेंगे कि क्या आपने किसी व्यक्ति को वेरिफिकेशन के लिए कॉलिंग पे लगाया हुआ है। हम वेरिफिकेशन सिर्फ गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को ही देना चाहेंगे, हम किसी भी अननोन पर्सन को वेरिफिकेशन नहीं दे सकते। तो एल्डरली मना कर सकते हैं साहब कि हम वेरिफिकेशन नहीं दे सकते हैं। और लिटरेसी की बात, कोई भी पेपर्स है तो यूजुअली कई बार आते हैं कि किसी ने कुछ अप्लाई कर दिया है कि आपके बच्चे ने लोन के लिए अप्लाई किया और वो आपके पास आगे साइन करवाने की बच्चे ने लोन के लिए अप्लाई किया हुआ साइन करना, तो आपको किसी को एंटरटेन ही नहीं करना है। कोई भी अननोन पर्सन एंटरटेन किसी और के नाम से आपको कॉल कर रहा है तो आपको बोलना नहीं, पहले हम खुद आप खुद उससे उसी के नंबर पर बात करें उसके बाद ही उसको एंटरटेन करें, किसी और के नंबर से आप एंटरटेन ना करें। और बाकी मेन हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट जो ओटीपी शेयर कर देते हैं कि जैसे हमसे नहीं हो पा रहा तो हमने किसी और को बोला, तो आप किसी मतलब किसी भी चाहे फैमिली मेंबर हो चाहे आपके पड़ोसी हो चाहे इनमेट्स हो चाहे आपको कोई भी, उसको ओटीपी कभी शेयर ना करें। अधिकतर ये गलती करते हैं कि उनसे ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रहा तो बोलते अच्छा बेटा मैं ओटीपी भेज रहा हूँ तुम कर दो, क्योंकि उनको वो प्रोसेस करने में तकलीफ हो रही है, तो हम वो प्रोसेस को सीख लें बजाय कि उसको हम शेयर करने के।
1: संस्कृति जी, जैसा कि बहुत से मोबाइल्स में हमारे पास में भी मैसेजेस आते हैं, आज ये कंपनी इतने इतने फलाने का इतना इतना रिचार्ज आपको उपलब्ध करा रही है, तो ये जो मैसेजेस होते हैं ये किस कारण से होते हैं, या सही होते हैं या फ्रॉड होते हैं ये?
2: ये जो हम बात करें कि किसी की तरफ से अगर मैसेज आ रहा है तो कोई भी कंपनी हो सकता है, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, किसी का भी है, तो बेटर है कि आप पहले अपने ही जिस कंपनी का है उसको आप कॉल करें और उनसे वेरीफाई करें बजाय कि उस पर भरोसा करने के। और हर चीज आपको वेबसाइट पर जो है वो करेक्ट लिंक करेक्ट फोन नंबर्स मिल जाते हैं, उनके थ्रू आप उसको एक्सेस करें।
1: नहीं, जैसे कि बुजुर्गों के पास में भी मोबाइल है, आजकल सब एंड्रॉइड फोन चला रहे हैं, या छोटे मोबाइल भी हैं, कीपैड मोबाइल्स भी हैं, उनके अंदर भी जैसे बहुत सारे लिंक आ जाते हैं कि आप इसको दबाइए, इसको प्रेस करने से आपके खाते में इतने इतने लाख रुपए पहुंच जाएंगे।
2: बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि सबसे इनसिक्योर चीज यही लिंक होती है। किसी भी प्रकार के लिंक पे हमें क्लिक करना ही नहीं है, और यदि हमने क्लिक कर दिया तो हो सकता उसके तुरंत बाद ही आपके अकाउंट से पूरा पैसा चला जाए। और एक और चीज इसमें होती है कि जब हम लिंक कोई भेजता है तो अगर वो सिक्योर जगह से नहीं आई है तो हमको वैसे भी उसको एंटरटेन नहीं करना है, और यदि सिक्योर आती है तो भी नहीं होता। कई बार एक एग्जाम्पल ऐसा भी हुआ कि गवर्नमेंट के साइड हमने देखी, वहीं से एक नंबर लिया और कॉल किया, लेकिन वो व्यक्ति फ्रॉड निकला, उसने हमें लिंक भेज के और पैसा निकाल लिया हमारे अकाउंट से और हमें पता नहीं पड़ा, क्योंकि वो हमने नंबर जो लिया था गवर्नमेंट की साइट से लिया था। तो हम पहले ये भी वेरीफाई करें कि क्या ये उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट का नंबर है या नहीं है। तो आजकल मोबाइल नंबर के चेंज हो जाते हैं, पहले सिर्फ लैंडलाइन नंबर होते थे तो हमें भरोसा होता था कि ये लैंडलाइन नंबर पर्टिकुलर ऑफिसर्स का ही है या गवर्नमेंट के जितने नंबर है उस पर दिया हुआ है। आजकल मोबाइल नंबर होने से एक इनसिक्योरिटी बढ़ गई है, तो हमें किसी भी चीज को लिंक पे क्लिक करना ही नहीं है।
1: मान लीजिए अगर किसी ने उसके ऊपर क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद में उसके साथ जो फ्रॉड होता है उसके लिए क्या किया जा सकता है?
2: उसके लिए सबसे पहले तो जिस बैंक का अकाउंट है वहाँ पे इन्फॉर्मेशन देनी होती है, अकाउंट को ब्लॉक करवाना पड़ता है, और दूसरा जो हमने बताया कि साइबर सिक्योरिटी के जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पर वो कॉल करें ताकि वो अपने लेवल पे उसको कुछ एक्शन ले पाए। अगर कैसे हो भी गया किसी के साथ तो तुरंत ही 1930 पर कॉल करें और वो जो गोल्डन आवर आपका जो रहता है एक घंटे उसके अंतर्गत वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद वो कोशिश करते हैं कि आपको हेल्प दे पाए, क्योंकि पैसा निकल जाने के बाद में हमारी गलती से थोड़ा मुश्किल होता है वापस आना।
1: अच्छा। संस्कृति जी, हम अपने मोबाइल कंप्यूटर को किस प्रकार से सुरक्षित रख सकते हैं?
2: उसके लिए कुछ तरीका आप अपना सकते हैं, खास करके हमारे वरिष्ठ नागरिकों को हम ये सलाह देते हैं कि आप हमेशा एक तरह का लॉक ना रखें अपने मोबाइल पर। कभी आप पिन नंबर डालें उसमें पासवर्ड का, कभी आप फिंगरप्रिंट रखें, कई बार आप फेस रिकॉग्निशन के हिसाब से आप उसको डाल के रखें, या उसका पैटर्न वाला लॉक करें, तो समय समय से उसको चेंज करते रहें, सो दैट आप सिक्योर रहेंगे। और दूसरी चीजें जो अक्सर वरिष्ठ नागरिक नहीं करते हैं वो है कि सॉफ्टवेयर को इंस्टॉलेशन, कि अपडेट्स जो आते हैं मोबाइल पे वो हम लोग नहीं करते हैं, तो उसकी भी उनको सलाह देते हैं कि आप लोग समय समय पर जो अपना मोबाइल जिस कंपनी का उसके अपडेट्स आते हैं वो आप उसको अपडेट कर दें ताकि आप सिक्योरिटी से बच सकते हो।
1: जी जी जी। यदि किसी को डिजिटल लिटरेसी ट्रेनिंग वर्कशॉप करानी है तो वो आपसे कैसे संपर्क कर सकता है?
2: डिजिटल लिटरेसी वर्कशॉप जो हम करवाते हैं उसमें हम अधिकतर जो हमारा भी फोकस रहता है सीनियर सिटीजन एसोसिएशंस कि जितने भी सीनियर सिटीजन एसोसिएशन है उनको हम संपर्क करते हैं और हम एक बैच जो रखते हैं 35 से 40 लोगों का ताकि अच्छे से हम एक एक सीनियर सिटीजन तक पहुंच सकें और उनको हम प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी कराते हैं। तो ये हमारा सेशन करीबन 1.5 से 2 घंटे का रहता है जिसमें हम 1 से 1.25 घंटे का सेशन रहता है और उसके बाद में क्वेश्चन आंसर होते हैं। एक एक व्यक्ति हमसे कई चीजें पूछता है कि ये मोबाइल पे मेरे इसमें ये सिक्योरिटी नहीं दिखा रहा, आपने बताया करना था, हम कैसे करें। तो हम अपने वॉलंटियर्स भी साथ में रखते हैं ताकि कुछ उनको गाइड करते जाए। तो ये वर्कशॉप जो हम करते हैं 2 घंटे का, इसमें उनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी देते जाते हैं साथ साथ में। और ये सब एक बार यदि हो जाता है, दूसरी बार हो सकता है कि आधे लोग ऐसे जो प्रैक्टिकल कर पा रहे हैं बाकी लोग नहीं कर पा रहे, उनको लगा हमने समझ लिया, लेकिन जब ये घर पे जाके कोशिश करते हैं तो नहीं कर पाए। उसके लिए हम इनसे बोलते हैं आप दोबारा भी हमें संपर्क कर सकते हैं, हम दूसरी बार भी आप लोगों के लिए रख सकते हैं, या हम जिस जगह दूसरी वर्कशॉप कर रहे हैं तो उनको इनवाइट कर लेते हैं जिनको रिक्वेस्ट हमारे पास में आई है कि हमें कुछ चीजें और समझनी है। एग्जाम्पल जैसे हमने एक सीनियर सिटीजन एसोसिएशन है उनको हमने ये डिजिटल लिटरेसी वर्कशॉप करा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वालों के संपर्क में एसोसिएशन वालों के, कम से कम हमारे पास में 20 और ट्रेनिंग के रिक्वेस्ट आई कि हर एरिया वाइज अलग अलग होते हैं एसोसिएशंस बने होते हैं। तो लगता है कि हमारे पास तो इतने सारे लोग रजिस्टर्ड हैं और हर व्यक्ति चाहता है इसकी ट्रेनिंग लेना, तो हम हर व्यक्ति को समय और एक निश्चित स्थान अपना फिक्स कर लेते हैं और उनकी सुविधा के अनुसार हम लोग करते हैं। वरिष्ठ नागरिक जब सुविधाजनक रहे और वो हमसे संपर्क करें। दूसरा इसमें हम ये करते हैं कि हम इनके साथ में एक फीडबैक सेशन भी रखते हैं कि जब ट्रेनिंग खत्म होता है तो उनको एक फीडबैक फॉर्म हम फिल करवाते हैं, उसमें उन्होंने जो सीखा है वो क्या समझ में आया उनको और क्या वो नई चीज और सीखना चाह रहे हैं जो हमने नहीं एड ऑन करी थी, या उनको लगता है कुछ एग्जाम्पल है जो उनको लगता है ये हमारे संपर्क में आया ऐसा केस और आपने नहीं इसके बारे में बताया, तो वो भी हम उसको एड ऑन कर लेते हैं। उनका हम 1 मिनट का 1.5 मिनट का वीडियो बनाते हैं कि उनका फीडबैक कैसा रहा, बहुत उनको अच्छा लगा। तो अधिकतर सब सीनियर सिटीजन बोलते हैं बहुत आउटस्टैंडिंग हमें फीडबैक हमें मिलता है और वो चाहते हैं कि ऐसी वर्कशॉप में लगातार हम करें
1: करते हैं।
2: और संपर्क करने के लिए हमसे यदि आप लोग संपर्क करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हेल्पेज इंडिया के वेबसाइट पे जब मध्य प्रदेश डालेंगे तो आपको मध्य प्रदेश का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा, वहां आप संपर्क कर सकते हैं। फिर भी यदि आप एक नंबर लिखना चाहें तो आप एक नंबर लिख सकते हैं जो मध्य प्रदेश के ही राज्य प्रमुख का नंबर है 9973-01230। ये नंबर पर आप संपर्क करके और हमें कॉल कर सकते हैं। फीडबैक जब हम लोग लेते हैं तो उसके बाद में जब लोग चले जाते हैं अपने घर में तो हो सकता है 10 दिन बाद किसी के साथ में कुछ कॉल हुआ। तो जैसे एक एग्जांपल हम देना चाहेंगे जिसमें हमने एक वीडियो कॉलिंग वाला एग्जांपल भी दिया था कि उनके साथ में वीडियो कॉलिंग हुआ पर वो अपने आप को डर के और सुसाइड करना चाह रहे थे तो उनको प्रिवेंट हमने किया, नहीं तो वो व्यक्ति परिवार से समाज से और लोगों से डर के सुसाइड कर रहे थे क्योंकि उनको ये सोचा नहीं था कि इस प्रकार से इस उम्र में उनके साथ में इस तरह की गलत घटना हो जाएगी कि महिला आपको वीडियो कॉल कर रही है फिर आपके लिए उल्टे सीधे वीडियोस आपके बना के भेज रही है और वो बोल रही मैं आप मुझे मेरे अकाउंट में पैसा डालो नहीं तो मैं क्या आपके संपर्क के लोगों को भेज दूंगी वीडियो, अगर वायरल हो जाएगा तो वो किसी मतलब उनको लगता है मैं समाज के सामने अपना मुंह दिखाने लायक नहीं बचूंगा। तो उस व्यक्ति के अंदर इतनी ज्यादा गिल्ट फीलिंग आ गई थी कि वो सुसाइड करने को जा रहे थे, तब उन्होंने हमें संपर्क किया कि मैंने आपकी ट्रेनिंग की थी आप लोग हमें गाइड करो। फिर उनको हमने गाइड किया था आप पहले साइबर सिक्योरिटी में कंप्लेंट करें, डरने की जरूरत नहीं है, वो गलती आपने नहीं करी है, कोई और व्यक्ति आपको फंसा रहा है तो उसके लिए आप ना डरें, और उस तरह से हमने उनको प्रिवेंट किया था। ऐसे ही हमसे एक लिंक जैसे भेज देते हैं लोग, किसी ने लिंक भेजी तो वहां से उन्होंने हमारे एम्प्लॉय को फोन किया कि ये वाली लिंक मेरे पास में आई है क्या इसको क्लिक करके मैं भेजूं, और वो उनके काम की थी लिंक
1: जी।
2: तो हमारे व्यक्ति ने उनको साफ मना कि नहीं ये आप पहले जिस डिपार्टमेंट का है जिस जगह का बैंक का बोल रहे हैं पहले आप उस बैंक में संपर्क करें उनसे बात करें श्योर हो जाएं कि क्या आपके अधिकारी ने हमें भेजा है। तो उन्होंने बोला था नहीं ये किसी थर्ड पर्सन ने भेजा था बैंक से नहीं आया था। तो ये इस तरह से हम उनको प्रिवेंट करते हैं। तो लोग क्वेरी के लिए हमें रेगुलरली फोन करते जाते हैं आफ्टर वर्कशॉप।
1: संस्कृति जी ये जो डिजिटल लिटरेसी ट्रेनिंग वर्कशॉप है ये कितने दिनों की होती है?
2: ये सिर्फ 2 घंटे की होती है, 1 दिन में 2 घंटे की, यदि कई बार 3 घंटे भी चल जाती है डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन आंसर। कई बार एल्डरली बोलते नहीं हम तो आप तो हमें 1 घंटा और बैठो लेकिन हमें सारी क्वेरीज सॉल्व करके जाओ। हमारा जो सिखाने का समय होता है वो मैक्सिमम 1.5 घंटे होता है, 1.5 घंटे के बाद में आप जितना समय क्वेरी और समझने में उसको प्रैक्टिकल में दे पाए।
1: इसमें क्या सेशंस होते हैं?
2: 3 घंटे मैक्सिमम आप लेके चले सेशन, और 1 दिन में हम 3 भी कर सकते हैं 2 भी कर सकते हैं पर क्लैश नहीं होना चाहिए वो।
1: संस्कृति जी क्या ट्रेनिंग होने के बाद में यदि किसी को आवश्यकता होती है तो आप किस तरह से उनकी सहायता करते हैं?
2: ट्रेनिंग की बात में दो तरह के हमारे पास में रिक्वेस्ट आती है। एक तो प्रिवेंशन के लिए आती है कि हमने जैसे हमारे परिचित है इनके साथ में हो गया, अब आप इनको बताओ कैसे करना है, जिन्होंने ट्रेनिंग अटेंड नहीं की है तो वो हेल्प चाहते हैं। पहले तो हम सजेशन देते हैं कि अब हमारी अपकमिंग ट्रेनिंग इस जगह पर होने वाली है तो आप यहाँ पर आके उसको अटेंड कर लें। और दूसरा, अगर इंस्टेंट हेल्प की जरूरत होती है, जैसे कि कुछ फ्रॉड हो गया, उनको तुरंत हेल्प की जरूरत है, तो हम तुरंत उसको फोन कॉल के थ्रू हम इन्फॉर्म करते हैं, जो उनको डिटेल होता है वो भेजते हैं और हम उनको हमारे लेवल की हेल्प होती है वो कर पाते हैं। क्योंकि कुछ चीज ऐसी जो पैसा जाने के बाद हम भी कुछ नहीं कर पाते, बैंक भी कुछ नहीं कर सकता, बट हम उनको गाइडेंस दे पाते हैं सही कि आपको कब किससे संपर्क करना है ताकि आप उसको प्रिवेंशन कर सके। दूसरा, लोग हमें फीडबैक देते हैं कि आप कुछ हमें नई चीजें और हैं जो एड ऑन कर, जैसे किसी के साथ कोई नया एग्जांपल हो गया कि एक हमसे सीनियर सिटीजन ने कर रहा था कि हमारे बच्चे हैं और बच्चे आजकल मोबाइल पे गेम्स खेलते हैं, तो उन्होंने मेरा मोबाइल लेकर के गेम्स खेल रहे थे। अब गेम्स खेलते खेलते वो ऐसे साइट उन्होंने क्लिक कर दी जिससे उनका पैसा निकल गया। उनको पता नहीं, क्योंकि उनको नहीं पता था कि बच्चे क्या कर देंगे, ये उनकी गलती नहीं थी, लेकिन छोटे बच्चों को हम मोबाइल अक्सर दे देते हैं तो वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चों को मोबाइल ना दें, क्योंकि हमारे मोबाइल में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसको क्लिक करने से हम गलत ऑप्शन को क्लिक कर देते बच्चे
1: जी।
2: तो वो उसके लिए हमें संपर्क किया जाता है। और तीसरा होता है कि वो हमें चाहते हैं कि आपने एक ट्रेनिंग कर दी, हमारे कई साथी ऐसे जिनको ट्रेनिंग करना है तो उनके लिए आप हमें दोबारा ट्रेनिंग सेशन करें, उस तरह के रिक्वेस्ट आते हैं। तो ये 3-4 तरह की मदद हम लोग कर पाते हैं।
1: संस्कृति जी, आप हमारे श्रोताओं को क्या मैसेज देना चाहेंगी?
2: मैं अंत में एक ही मैसेज देना चाहूंगी कि हम सभी लोगों पे भरोसा करते हैं, तो सब पे ना भरोसा करके सिर्फ परिवार वालों पे भरोसा करें। कोई भी चीज आपको सीखनी हो, खास करके मोबाइल ट्रांजैक्शन को लेकर के, बैंकिंग को लेकर के, तो सिर्फ अपने ही व्यक्तियों को पासवर्ड शेयर करें या किसी से भी शेयर ना करें। ऑनलाइन अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती, 4 बार पूछ लें करने के पहले, क्योंकि वो एक क्लिक पे आपका कुछ भी हो सकता है, नुकसान हो सकता है। और अननोन व्यक्ति का फोन उठाए नहीं, वीडियो कॉल ना उठाए आप लोग, और अननोन किसी भी साइट पे क्लिक ना करें, और जब भी आपको आवश्यकता हो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।
1: बहुत बहुत धन्यवाद संस्कृति जी।
2: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, हमारे साथ टेक गुरु के रूप में जुड़ी हुई थी प्रदेश प्रमुख हेल्पेज इंडिया सुश्री संस्कृति खरे जी। और साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसा कि संस्कृति जी ने जो हेल्पलाइन नंबर हमें बताए हैं उन्हें हम दोहरा रहे हैं। अगर आपके साथ ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी हो जाती है तो उसकी रिपोर्ट करने के लिए 1930 पर कॉल करें। किस पर करें? 1930 पर। और साथ ही cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और इसके साथ ही हेल्पेज इंडिया से वरिष्ठ जनों को डिजिटल लिटरेसी ट्रेनिंग देने के लिए 9977301230 पर संपर्क कर सकते हैं। तो श्रोताओं, हमारा टेक गुरु कार्यक्रम यही समाप्त होता है। हमें दीजिए इजाजत। इस कार्यक्रम की परिकल्पना अदिति गौड़। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8,
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
1: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत विभूति।
1: श्रोताओं 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत विभूति।
2: भारत विभूति कार्यक्रम में आज सुनिए अमन के सिपाहियों की दास्तान, लेकिन पहले स्वीकार कीजिए मनीषा
3: और दानिश का
2: नमस्कार।
3: भारत की सांस्कृतिक परंपरा और यहाँ के समाज के ताने बाने को समझने के लिए हमें वर्षों पुरानी रस्मों और जीवन को समझना होगा।
2: भारत की भौगोलिक संरचना ऐसी है कि इसमें कई तरह की सुख संपदा भरी पड़ी है। हजारों साल पहले सोने की चिड़िया के नाम से मशहूर हमारा देश विदेशी आक्रांताओं की पहली पसंद था।
3: यही कारण है कि शक, यवन, हूण, मंगोल आदि विदेशी आक्रमणकारी अपनी खाली झोली भरने के लिए भारत की ओर कूच करते थे। रेगिस्तान के बंजर इलाकों या साल भर बर्फ से ढके उत्तरी क्षेत्र के दुर्दांत सिपाही हमारे देश में लूट कर अपना जीवन यापन करते थे।
2: इनका रास्ता था हिमालय की घाटियों और दर्रों को पार कर पंजाब सिंध में प्रवेश, या पश्चिमी भारत के रेगिस्तानों के रास्ते भारत का पश्चिमी समुद्र क्षेत्र भी भारत पहुंचने का एक विकल्प था, विशेषकर समुद्री दस्युओं के लिए।
3: इसी समुद्री रास्ते से पुर्तगाली, डच, फ्रेंच और अंग्रेज भी भारत आए और यहाँ से व्यापार के बहाने जमीन, जंगल और खदानों पर कब्जा करने लगे। भारत की प्राकृतिक संपदा का दोहन कर अपना घर भरने लगे।
2: पर इन सब के बावजूद ये तमाम नस्ल के लोग धीरे धीरे भारत में घुलने मिलने लगे। यहाँ की सांस्कृतिक परंपराएं, संगीत, पुरातत्व, स्थापत्य कला इनके लिए विस्मय का कारण और खोज का कारण बनी।
3: इसके ठीक विपरीत पूर्व के देश और सभ्यताएं भारत की सांस्कृतिक प्रतिछाया सी बन गईं। संस्कृत और बौद्ध ग्रंथों ने उनके जीवन को भारतीयता से रंग दिया। वे भारत से धन संपदा नहीं, बौद्धिक संपदा आयात कर रहे थे, उसे आत्मसात कर रहे थे।
2: रामायण की विपुल रंजक छवियों को उन्होंने अपने जीवन में उतारा और उसके मानवीय मूल्यों को आत्मसात किया। बौद्ध धर्म का अनुशासन, साधना और तप उनके राष्ट्रीय मूल्य बन गए और वे कृतज्ञ भाव से भारत की ओर देखने लगे।

0: मुगलों के आक्रमण के साथ फारसी संस्कृति भी आई। दरबारों का कामकाज, शाही फरमान सब फारसी भाषा और लिपि में दर्ज होने लगे। फारस यानी आज का ईरान भी संगीत की समृद्ध परंपरा से भरा हुआ है।
1: श्रोताओं, संगीत के सात सुरों की सरगम उनके यहाँ भी उतनी ही मान्य है जितनी हमारे यहाँ। उनके संगीत में ओम तोम की लगावट और तराना की दिर्तुम दिर्दिर्तुम की तेज लय में डूबना सीधा खुदा की इबादत में डूबने जैसा है।
0: भारत के संगीत भजन, ध्रुपद, पदगायन से प्रभावित हो सूफी संतों ने अपने को उसमें एकाकार कर दिया।
1: ये धुएं की बलखाती वलयों के साथ स्वरों का उत्तेजक लय प्रधान संगीत उस्तादों और संतों का प्राण आधार बन गया। साधारण आम जन भी इससे जुड़ने लगा। दिन भर की थकान को सूफी संतों की वाणी ने अल्हाद और खुशियों से भर दिया।
0: भाईचारे का संदेश जन जन तक फैलाने वाले सूफी संतों में हजरत दाता गंजबख्श, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, शाह आलम, हजरत बहाउद्दीन जकारिया और शाह शम्स मशहूर हैं।
1: इन संतों ने अपनी सरल भाषा में दिल को छू लेने वाली कविताएं लिखी, उनकी धुनें बनाई और जन जन में इसे लोकप्रिय बनाया। गांव गांव की चौपालें इन तरानों से गूंजने लगी।
0: बाबा फरीद ने लिखा, हे फरीद, धूल मिट्टी की निंदा न कर, धूल के समान कोई नहीं। जब हम जीवित होते हैं तो ये पैरों के नीचे होती है और जब हम मरते हैं तो ये हमारे ऊपर होती है।
1: जोते मारण मुखियां उना न मारो गुम, अपने घर जाइए पैर तिना दे चुम। यानी हम सहनशील हो, जो तुम्हें मुक्का मारता है उसे मुक्का मत मारो, उसे क्षमा कर उसके पैरों को चूम लो।
0: मुल्तानी काफी में बाबा फरीद के दोहे गांव गांव गाए जाते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी उनके चार शब्द और 112 श्लोक शामिल किए गए हैं जो गुरु अर्जुन देव जी ने खोज निकाले थे।
1: सूफी कवि वारिस शाह ने अपने हीर के माध्यम से प्रेम और करुणा का संसार रचा। वहीं बुल्ले शाह ने मानव मात्र को एक होने का संदेश दिया। चल बुलिया चल उत्थे चलिए, जिथे सारे अन्हे, ना कोई साड़ी जात पछाने, ना कोई सानू मन्ने।
0: संत बुल्ले शाह एक ऐसे संसार की कल्पना करते हैं, आंखों से भेदभाव न दिखाई पड़े, इंसानियत और बराबरी सबसे बड़ी पूंजी है। ऐसी जगह चलकर रहो जहां न कोई जाति पहचाने न कोई उसको माने।
1: लगभग 11वीं शताब्दी से लेकर आज तक उत्तर भारत के अनेक सूफी संतों ने प्रेम की वाणी का संचार किया, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख और सिंध के बाशिंदों के बीच आदर पूर्वक स्वीकार की गई।
0: 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारत के पूर्वी हिस्से यानी अविभाजित बंगाल में रहस्यमय सूफीवाद विकसित हो रहा था, जो बाउल गान के नाम से प्रसिद्ध है।
1: ये एक ब्राह्मणवाद, शैववाद और बौद्ध सहजिया संप्रदाय के सहयोग से एक मिश्रित संप्रदाय विकसित हुआ, जो नाथ संप्रदाय कहलाया। इस्लाम और वैष्णव संप्रदाय में परिवर्तन के बावजूद पुराने संस्कारों को छोड़ना संभव नहीं था, सो उन्होंने धर्म पालन जारी रखा। हिंदू गुरु या मुस्लिम पीर के कोई भी शिष्य इसमें हो सकते हैं।
0: बाउल का समानार्थी शब्द है व्याकुल, याने अपने इष्ट के प्रेम में व्याकुल, तंद्रा में रहना। यह सूफी के हाल के जैसा ही है। बाउलों के दो वर्ग हैं, सन्यासी बाउल जो पारिवारिक जीवन त्याग भिक्षा पर निर्भर रहते हैं, दूसरे हैं पारिवारिक बाउल जो गांव बाहर अपना अखाड़ा बना परिवार के साथ रहते हैं।
1: श्रोताओं, बाउल संगीत दिव्य प्रेम का गुणगान करता है। इकतारा इनका वाद्य यंत्र है। सभी धर्मों में मनुष्य धर्म सबसे बड़ा है और बाउल संगीत इसी की व्याख्या करता है।
0: लालन फकीर 1774 में जन्मे सबसे बड़े सूफी बाउल माने जाते हैं। ये आशु कवि थे इनकी रचनाएं 19वीं सदी के प्रारंभ तक मुखाग्र रूप से एक से दूसरे गायक तक पहुंचती रहीं। पूर्व और पश्चिमी बंगाल की सांगीतिक संस्कृति पर बाउल गीतों का बहुत प्रभाव है।
1: गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर लालन शाह को अपना गुरु जैसा मानते थे। उनकी अनेक रचनाएं बाउल संगीत और उसके रहस्यमय दर्शन से प्रेरित हैं।
0: लालन शाह बंगला संस्कृति के सबसे बड़े संवाहक कवि हैं। उनके 5000 के लगभग गीत चलन में हैं, पर शोधकर्ता मानते हैं कि इनमें लगभग 1000 लालन शाह रचित ही हैं। लालन क्रांतिकारी सूफी कवि हैं।
1: वो कहते हैं कि सब लोग कहते हैं कि लालन कौन जाति के हैं। लालन पूछता है कि जाति का क्या रूप होता है, इन आंखों ने देखा तो नहीं, कोई माला कोई तस्वीर, तो जात अलग हो जाती है, अंत समय कौन सा चिन्ह रह जाता है।
0: एक गीत में लालन कहते हैं कि मनुष्य जीवन दोबारा नहीं मिलेगा, जो करना है शीघ्र करो, अरे अबोध मन तू अपने ही लोगों को नहीं पहचानता, अरे दोबारा मनुष्य जन्म नहीं होगा। बाउल सूफी संप्रदाय केवल मानव धर्म को मानता है, जाति पाति की अवधारणा से दूर वे अपने मन के भीतर छिपे मोनेर मानुष की खोज करते हैं। इन गीतों में देह तत्व परम आत्मा से मिलन और बिचोह का संदेश तो है ही, साथ ही सर्वधर्म संभाव का आग्रह भी स्पष्ट है।

0: श्रोताओं, लालन शाह के अनुगामी हजारों बाउल गायक शिष्य हैं, जो आज भी पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में घर घर अमन और समता का संदेश अपने संगीत के माध्यम से फैला रहे हैं। विदेशों में भी ये फकीर आमंत्रित किए जाते हैं और अभिजात्य कलाकारों ने भी इसे नए परिवेश और नई संगीत योजना के साथ अपनाया है।
1: आइए श्रोताओं, सुदूर दक्षिण में केरल प्रांत की बात करें। दक्षिण भारत की चारों प्रमुख भाषाओं में अनेक संतों ने भक्ति रचनाएं लिखी। तमिल में 12 अलवार संतों ने वैष्णव धर्म पर 5वीं से 9वीं शताब्दी के बीच महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। संस्कृत रामायण के लोक भाषाओं में अनुवाद हुए।
0: केरल में आदि शंकराचार्य ने अनेक सुंदर काव्य रचनाएं संस्कृत में रची, जो मंदिरों में संगीत रूप में गाई जाने लगी। संत त्यागराज, श्यामा शास्त्री और मुथु स्वामी दीक्षितर ने कर्नाटक संगीत पर आधारित अनेक भक्ति रचनाएं तैयार की, जो आज भी पूरे कर्नाटक संगीत का आधार संगीत मानी जाती हैं।
1: 20 अगस्त 1856 को केरल के चैंपा झंथी में एक ऐसे महापुरुष ने जन्म लिया, जो बाद में चलकर एक बड़े दार्शनिक, आध्यात्मिक नेता और समाज सुधारक के रूप में प्रसिद्ध हुए।
0: उनका नाम है नारायण गुरु। उन्होंने केरल के जाति प्रधान समाज में व्याप्त अन्यायों के विरुद्ध आवाज उठाई, एक सुधार आंदोलन आरंभ किया, जिसका सूत्र था सभी मनुष्यों के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर।
1: संस्कृत और वेदांत के अध्ययन के बाद उन्होंने योग और ध्यान साधना की। 1904 में शिवगिरी में उन्होंने एक स्कूल खोला, जहां जाति धर्म आदि के परे निशुल्क शिक्षण देना शुरू किया। जातिगत भेदभाव के खिलाफ उन्होंने समाज सुधार का बीड़ा उठाया।
0: अपनी केरल यात्रा में गांधी जी भी उनसे मिले थे और उनके ज्ञान और विचारों से प्रभावित हुए। नारायण गुरु ने केरल और तमिलनाडु में 45 मंदिरों की स्थापना की।
1: इन अनोखे मंदिरों में कोई प्रतिमा नहीं, इनमें सत्य, नैतिकता, करुणा, प्रेम शब्दों से उत्कीर्ण एक शिलापत्र, एक शाकाहारी शिव, एक दर्पण और एक इटालियन मूर्ति शामिल थी।
0: श्रोताओं, सर्वहारा वर्ग के उत्थान के लिए उन्होंने कृषि मजदूरों को संगठित किया, नारियल कारखानों के गरीब मजदूरों को उचित पारिश्रमिक की पैरवी की और समाज को संगठित किया।
1: नारायण गुरु ने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें उन्होंने वेदांत की सरल व्याख्या की। नैयर नदी के किनारे उन्होंने अरुविप्पुरम में विशाल मंदिर बनवाया, जिसमें बिना जातिगत भेदभाव के कोई भी पूजा कर सकता है। स्वर्ण समाज ने उसका विरोध किया, तो नारायण गुरु ने कहा, ईश्वर ना तो पुजारी है ना किसान, वह सब में है। उन्होंने मनुष्य को स्वाभिमान से जीना सिखाया, बगैर जातिगत भेदभाव के, यही उनका गुरु मंत्र था।
0: आज हजारों सूफी गीत, बाउल गीत और नारायण गुरु की रचनाएं उपलब्ध हैं, पर ये केवल पढ़ने की नहीं, देश के जन जन में बसी प्राणवायु है, उसका जीवन संगीत है। भारत इसी में जीता है, इसी में सांस लेता है।
1: अमन के सिपाहियों की ये दास्तां अब संपन्न हुई। इसे आपके लिए लिखा था ईला शंकर गोहा ने। मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम और लेखन
2: ईला शंकर गुहा।
0: श्रोताओं, इसी के साथ भारत विभूति कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अनुमति दीजिए मनीषा
1: और दानिश को।
0: नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भारत विभूति 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम काव्य गुंजन में रश्मि रथी का भाग 8।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज का हमारा कार्यक्रम है काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। इस पुष्प विन्यास में आज हम प्रवेश कर रहे हैं उस सर्ग में जहां रण की गर्जना से पहले संकल्प की दीप्ति जन्म लेती है। श्रोताओं, रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग की तपा भूमि से आगे बढ़ते हुए अब हम तृतीय सर्ग के द्वार पर हैं, जहां वनवास की अग्नि में तपे पांडव नव तेज के साथ लौटते हैं और विपत्ति से निखरा मानव साहस अपना स्वर पाता है। यहां शब्द शंखनाद नहीं, संकल्प की धधकती हुई शपथ है।
2: आइए श्रोताओं, अब प्रवेश करें रश्मि रथी के तृतीय सर्ग में, जहां यह रथ अपने ज्वलंत अश्वों सहित इतिहास की सीमाएं लांघता हुआ हमें नई विभा, नए संघर्ष और नए उत्कर्ष की ओर ले चलेगा। आइए सुनते हैं रश्मि रथी के तृतीय सर्ग का भाग 1।
1: हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से सहास, पावक में कनक सदृश तप कर वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं।
2: मुख से न कभी उफ कहते हैं संकट का चरण न कहते हैं, जो आपड़ता सब सहते हैं उद्योग निरत नित रहते हैं, शूलों का मूल नसाने को बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के आगे पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी के जैसे लाली हो वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है, पीसा जाता जब इक्षुदंड झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार बनती ललनाओं का सिंगार, जब फूल पिरोहे जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं।
1: रश्मि रथी के तृतीय सर्ग का यह आरंभ हमें एक गहरे जीवन सत्य की ओर ले जाता है। अज्ञातवास की अवधि पूर्ण हुई और पांडव वन से लौटे, पर यह मात्र लौटना नहीं था, ये रूपांतरण था। वे जैसे गए थे वैसे नहीं लौटे, वे तपे हुए, निखरे हुए और भीतर से और अधिक दीप्त होकर लौटे।
2: यहाँ एक गूढ़ दार्शनिक संदेश निहित है, विपत्ति दंड नहीं अवसर है, वह हमारे व्यक्तित्व की छिपी शक्तियों को जागृत करने का माध्यम है। संघर्ष की अग्नि में ही मनुष्य अपने वास्तविक सामर्थ्य को पहचानता है और उसी प्रक्रिया में उसका व्यक्तित्व दिव्यता की ओर अग्रसर होता है। आइए श्रोताओं, अब हम सुनते हैं रश्मि रथी के तृतीय सर्ग का दूसरा भाग।
1: वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने ना कभी आराम किया विघ्नों में रहकर नाम किया, जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल तन को झंझोरते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही, वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड पौरुष के हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसून तो खिलते हैं बागों में शाल न मिलते हैं, कंकरियां जिनकी सेज सुघर छाया देता केवल अंबर।
2: विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं, जो लाक्षा ग्रह में जलते हैं वे ही शूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम। सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। श्रोताओं, तृतीय सर्ग के भाग दो में मानो दिनकर जी ने कहीं अपने ही जीवन के संघर्षों से उत्पन्न भावों को पांडवों की कहानी में उकेर दिया हो। जीवन जीना मानो पत्थर पर फूल उगाने की कोई कला जैसा होता है। जो पुरुष कर्मशील है उसे विपत्तियों से भयभीत नहीं होना चाहिए, और जो धीर है वह सुखों में डूबकर अपने लक्ष्य को नहीं भूलता।
1: श्रोताओं, बढ़कर विपत्तियों पर छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा, इन पंक्तियों में केवल पांडवों के लिए संदेश नहीं है, बल्कि भारत की युवा शक्ति के लिए एक कालजयी पुकार है। मानो कवि सीधे युवा हृदय से संवाद कर रहा हो और कह रहा हो, हे नवयुवक, तू कठिनाइयों से भागने के लिए नहीं जन्मा, तू उन्हें परास्त करने के लिए जन्मा है। संघर्ष तेरी बाधा नहीं, तेरी निर्माण भूमि है। विपत्ति तेरा शत्रु नहीं, तेरा शिक्षक है। यदि तू आराम में डूबा रहेगा तो सो जाएगा, पर यदि तू संघर्ष को अपनाएगा तो जाग जाएगा। तेरी नसों में केवल रक्त नहीं, ऊर्जा स्वप्न और परिवर्तन की शक्ति बह रही है। समय उसी का साथ देता है जो साहस करता है, इसलिए उठ, अपने भीतर की अग्नि को पहचान, विपत्तियों पर छा जा और अपने पुरुषार्थ से अपना ही नहीं युग का भाग्य लिख दे।
2: श्रोताओं, हमें अब उस रथ की आवाज सुनाई दे रही है जिसके रथ से संसार के मनोरथ जुड़ते हैं, जिसके रथ के पहिए पहिए न होकर हम सभी के काल चक्र की ओर घूमते हुए हमारे जीवन और हमारी मृत्यु का विधान तय करते हैं। आइए उसी रथ के साथ तृतीय सर्ग के भाग तीन में प्रवेश करते हैं और सुनते हैं इस तृतीय सर्ग का भाग तीन। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। कृष्ण कहते हैं,
1: दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे।
2: दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले।
1: जंजीर बढ़ा कर साध मुझे, हां हां दुर्योधन बांध मुझे, ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय, मुझ में विलीन झनकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमरत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दिपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर, दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग शर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोट सूर्य शतकोट चंद्र, शतकोट सरित सर सिंधु मंद्र।
2: श्रोताओं, अभी आपने तृतीय सर्ग का ये भाग सुना। कथा महाभारत से ली गई है, पर दृष्टि दिनकर जी की है। यही तो विशेषता है रश्मि रथी की कि ये केवल अतीत का आख्या नहीं, यह वर्तमान का मार्गदर्शन है। जीवन में शांति मार्ग सदैव श्रेष्ठ होता है। कृष्ण पहले दूत बनकर आते हैं, शस्त्र लेकर नहीं। ये हमें सिखाता है कि संवाद युद्ध से बड़ा होता है। अब समस्या ये है कि हमारा अहंकार उन्हें पहचान नहीं पाता। जब तक हम अपने भीतर के दुर्योधन को नहीं पहचानेंगे, तब तक विराट सत्य सामने होते हुए भी हम अंधे ही रहेंगे। दिनकर जी की कलम हमें झकझोरती है। यह काव्य केवल सुनने के लिए नहीं, आत्ममंथन के लिए है। आइए अब प्रवेश करें उस क्षण में जहां मनुष्य ईश्वर को बांधने चलता है और उत्तर में ईश्वर ब्रह्मांड का पट खोल देते हैं। सुनते हैं तृतीय सर्ग के भाग 4 का काव्य पाठ। इसे श्री कृष्ण की चेतावनी के नाम से भी सुनते और जानते हैं।
1: शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधने, हां हां दुर्योधन बांधने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जभी मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सुने को साध न सकता है, पर मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर। फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रीगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा।
2: थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय।
1: श्रोताओं, दिनकर जी की अमर कृति रश्मि रथी हमें केवल महाभारत की कथा नहीं सुनाती, वो हमारे भीतर के कुरुक्षेत्र को उजागर करती है। अतः आइए इस प्रसंग से ये सीख लेकर आगे बढ़ें कि शांति का मार्ग ही श्रेष्ठ है, विनम्रता ही बल है और आत्मचिंतन ही वो दीप है जो हमें विनाश से बचा सकता है।
2: आइए सुनते हैं तृतीय सर्ग के भाग 5 का काव्य पाठ। भगवान सभा को छोड़ चले, कर के रण गर्जन घोर चले। सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर, ले चले उसे अपने रथ पर। रथ चला परस पर बात चली, शमदम की टेढ़ी घात चली। शीतल हो हरि ने कहा,
1: हाय अब शेष नहीं कोई उपाय। हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विष व्यंग कहां तक सहा नहीं। पर दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। हे वी, तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम, वह भी कौरव को भारी है, मति गई मूढ़ की मारी है। दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे। सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा। बाहर शोणित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार। निर्षण विषण बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। चिंता है मैं और क्या करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं। सब राह बंद मेरे जाने, हां एक बात यदि तू मानी, तो शांति नहीं जल सकती है, समराग्नि अभी टल सकती है। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन। तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। तू संग ना उसका छोड़ेगा, वो क्यों रण से मुख मोड़ेगा। क्या अघटनीय घटना कराल, तू प्रथा कुक्षिका प्रथम लाल। बनसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है। शरचाप उठाए 8 प्रहार, पांडव से लड़ने हो तत्पर। मां का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी। किस्मत के फेरे में पड़कर, पाप प्रेम बसा दुश्मन के घर। निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को। पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहा मान इतना मेरा। चल होकर संग अभी मेरे, हैं जहां 5 भ्राता तेरे। बिछुड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे। कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। पद त्राण भीम पहनाएगा, धर्माचिप चमर डुलाएगा। पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे। भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। हा हा क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा। सब लोग तुझे पहचानेंगे, हसली स्वरूप में जानेंगे। कोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली ना समाएगी। रण अनायास रुक जाएगा, कुरुराज स्वयं झुक जाएगा। संसार बड़े सुख में होगा, कोई ना कहीं दुख में होगा। सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। कुरुराज्य समर्पण करता हूं, साम्राज्य समर्पण करता हूं। यश मुकुटमान सिंहासन ले ले, बस एक भीख मुझको दे दे। कौरव को तजरण रोक सके, भूखा हर भावी शोक सके।
2: श्रोताओं, अभी आपने कृष्ण की वाणी सुनी, वह वाणी जो केवल शब्द नहीं करुणा का समुद्र है, केवल तर्क नहीं समय की अंतिम पुकार है। वे कर्ण को समझा रहे हैं, पर वस्तुतः मनुष्य के भीतर बैठे उस द्वंद को संबोधित कर रहे हैं, जहां कर्तव्य और कृतज्ञता, जन्म और पालन, सत्य और संबंध आमने सामने खड़े हो जाते हैं। कृष्ण जैसे कोई दीपक लेकर अंधेरी सुरंग में उतर आए हों, वे कर्ण को उसका वास्तविक स्वरूप दिखाते हैं। आइए अब आगे सुनते हैं। सुन सुन कर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ, फिर कहा,
3: हे कृष्ण, बड़ी ये माया है जो कुछ आपने बताया है। दिन मणि से सुनकर वही कथा मैं भोग चुका हूं, ग्लानि व्यथा। मैं ध्यान जन्म का धरता हूं, उन मन ये सोचा करता हूं, कैसी होगी वो मां कराल। निज तन से जो शिशु को निकाल, धाराओं में धर आती है अथवा जीवित दफनाती है। सेवती मास दस्तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको, जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है, आती फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वो नारी नहीं। हे कृष्ण, आप चुप ही रहिए, इस पर ना अधिक कुछ भी कहिए, सुनना ना चाहते तनिक श्रवण। जिस माँ ने मेरा किया जनन, वो नहीं नारी कुलपाली थी, सर्पणी परम विकराली थी, पत्थर समान उसका ही था, सुत से समाज बढ़कर प्रिय था। गोदी में आग लगा करके मेरा कुल वंश छिपा करके, दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया, मां का पै भी न पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने। वो तो यशस्वनी बनी रही, सबकी भौं मुझ पर तनी रही, कन्या वो रही अपरिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र से दीनहीन, राजाओं के सम्मुख मलीन, जब रोज अनादर पाता था, कह शूद्र पुकारा जाता था, पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था, सब देख रही थी दृश्य प्रथा, माँ की ममता पर हुई वृथा, छिपकर भी तो सुधी ले न सकी, छाया अंचल की दे न सकी। पांच तनय फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली, कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है? क्या पांच पुत्र हो जाने पर, सुत के धन धाम गवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर? नारियां सदैव हो जाती है, बिछड़ों को गले लगाती हैं। कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही। वो पाप अभी भी है मुझ में, वो शाप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वो डर जाएगा, कुंती को काट ना खाएगा? सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ? कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय? ये अभिनंदन नूतन क्या है केशव, ये परिवर्तन क्या है? मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी, पर ऐसा भी था एक समय, जब ये समाज निष्ठुर निर्दय, किंचित ना स्नेह दर्शाता था, विष व्यंग सदा बरसाता था। उस समय सुअंक लगा करके, अंचल के तले छिपा करके, चुंबन से कौन मुझे भरकर, ताड़ना ताप लेती थी हर। राधा को छोड़ भजूं किसको, जननी है वही तजूं किसको? हे कृष्ण, जरा ये भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए, दोनों में मैं था पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा बड़ा हुआ, किसने मुझको सम्मान दिया, निरपता दे महिमा पान किया, अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख, भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन, निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए, कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने मां का कर्म किया, राधा ने मां का कर्म किया।
4: श्रोताओं, कर्ण के शब्दों में अभी आपने केवल आक्रोश को नहीं सुना, एक ऐसे पुत्र का रिश्ता हुआ हृदय सुना है, जिसे जन्म तो मिला पर अपनापन नहीं मिला। ये संवाद तीर की तरह बाहर नहीं आता, भीतर धसता चला जाता है, कर्ण आज प्रश्न कर रहा है, पर यह प्रश्न केवल कुंती से नहीं है, ये उस समाज से भी है जो समय देखकर रिश्तों की चादर ओढ़ता और उतारता है। सच ही कहा गया है श्रोताओं, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। जिस बालक ने जन्म से ही तिरस्कार की धूप सही हो, वो अचानक मिले स्नेह पर सहज कैसे विश्वास कर ले।
2: और देखिए ना, कर्ण की वेदना केवल मातृत्व के अनुपस्थिति तक सीमित नहीं है, उसके भीतर वर्षों का अपमान अंगार बनकर धधक रहा है। वह पूछ रहा है, जब संसार मुझे सूत पुत्र कहकर ठुकराता था, तब किसने मेरा हाथ थामा था, कौन मेरे आंसुओं पर मरहम रखता था। यही कारण है कि उसका मन आज जन्म से अधिक पालन को सत्य मानता है। श्रोताओं, लोक में कहा जाता है कि जिसने दुख की धूप में साथ दिया वही अपना कहलाया। कर्ण के लिए राधा केवल पालक माता नहीं, उसकी आत्मा का आश्रय है।
4: दोस्तों, दिनकर जी यहां केवल कर्ण की कथा नहीं लिखते, वे मनुष्य के भीतर के उस खालीपन को शब्द देते हैं जहां अपनापन और उपेक्षा आमने सामने खड़े होते हैं। कृष्ण उसे उसके जन्म का सत्य दिखा रहे।

0: का ऐसा पक्ष रखेगा जहां करुणा और प्रतिज्ञा एक साथ दिखाई देंगी। अगले अंक में सुनेंगे सूर्यपुत्र कर्ण के अंतर मन का वह ज्वालामुखी जो अब धीरे धीरे पूर्ण रूप से फटने को है। तो श्रोताओं, अब समय है आपसे विदा लेने का, पर यह विदा केवल एक विराम है, इस काव्य यात्रा का अंत नहीं। जाते जाते हम आपको बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, मूल रचना राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की, रेडियो प्रस्तुति और लेखन दीपक नेमा का, वाचन स्वर मैं भगवती सक्सेना,
1: मैं संदीप शर्मा और मैं दीपक नेमा।
0: इसी के साथ शब्दों और संवेदनाओं की ये यात्रा अब यहीं पर विराम लेती है। आपसे हम फिर मिलेंगे एक नए अंक के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा, नमस्कार।
1: काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद पर मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
2: ये मेरा इंडिया।
1: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
3: आप सुन
4: 90.8 MHz पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब आपको सुनवाते हैं श्री रामशंकर अभ्यंकर पर केंद्रित कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक।
3: रेडियो आजाद हिंद 90.8 FM, देश का चैनल देश के लिए। नमस्कार, मैं हूँ वर्षा सिंह।
5: नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक।
3: प्रस्तुत है कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक।
5: दोस्तों, ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो आपके लिए लेकर आता है उन महान व्यक्तित्वों की कहानियां जिन्होंने भारत का नाम विश्व में रोशन किया। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे महान गणितज्ञ की अद्भुत जीवन गाथा जिन्होंने गणित के सबसे कठिन क्षेत्रों में अपना परचम लहराया। आज हम बात करेंगे प्रोफेसर श्री राम शंकर अभ्यंकर की, एक ऐसे व्यक्ति की जिनका नाम बीजगणितीय ज्यामिति के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है।
3: ये कहानी है समर्पण की, कठिन परिश्रम की और अपनी जड़ों से जुड़े रहने की। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने अमेरिका में रहते हुए भी अपनी भारतीयता को कभी नहीं भुलाया। तो आइए शुरू करते हैं ये यात्रा बचपन से लेकर उनके जीवन के अंतिम क्षणों तक, और साथ में जानेंगे उनके परिवार, उनके छात्रों और उनके सहयोगियों के अनुभव।
5: तारीख थी 22 जुलाई 1930, ग्रीष्मकाल की एक गर्म सुबह, मध्य प्रदेश का प्राचीन शहर उज्जैन, वही पवित्र नगरी जहां महाकवि कालिदास ने मेघदूत की रचना की थी। उज्जैन जो सदियों से भारतीय गणित, ज्योतिष और विज्ञान का केंद्र रहा है, यहीं एक साधारण परिवार में जन्म हुआ एक असाधारण प्रतिभा का, श्री राम शंकर अभ्यंकर। उनके पिता शंकर केशव अभ्यंकर एक सरकारी सेवक थे, माता एक पारंपरिक भारतीय गृहिणी थी जो संस्कार, शिक्षा और धर्म में गहरी आस्था रखती थीं।
3: घर का वातावरण बहुत शिक्षा प्रद था। शाम को संस्कृत के श्लोक, सुबह वेदों का पाठ और बच्चों के लिए शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता, यही वो माहौल था जिसमें श्री राम का पालन पोषण हुआ। बचपन से ही श्री राम में कुछ अलग था। जब गली के अन्य बच्चे गुल्ली डंडा खेलने में व्यस्त रहते, तब छोटा श्री राम घर के एक कोने में बैठा संख्याओं के साथ खेल रहा होता। उनकी माता को याद था कि जब श्री राम महज 5-6 साल के थे तब वे रेत पर अंक बनाते और उन्हें जोड़ते घटाते रहते। ये कोई साधारण बच्चा नहीं था।
5: उज्जैन के स्थानीय विद्यालय में जब श्री राम ने प्रवेश लिया तो शिक्षकों ने बहुत जल्दी उनकी असाधारण प्रतिभा को पहचान लिया। उनके गणित के शिक्षक पंडित रामनाथ शास्त्री अक्सर कहा करते थे, ये बालक साधारण नहीं है, इसकी बुद्धि तीक्ष्ण है और गणित में इसकी रुचि असामान्य है। एक बार की बात है, कक्षा में एक कठिन गणितीय समस्या दी गई, पूरी कक्षा परेशान थी, लेकिन श्री राम ने महज 10 मिनट में उसे हल कर दिया। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि उन्होंने उसे 3 अलग अलग तरीकों से हल किया था। शिक्षक भी चकित रह गए थे।
3: लेकिन श्री राम घमंडी नहीं थे। उनके एक बचपन के मित्र मनोहर देसाई ने बाद में याद करते हुए कहा था, श्री राम हमेशा से अलग था। जब हम क्रिकेट खेलते तो वो किताबों में खोया रहता, लेकिन वो कभी यह नहीं दिखाता कि वो हमसे ज्यादा होशियार है। बहुत विनम्र था। विनम्रता ये गुण उनके साथ जीवन भर रहा। चाहे वे कितने भी बड़े गणितज्ञ बन गए, लेकिन उनमें घमंड का लेश भी नहीं था। श्री राम की शिक्षा में संस्कृत का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। उनके पिता चाहते थे कि बच्चे अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहें।
5: हर शाम खाना खाने के बाद परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठते और संस्कृत के श्लोक पढ़ते। पाणिनि का व्याकरण, वेदों के मंत्र, ये सब श्री राम के जीवन का हिस्सा था और यहीं से शुरू हुआ उनका संस्कृत से गहरा प्रेम। उन्होंने पाणिनि के व्याकरण में एक गणितीय संरचना देखी। बाद में जब वे विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञ बन गए, तब भी वे कहते थे, संस्कृत गणित की भाषा है। इसकी संरचना पूरी तरह तार्किक और गणितीय है। यह दृष्टिकोण उन्हें अन्य गणितज्ञों से अलग बनाता था। वे प्राचीन भारतीय ज्ञान को आधुनिक गणित से जोड़ने में विश्वास रखते थे।
3: 1940 के दशक का भारत, देश स्वतंत्रता संग्राम से गुजर रहा था। गांधी जी का नाम हर घर में गूंज रहा था, लेकिन किशोर श्रीराम का मन किसी और दुनिया में था, गणित की दुनिया में। उनके कमरे में यूक्लिड, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त की किताबें सजी रहती। उनके पिता चाहते थे कि श्रीराम आईएएस बने, सरकारी सेवा में जाएं। ये उस समय का सबसे प्रतिष्ठित करियर था, लेकिन श्रीराम के सपने अलग थे। एक दिन उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं गणितज्ञ बनना चाहता हूँ। मुझे संख्याओं और समीकरणों से प्यार है। मैं इसी में अपना जीवन लगाना चाहता हूँ। पिता पहले तो चिंतित हुए, गणित में क्या भविष्य है, लेकिन जब उन्होंने अपने बेटे की आंखों में जुनून देखा तो वे समझ गए कि ये साधारण इच्छा नहीं है।
5: और इस तरह एक पिता ने अपने बेटे के सपने को पंख दिया। ये निर्णय श्री राम के जीवन को बदल देने वाला था। 1947 वो साल जब भारत आजाद हुआ, और वही साल था जब 17 वर्षीय श्री राम ने उज्जैन छोड़ा और बॉम्बे यानी कि मुंबई की ओर रुख किया। बॉम्बे सपनों का शहर, अवसरों का शहर। बॉम्बे विश्वविद्यालय में उनका दाखिला हो गया था। पहली बार घर से दूर एक नए शहर में, नए लोगों के बीच, लेकिन श्री राम डरे नहीं। उनके साथ था उनका जुनून, गणित का जुनून। बॉम्बे विश्वविद्यालय में उन्हें मिले कुछ उत्कृष्ट प्राध्यापक, प्रोफेसर वी नरलिकर, प्रोफेसर डी कोसंबी, ये वो नाम थे जिन्होंने श्री राम की प्रतिभा को और निखारा।
3: कॉलेज के दिनों में श्री राम का एक ही रूटीन था, सुबह कक्षाएं, दोपहर को पुस्तकालय, शाम को समस्याएं हल करना और रात को अध्ययन। उनके सहपाठी अक्सर मजाक में कहते थे, श्री राम तुम मनुष्य हो या मशीन, कभी तो आराम करो। और उनका जवाब था, गणित करना ही मेरा आराम है। जब मैं समीकरण हल करता हूँ तो मुझे शांति मिलती है। और ये सच था, गणित उनके लिए बोझ नहीं बल्कि आनंद था। यही जुनून उन्हें महानता की ओर ले जा रहा था। 1951 श्री राम ने बॉम्बे विश्वविद्यालय से गणित में बीएससी की डिग्री प्राप्त की, और वो भी प्रथम श्रेणी में सर्वोच्च अंकों के साथ। उनके प्राध्यापक उनकी प्रतिभा से बहुत प्रभावित थे। प्रोफेसर नीलिकर ने उन्हें बुलाया और कहा, श्री राम, तुम्हारी प्रतिभा भारत में सीमित नहीं रह सकती, तुम्हें विदेश जाना चाहिए, वहां के महान गणितज्ञों से सीखना चाहिए।
5: विदेश, ये शब्द सुनते ही श्री राम के मन में हजारों सवाल उठे। क्या वे भारत छोड़ सकते हैं? क्या वे अपने परिवार से दूर रह सकते हैं? लेकिन फिर उन्होंने सोचा, ये भागना नहीं है, ये सीखने जाना है, ताकि एक दिन वे भारत लौट सकें और यहां के युवाओं को प्रेरित कर सकें। और इस तरह शुरू हुई अमेरिका जाने की तैयारी। परीक्षाएं, आवेदन पत्र, छात्रवृत्ति के लिए प्रयास, सब कुछ एक साथ। और फिर एक दिन वो पत्र आया, हार्वर्ड विश्वविद्यालय से स्वीकृति पत्र, दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक। श्री राम और उनके परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन साथ ही एक दुख भी था, अलग होने का दुख। प्रस्थान का दिन आ गया। 1951 की एक सर्द सुबह घर में सन्नाटा था, लेकिन हर किसी की आंखों में आंसू थे। मां ने श्री राम के माथे पर तिलक लगाया, उनके सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया, बेटा जा, जाकर नाम कमा, लेकिन कभी अपनी जड़ों को मत भूलना, तू भारत का बेटा है, ये हमेशा याद रखना। श्री राम ने मां के पैर छुए, पिता ने उन्हें गले लगाया और फिर वे निकल पड़े एक नई दुनिया की ओर, नए सपनों की ओर। जहाज में बैठकर जब उन्होंने भारत की तरफ आखिरी बार देखा तो उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में दृढ़ संकल्प था, मैं वापस लौटूंगा, लेकिन एक महान गणितज्ञ बनकर। मैं अपने देश का नाम रोशन करूंगा। बोस्टन हवाई अड्डा, ठंडी हवा, अजनबी चेहरे, अलग भाषा, श्री राम के लिए सब कुछ नया था। हार्वर्ड विश्वविद्यालय, दुनिया का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, विशाल इमारतें, विशाल पुस्तकालय और हर तरफ विद्वानों का जमघट। पहले दिन जब श्री राम गणित विभाग पहुंचे तो उनका परिचय हुआ प्रोफेसर ऑस्कर जारेंस्की से, बीजगणितीय ज्यामिति के पितामह। प्रोफेसर जारेंस्की ने श्री राम को देखा, उनकी आंखों में झांका और मुस्कुराते हुए कहा, सो यू आर फ्रॉम इंडिया, द लैंड ऑफ रामानुजन, लेट्स सी व्हाट यू कैन डू।
3: ये चुनौती थी और श्री राम ने इसे स्वीकार किया। उन्होंने ठान लिया कि वे रामानुजन की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। हार्वर्ड में जीवन आसान नहीं था, अलग देश, अलग संस्कृति, कड़ाके की ठंड, सब कुछ चुनौतीपूर्ण था। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी गणित का वो स्तर जो यहाँ अपेक्षित था। हार्वर्ड में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ छात्र आते थे, लेकिन श्रीराम ने हार नहीं मानी। दिन रात मेहनत, पुस्तकालय में घंटों अध्ययन और प्रोफेसर जोरिस्की के कठिन प्रश्नों का सामना। प्रोफेसर जोरिस्की और श्रीराम के बीच एक विशेष रिश्ता विकसित हुआ। ये सिर्फ शिक्षक छात्र का रिश्ता नहीं था, बल्कि गुरु शिष्य की प्राचीन भारतीय परंपरा थी। जारिस्की ने श्री राम की प्रतिभा को पहचाना। उन्होंने देखा कि ये युवा भारतीय कुछ अलग है, उनकी सोच मौलिक है, उनका दृष्टिकोण नवीन है। एक दिन जारिस्की ने श्री राम को अपने कार्यालय में बुलाया और कहा, श्री राम, आई हैव अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम फॉर यू, इट्स अबाउट रेजोल्यूशन ऑफ सिंगुलरिटीज। Many have tried, many have failed. Do you want to try? Shri Ram ne kaha, Professor, I am ready. Even if I fail, I will learn something.
5: Aur is tarah shuru hua unka shodh karya. Ek aisi samasya par jo ganit jagat ko dashakon se pareshan kar rahi thi. Agle 3 saal Shri Ram ne din raat isi samasya par kaam kiya. Kai baar asafal hue, kai baar nirash hue, लेकिन हर बार जारेंस्की उन्हें प्रोत्साहित करते, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, ग्रेट डिस्कवरीज कम आफ्टर ग्रेट फेलियर्स। ये सबक श्री राम ने जीवन भर याद रखा और बाद में अपने छात्रों को भी यही सिखाया। 1955 की वसंत ऋतु, श्री राम ने अपना शोध प्रबंध पूरा किया, लोकल यूनिफॉर्माइजेशन ऑन अलजेब्रिक सरफेसेस ओवर मॉड्यूलर फील्ड्स। ये कोई साधारण शोध नहीं था, ये बीजगणितीय ज्यामिति में एक महत्वपूर्ण योगदान था। जब उन्होंने अपने शोध प्रबंध की रक्षा की तो कमरे में उपस्थित सभी प्रोफेसर आश्चर्यचकित रह गए। परीक्षक समिति के एक सदस्य ने कहा, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट डिसर्टेशन आई हैव सीन इन माय 30 इयर्स एट हार्वर्ड। यंग मैन, यू हैव अ ग्रेट फ्यूचर अहेड।
3: प्रोफेसर जारिस्की की आंखों में गर्व के आंसू थे, उनका शिष्य सफल हो गया था और इस तरह मात्र 25 वर्ष की आयु में श्री राम शंकर अभ्यंकर ने हार्वर्ड से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। वो सिर्फ एक डिग्री नहीं थी, ये एक भारतीय युवा की विश्व मंच पर पहली विजय थी। और अब शुरू होती है एक प्रेम कहानी। 1955 की गर्मियों में एक शैक्षणिक सम्मेलन में श्री राम की मुलाकात हुई यवोन से। यवोन एक बुद्धिमान और शिक्षित युवती थी। गणित में उनकी रुचि नहीं थी, लेकिन विज्ञान और साहित्य में गहरी रुचि थी। पहली मुलाकात में ही दोनों को एहसास हो गया कि ये कुछ खास है। श्रीराम को यवोन की बुद्धिमत्ता आकर्षित करती थी और यवोन को श्रीराम का समर्पण और विनम्रता। बाद में यवोन ने एक साक्षात्कार में बताया था, When I was first met श्रीराम, I was struck by his intensity. He talked about mathematics with such passion as if it was poetry. I had never met anyone like him. कुछ महीनों की मुलाकात के बाद श्रीराम ने यवोन से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन उन्होंने ईमानदारी से कहा, यवोन, I must be honest with you. Mathematics is my first love. If you marry me, you will have to share me with mathematics. यवोन ने कहा, I know श्रीराम and I am ready for that. I have never seen anyone love their work as much as you do. It's beautiful.
5: 1956 में श्रीराम और यवोन ने विवाह कर लिया। एक साधारण लेकिन सुंदर समारोह, कुछ मित्र, कुछ सहकर्मी और ढेर सारा प्यार। भारत से श्री राम के माता पिता नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने आशीर्वाद भेजा। माँ ने एक पत्र लिखा था, बेटा बहुत खुशी हुई तेरे विवाह का समाचार सुनकर। यवोन को हमारा आशीर्वाद, उसे बता देना कि भारतीय परिवार में बहू का बहुत सम्मान होता है। यवोन ने भारतीय संस्कृति को खुले दिल से अपनाया। उन्होंने हिंदी सीखने की कोशिश की, भारतीय खाना बनाना सीखा। विवाह के बाद जीवन एक नई दिशा में मुड़ गया। श्रीराम अब कॉर्नेल विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे थे। घर की जिम्मेदारियां, पढ़ाने की जिम्मेदारियां और शोध का काम, सब कुछ एक साथ। लेकिन यवोन ने पूरा साथ दिया। यवोन ने बाद में एक साक्षात्कार में कहा था, मैंने बहुत जल्द समझ लिया था कि श्रीराम के काम में बाधा बनना संभव नहीं है, इसलिए मैंने उनका सहयोगी बनने का निर्णय लिया। मैं उनके पेपर टाइप करती थी, उनके छात्रों के लिए घर पर चाय कॉफी की व्यवस्था करती थी।
3: 1958 में उनकी पहली संतान हुई, बेटी किरण। श्रीराम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पहली बार जब उन्होंने अपनी बेटी को गोद में लिया तो उनकी आंखों में आंसू थे। उस दिन मैंने श्रीराम को पहली बार इतना भावुक देखा। वे किरण को गोद में लेकर घंटों बैठे रहे। उन्होंने कहा, अब मुझे और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। फिर 1960 में बेटे केतन का जन्म हुआ और 1963 में छोटे बेटे अरुण का। घर अब बच्चों की किलकारियों से गूंजने लगा था, लेकिन श्रीराम का शेड्यूल नहीं बदला। सुबह जल्दी उठना, फिर विश्वविद्यालय जाना, शाम को वापस आकर बच्चे के साथ थोड़ा समय और फिर रात को शोध का काम। किरण अभ्यंकर, जो अब एक सफल पेशेवर हैं, याद करती हैं, पिताजी के साथ बड़े होना एक अनोखा अनुभव था। हमारा घर एक साधारण घर नहीं था। हमारे कमरे में किताबें थीं, दीवारों पर गणितीय सूत्र लिखे होते थे। पिताजी का अध्ययन कक्ष हमारे लिए एक रहस्यमय जगह थी।
5: 1963 श्री राम के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़। विस्कॉन्सिन मेडिसन विश्वविद्यालय से उन्हें प्रोफेसर बनने का प्रस्ताव मिला। यह कोई साधारण प्रस्ताव नहीं था। विस्कॉन्सिन का गणित विभाग अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ विभागों में से एक था। परिवार के साथ मेडिसन शहर पहुंचे। सुंदर झीलों वाला शहर, शांत वातावरण और एक जीवंत विश्वविद्यालय। यहीं श्री राम ने अपना सबसे महत्वपूर्ण काम किया। यहीं वे एक महान शिक्षक बने और यहीं उन्होंने जीवन के अंतिम दिन बिताए। विस्कॉन्सिन में उनके पहले दिन विभाग के अध्यक्ष ने कहा था, प्रोफेसर अभ्यंकर, वी आर ऑनर्ड टू हैव यू हियर। योर वर्क ऑन रेजोल्यूशन ऑफ सिंगुलरिटीज इज ऑलरेडी लीजेंडरी। वी लुक फॉरवर्ड टू योर कॉन्ट्रीब्यूशन। और श्री राम ने निराश नहीं किया। अगले 50 वर्षों में उन्होंने विस्कॉन्सिन को बीज गणितीय ज्यामिति का एक वैश्विक केंद्र बना दिया।
3: 1965 में श्रीराम के पास उनका पहला पीएचडी छात्र आया, बाल्टिक करासलर, एक युवा प्रतिभाशाली। लेकिन डरा हुआ छात्र। बाल्टिक याद करते हैं वो पहली मुलाकात। मैं बहुत घबराया हुआ था। प्रोफेसर अभ्यंकर की प्रतिष्ठा पहले ही बहुत थी। जब मैं उनके कार्यालय में गया तो वे एक बोर्ड पर समीकरण लिख रहे थे। उन्होंने मुड़कर देखा और पूछा, क्या तुम वाकई में गणितज्ञ बनना चाहते हो या सिर्फ डिग्री चाहिए? मैं सकते में आ गया। मैंने कहा कि मैं वाकई गणितज्ञ बनना चाहता हूँ। तो फिर तैयार रहो, ये यात्रा आसान नहीं होगी। तुम्हें कई बार असफल होना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम डटे रहे तो तुम सफल होगे। ये था प्रोफेसर अभ्यंकर का तरीका। बिल्कुल ईमानदार, बिल्कुल सीधा, कोई झूठी उम्मीदें नहीं, सिर्फ कड़ी मेहनत का वादा।
5: एक अन्य छात्रा ने कहा, पहले दिन मैं सोच रही थी कि मैंने गलत कक्षा में दाखिला ले लिया है। प्रोफेसर अभ्यंकर ने जो समीकरण बोर्ड पर लिखे वे मेरी समझ से परे थे, लेकिन धीरे धीरे समझ आने लगा। प्रोफेसर अभ्यंकर कभी नहीं बैठते थे। 3 घंटे की कक्षा में वे लगातार खड़े रहते, चलते फिरते, बोलते और लिखते रहते। उनके हाथ में हमेशा चौक होता और जूते हमेशा चौक की धूल से सफेद। कभी कभी उनके कपड़ों पर चौक के निशान होते। लेकिन जो छात्र बने रहते उन्हें एक अनमोल खजाना मिलता, गणित की गहरी समझ। प्रोफेसर अभ्यंकर की कक्षा में सवाल पूछना एक कला थी। डॉक्टर विलियम हाइंजर, जो अब स्वयं प्रोफेसर हैं, बताते हैं, एक बार मैंने एक बहुत बुनियादी सवाल पूछ लिया। प्रोफेसर अभ्यंकर रुके, मुड़े और मेरी ओर देखा, फिर बोले, तुमने पिछली रात पढ़ा नहीं, ये तो मैंने कल ही समझाया था, ध्यान कहां था तुम्हारा? मैं शर्मिंदा हो गया। लेकिन फिर उन्होंने पूरी कक्षा को संबोधित करते हुए कहा, देखो गणित में हर चीज महत्वपूर्ण है, अगर तुम बुनियादी बातें नहीं समझोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? कल रात की पढ़ाई दोहराओ, सब दोहराओ।
3: लेकिन जब कोई गहरा और विचारशील सवाल पूछता तो प्रोफेसर अभ्यंकर की आंखें चमक उठती। एक छात्रा डॉक्टर जेसिका मिलर बताती हैं, एक बार मैंने सवाल पूछा जो थोड़ा अलग दृष्टिकोण से भरा था। प्रोफेसर अभ्यंकर तुरंत रुके और बोले, अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल, आओ इस पर चर्चा करते हैं। और फिर अगले 45 मिनट तक हमने उसी सवाल पर चर्चा की। पूरी कक्षा ने साथ में सीखा। उस दिन मुझे समझ आया कि अच्छे सवाल पूछना भी एक कला है। प्रोफेसर अभ्यंकर अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़े रखना चाहते थे। अरुण अभ्यंकर सबसे छोटे बेटे। बताते हैं, हर रविवार की सुबह पिताजी हमें संस्कृत के श्लोक सिखाते थे। पहले तो हम बोर हो जाते थे, लेकिन धीरे धीरे समझ आने लगा। अरुण याद करते हैं कि एक बार उन्होंने पूछा, पिताजी हम अमेरिका में रहते हैं, संस्कृत क्यों सीखें?
5: प्रोफेसर अभ्यंकर ने प्यार से समझाया, बेटे तुम भले ही अमेरिका में रहते हो, लेकिन तुम्हारी जड़ें भारत में हैं। संस्कृत सिर्फ एक भाषा नहीं है, ये एक विचारधारा है, एक दर्शन है, और सबसे महत्वपूर्ण ये गणित की भाषा है। फिर उन्होंने मुझे दिखाया कि कैसे पाणिनि के व्याकरण में गणितीय पैटर्न हैं। उस दिन से संस्कृत मेरे लिए रोचक हो गई। दिवाली और होली पर अभ्यंकर परिवार का घर रोशनी और रंगों से भर जाता था। यवोन ने भारतीय व्यंजन बनाना सीख लिया था। समोसे, जलेबी, पूड़ी, सब्जी, सब कुछ घर में बनता था। दिवाली पर पिताजी सबसे ज्यादा उत्साहित होते थे। वे कहते थे कि ये अंधकार पर प्रकाश की जीत है, ठीक वैसे ही जैसे गणित में ज्ञान अज्ञानता पर विजय पाता है। सन 1998 में भारत सरकार ने प्रोफेसर अभ्यंकर को पद्मश्री से सम्मानित करने की घोषणा की। ये खबर सुनकर प्रोफेसर अभ्यंकर बहुत भावुक हो गए। केतन बताते हैं, जब पिताजी को ये खबर मिली तो वे अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद मम्मी ने मुझे बुलाया। पिताजी रो रहे थे। मैंने पूछा, पिताजी क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? उन्होंने कहा, बेटे ये सम्मान मेरी मातृभूमि से है, फील्ड मेडल से भी बड़ा है मेरे लिए, भारत ने मुझे याद रखा। सम्मान समारोह के लिए पूरा परिवार भारत गया। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में समारोह था। जब राष्ट्रपति ने उन्हें पद्मश्री प्रदान किया तो प्रोफेसर अभ्यंकर ने अपने संक्षिप्त भाषण में कहा, मैं आज यहां एक गणितज्ञ के रूप में नहीं बल्कि भारत के एक बेटे के रूप में खड़ा हूं। यह सम्मान सिर्फ मेरा नहीं बल्कि उन सभी भारतीय विद्वानों का है जो विश्व मंच पर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।
3: सम्मान समारोह के बाद प्रोफेसर अभ्यंकर परिवार के साथ उज्जैन गए। अपनी जन्मभूमि किरण याद करती हैं। जब हम उज्जैन पहुंचे तो पिताजी का चेहरा देखने लायक था। वे बच्चे की तरह उत्साहित थे। प्रोफेसर अभ्यंकर अपने बचपन के घर गए, वो घर जहां उन्होंने गणित के सपने देखे थे। यहीं इसी आंगन में मैं बैठकर गणित की किताबें पढ़ता था। यहीं मेरे सपने शुरू हुए थे। उन्होंने अपने पुराने स्कूल का दौरा किया, वहां के छात्रों से मिले। एक युवा छात्र ने पूछा, सर आप इतने बड़े गणितज्ञ कैसे बने? उन्होंने जवाब दिया, बेटे मैं कोई बड़ा गणितज्ञ नहीं हूँ, मैं बस एक व्यक्ति हूँ जो गणित से प्यार करता है। तुम भी अपने पैशन को फॉलो करो, मेहनत करो, सफलता मिलेगी।
5: 2012 शरद ऋतु का समय। प्रोफेसर अभ्यंकर का स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगा। परिवार चिंतित था। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें आराम की जरूरत है, लेकिन प्रोफेसर अभ्यंकर काम करना नहीं छोड़ना चाहते थे। केतन बताते हैं, अक्टूबर 2012 में पिताजी की तबीयत खराब हो गई। हमने उन्हें अस्पताल ले जाना चाहा, लेकिन वे मना कर रहे थे। नहीं बेटे, मुझे अभी एक प्रमाण पूरा करना है, अस्पताल बाद में चलेंगे। अंततः परिवार के आग्रह पर वे अस्पताल गए, लेकिन वहां भी उनके बिस्तर के पास गणित की किताबें और कागज रखे रहते थे। एक नर्स ने बाद में बताया, मैंने ऐसा मरीज कभी नहीं देखा। वे अस्पताल के बिस्तर पर भी समीकरण लिख रहे थे। उनका समर्पण अद्भुत था।
3: 6 नवंबर 2012 प्रोफेसर अभ्यंकर के जीवन का आखिरी दिन। परिवार उनके पास था। यवोन, केतन, किरण, अरुण सबके सब भावुक होकर याद करते हैं। पिताजी बहुत कमजोर हो गए थे, लेकिन उनका मन अभी भी चल रहा था। वे धीमी आवाज में कुछ कह रहे थे। यवोन ने कान पास किया। वे कह रहे थे, वह प्रमाण P47 वहां एक गलती है, उसे ठीक करना होगा। जीवन के अंतिम क्षण तक प्रोफेसर अभ्यंकर गणित के बारे में सोच रहे थे। फिर उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, केतन बेटे गणित को आगे बढ़ाना है। और फिर शांति। उस महान आत्मा ने अपनी अंतिम यात्रा शुरू कर दी। 6 नवंबर 2012 5:30 प्रोफेसर श्री राम शंकर अभ्यंकर ने इस दुनिया को अलविदा कहा।
5: विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय ने तुरंत एक बयान जारी किया। गणित विभाग और पूरा विश्वविद्यालय प्रोफेसर श्री राम शंकर अभ्यंकर के निधन से गहरे शोक में है। हमने एक महान गणितज्ञ, एक समर्पित शिक्षक और एक अद्भुत इंसान खो दिया है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय, MIT, प्रिंसटन सभी प्रमुख संस्थानों ने शोक संदेश भेजे। भारत में भी गहरा शोक था। TIFR मुंबई ने कहा, प्रोफेसर अभ्यंकर ने विश्व को दिखाया कि भारतीय गणित की महान परंपरा अभी भी जीवित है। रामानुजन के बाद वे सबसे प्रभावशाली भारतीय गणितज्ञ थे। भारत में भी प्रोफेसर अभ्यंकर को याद रखा जाता है। TIFR मुंबई में एक वार्षिक व्याख्यान उनके नाम पर है। IIT और IISc में छात्रवृत्तियां उनके नाम पर स्थापित की गई हैं। उज्जैन में उनके जन्म स्थान के पास एक स्मारक बनाने की योजना है। स्थानीय विद्यालय में अभ्यंकर गणित क्लब भी है।
3: प्रोफेसर अभ्यंकर के जीवन से हमें अनेक पाठ मिलते हैं, आइए उन्हें याद करें। पहला पाठ, समर्पण। उन्होंने अपना पूरा जीवन गणित को समर्पित कर दिया। ये समर्पण ही उन्हें महान बनाया। दूसरा पाठ, अपनी जड़ों से जुड़े रहना। अमेरिका में 60 साल रहने के बाद भी वे भारतीय बने रहे। उन्होंने अपनी संस्कृति को कभी नहीं भुलाया। तीसरा पाठ, कठिन परिश्रम और कोई शॉर्टकट नहीं, कोई आसान रास्ता नहीं, बस मेहनत, मेहनत और मेहनत। चौथा पाठ, ज्ञान को बांटना। उन्होंने अपना ज्ञान अपने छात्रों के साथ उदारता से साझा किया। यही असली शिक्षक का लक्षण है। पांचवा पाठ, विनम्रता। इतने बड़े गणितज्ञ होने के बावजूद वे सदा विनम्र रहे। घमंड ने उन्हें कभी छुआ तक नहीं। छठा पाठ, परिवार का महत्व। काम के प्रति समर्पण होने के साथ साथ उन्होंने अपने परिवार की परवाह की।
5: उन्होंने एक बार कहा था, गणित में जल्दबाजी नहीं होती, सिर्फ सही या गलत होता है। समय लो लेकिन सही करो। एक अन्य अवसर पर उन्होंने कहा, यदि समस्या आसान लगे तो तुमने इसे ठीक से समझा नहीं। असली गणित हमेशा चैलेंजिंग होता है। और युवा भारतीय गणितज्ञों से उन्होंने कहा था, तुम एक महान परंपरा से आते हो, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, रामानुजन, ये तुम्हारी विरासत है, इसे आगे बढ़ाओ, इसे गौरवान्वित करो। और उनका सबसे प्रसिद्ध कथन, संस्कृत गणित की भाषा है, जो इसे समझता है वो गणित की आत्मा को समझता है।
3: श्रोताओं, ये थी कहानी श्री राम शंकर अभ्यंकर की, एक साधारण परिवार से आए एक असाधारण प्रतिभा की, एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने उज्जैन की गलियों से शुरुआत की और हार्वर्ड विस्कॉन्सिन के मंचों पर भारत का नाम रोशन किया, एक ऐसे भारतीय की जिन्होंने अपनी जड़ों को कभी नहीं भुलाया। आज 2025 में जब हम उन्हें याद करते हैं तो हमें ये समझ आता है कि महानता का मतलब सिर्फ उपलब्धियां नहीं है, महानता का मतलब है अपने पैशन को फॉलो करना, कठिन परिश्रम करना और अपने ज्ञान को दूसरों के साथ बांटना। तो आइए उन्हें श्रद्धांजलि दें, उनके जीवन से सीखें और उनकी विरासत को आगे बढ़ाएं, क्योंकि यही होगी उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि, उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना।

0: तो साथियों, आज कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक में हमने बातचीत की श्री राम शंकर अभ्यंकर के जीवन के बारे में। तो अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का, तो दीजिए विदा अपनी मित्र वर्षा को
1: और दीपक हेमा को। दोस्तों, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखन अखिलेश कुमार वर्मा।
0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 FM, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: श्रोताओं 90.8 MHz
2: 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब सुनते हैं राष्ट्रीय ध्वज दिवस पर हमारा विशेष कार्यक्रम राष्ट्रीय तिरंगे का सफर।
1: पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपका रेडियो मित्र प्रमोद शर्मा, और आज हम जो एक खास कार्यक्रम लेकर आए हैं वो है हमारे तिरंगे का सफर।

श्रोताओं, हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक आजाद देश का एक अपना ध्वज होता है जो उसकी आजादी का प्रतीक भी होता है। और ऐसा माना जाता है, भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान चौराहे पर फहराया गया था, जिसमें लाल, पीले और हरे रंग की 3 पट्टियां थी। फिर 1907 में पेरिस में मदाम कामा और उनके दल द्वारा इस्तेमाल किया गया। इसमें भी लाल, पीले और हरे रंग की पट्टियां तो थी, फर्क केवल इतना था कि सबसे ऊपर की पट्टी में कमल और 7 सितारे थे जो सप्तऋषि के प्रतीक थे। और श्रोताओं, इसके बाद 1917 में डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल आंदोलन में जो ध्वज इस्तेमाल किया गया था, उसमें एक के बाद लाल रंग के 5 और हरे रंग के 4 खड़ी पट्टियां और थी। इन पर भी सप्तऋषि के प्रतीक 7 सितारे थे। बाईं ओर सबसे ऊपर कोने में यूनियन जैक का निशान बना हुआ था। एक कोने में सफेद रंग का अर्धचंद्र और सितारा था। श्रोताओं, फिर 1921 में तत्कालीन बेजवाड़ा, जो आजकल विजयवाड़ा के नाम से जाना जाता है, वहां एक युवक गांधी जी के पास एक झंडा बना करके लेके आया। उसमें लाल और हरा रंग तो था, जिसे उन्होंने हिंदू और मुसलमानों का प्रतीक बताया था। गांधी जी के सुझाव पर देश के शेष धर्मों के प्रतीक के रूप में भी सफेद रंग की पट्टी और उसमें चरखा डाल दिया गया, जिसे देश की प्रगति के रूप में शामिल किया गया था और पुनः इसमें परिवर्तन कर वर्तमान राष्ट्र ध्वज का यह स्वरूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था।

श्रोताओं, हम आपको बता दें कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज 3 बराबर भागों में बटा हुआ है, जिसमें सबसे ऊपर की पट्टी केसरिया रंग की, जो देश की ताकत और शौर्य का परिचायक होती है। बीच की सफेद पट्टी हमारे शांति, सद्भाव और सत्य के साथ नीले रंग का धर्म चक्र भी लिए हुए है, और यह चक्र सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी में सारनाथ में बनवाए गए चक्र की प्रतिकृति है, और इसके अंदर 24 रेखाएं होती हैं। चक्र दर्शाता है कि गति में भी जीवन है, ठहराव में मृत्यु है। राष्ट्रीय ध्वज में सबसे नीचे हरा रंग है, जो राष्ट्र की शस्य श्यामला धरती और राष्ट्र की खुशहाली का प्रतीक है। श्रोताओं, एक बात और है, और वो ये है कि तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात भारतीय संविधान में वर्णित विधान के अनुसार रहता है। लंबाई चौड़ाई में राष्ट्रीय ध्वज 9 प्रकार के होते हैं, जिन्हें संविधान ने स्वीकृत किया था, जो देश में फहराए जाते हैं। इनमें सबसे बड़ा राष्ट्र ध्वज 14x21 फिट का है। तो श्रोताओं, ये तो कहानी रही हमारे तिरंगे की, मगर तिरंगा फहराते समय हमें बहुत सारी सावधानियां भी रखनी पड़ती हैं। चलिए उसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताते हैं कि हमें अपने तिरंगे को फहराते समय किन किन सावधानियों पर ध्यान देना चाहिए। राष्ट्रध्वज तिरंगे का यह स्वरूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, ये तो हम सभी जानते हैं, और हमारा राष्ट्रध्वज 3 बराबर भागों में बटा होता है, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग देश की ताकत और शौर्य का परिचायक होता है, बीच में सफेद रंग जो शांति और सद्भाव और सत्य का प्रतीक होता है, सफेद के बीच में नीले रंग का धर्म चक्र है, और यह चक्र सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी सारनाथ में बनवाए गए चक्र की प्रतिकृति है, जिसमें 24 शलाखाएं होती हैं। चक्र यह दर्शाता है कि गति में ही जीवन है, ठहराव में मृत्यु है। राष्ट्रध्वज के नीचे हरा रंग राष्ट्र की शस्य श्यामला धरती और देश की खुशहाली का प्रतीक है। तिरंगे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात भारतीय संविधान में वर्णित विधान के अनुसार रहता है, मतलब हम इसे अपनी मर्जी से किसी भी साइज में नहीं बना सकते हैं, यह हमें बात ध्यान में रखनी चाहिए। और राष्ट्रध्वज की लंबाई चौड़ाई 9 प्रकार की होती है। तिरंगे का सम्मान करने और फहराने के लिए हमें जिन बातों पर ध्यान देना चाहिए वो इस प्रकार हैं। सबसे पहली बात, राष्ट्रध्वज फहराते समय केसरिया रंग की पट्टी को हमेशा सबसे ऊपर रखें। क्षतिग्रस्त झंडे को कभी नहीं फहराना चाहिए। झंडा फहराते समय ध्यान ये रखना चाहिए कि झंडा जमीन को ना छुए और ना ही पानी में गीला हो। स्कूल में झंडा फहराते समय आयत का आकार बनाना चाहिए, जिससे तीनों ओर बच्चे और चौथी तरफ शिक्षक खड़े होने चाहिए और बीच में झंडा फहराया जाना चाहिए। एक बात और सुनाऊं, जब झंडा फहराया जाए तो सभी को उसे सलामी देना बहुत आवश्यक है। और श्रोताओं, राष्ट्रगान गाते समय या इसकी धुन सुनते समय हमेशा सावधान की स्थिति में खड़े होना चाहिए। और श्रोताओं, सावधान की स्थिति में ना तो हमें हिलना चाहिए और ना ही झंडा फहराते समय कोई बातें करना चाहिए। हमारा पूरा सम्मान राष्ट्रध्वज को जाना चाहिए। एक बात और श्रोताओं, ध्वजारोहण कार्यक्रम के दौरान जब झंडे को लेकर परेड की जाए, तब सभी लोग झंडे की तरफ मुंह करके सावधान की स्थिति में खड़े हो जाए। सैनिक टुकड़ियों को सही तरीके से राष्ट्रध्वज की सलामी देनी चाहिए। और हां, झंडा सूर्य उदय के साथ फहराना चाहिए, और सूर्य अस्त या मौसम खराब होने पर झंडा आदर सहित उतार लेना चाहिए। श्रोताओं, राष्ट्रध्वज उतारते समय ध्यान रखें कि वह जमीन को बिल्कुल न छुए। उसे सम्मान सहित हाथों में लेकर के अच्छी तरह से रखना चाहिए, और झंडा फहराते समय या परेड में ले जाते समय झंडे के ऊपर कोई दूसरी चीज नहीं होनी चाहिए। इस बात का भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए।

और श्रोताओं, एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा, राष्ट्रध्वज को पहनावे के रूप में हम उपयोग में नहीं ला सकते। किसी यूनिफॉर्म, कढ़ाई, साड़ी, रुमाल, नैपकिन या तकिए के प्रिंट में तिरंगे की आकृति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यह हमारे राष्ट्रध्वज का अपमान होता है। देश के महत्वपूर्ण व्यक्तियों जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल आदि की कारों पर झंडा हमेशा सामने की ओर और बीच में या दाहिनी तरफ लगा होता है। और श्रोताओं, सबसे आखिर में झंडा हमेशा ऊपर ही रहना चाहिए। जब राज्य, देश या विदेश की सरकारों के किसी प्रमुख की मृत्यु होती है तब झंडा आधा झुका दिया जाता है। अगर स्वतंत्रता दिवस पर ऐसा हो तो झंडा आधा झुका दिया जाता है। तो श्रोताओं, ये थी वो महत्वपूर्ण जानकारियां जो तिरंगे को फहराते समय हमें ध्यान में रखना चाहिए। हमें उम्मीद है कि जब भी कभी आप राष्ट्रध्वज को फहराएंगे तो इन बातों का विशेष तौर से पालन करेंगे। तो श्रोताओं, ये था हमारा एक छोटा सा ज्ञानवर्धक कार्यक्रम जिसका नाम था तिरंगे का सफर।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय ध्वज दिवस पर हमारा विशेष कार्यक्रम राष्ट्रीय तिरंगे का सफर। 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आज़ाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। रात्रि के 10 बजे हैं। इसी के साथ हमारी आज की सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक ले आपसे अनुमति चाहते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।